आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: ज्योति कृष्णा जी हरिद्वार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। बाबा जी, मेरा आपसे एक प्रश्न बहुत समय से पूछने की इच्छा थी। मेरा 4 साल का अब कॉलेज है बाकी। वहां पर अधिकतम बच्चे एक दूसरे से बहुत अभद्र भाषा, गालियां, काम वासना में रुचि वाली बातें करते हैं। मैं इस माहौल में रहकर भी हर वक्त श्री जी का भजन होता रहे उसके लिए प्रयासरत हूँ। बच्चों से बात करते करते नाम कैसे चला सकता हूँ, डर लगता है फिसल ना जाऊं। महाराज जी, मैं जैसे आपको हो गए वैसा ही ठीक चलना चाहता हूँ। महाराज जी, मेरे पे कृपा करें कि मैं
1: भक्ति तो की जा सकती है, ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं हो सकती है। विभीषण जी लंका में रह के भक्ति कर लिए, जहाँ हर क्षण निशाचरी ही चेष्टाएं हो रही, अब गंदी से गंदी चेष्टाएं हो रही, खुले में ऐसे जिंदा मनुष्यों को, पशुओं को खा रहे हैं, आचरण बहुत गंदे कर रहे हैं। ऐसी उच्च कोटि की भक्ति विभीषण जी की, भगवान सराहना करते हैं। महादेव जी भी कहते हैं, उमा ये देखो विभीषण संत है, उमा संत का यही बड़ाई। जब भगवान के सामने आते, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। ऐसा नहीं है कि हम भजन नहीं कर सकते, पर हाँ ये जरूर है कि भजन की अनुकूलता होने पर भजन में ज्यादा रुचि बढ़ती, प्रतिकूलता होने पर एक विक्षेप सा मालूम देता है। प्रतिकूल वातावरण में भजन करना बहुत कठिन है ना, पर अगर कर ले गए तो फिर तुम्हें कोई परास्त भी नहीं कर सकता। अनुकूलता में भजन करने पर प्रतिकूलता परास्त करती है। तो प्रारंभ में जब हमसे कोई बात करता तो अखंड भजन का एक भाव बना था कि निरंतर नाम जप करेंगे, तो गुरुजनों के पास रहना, समाज में रहना, तो बोलना ही पड़ता था। तो जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर लिख रहे हैं, अभ्यास है ना बार बार जी। हाँ, कम बोलना, कम उत्तर देना, नाम आपके चेहरे। तो हम आपकी तरफ देख रहे हैं तो आपको लग रहा है बड़ी एकाग्रता से देख रहे हैं हम आपको, हम अपना काम कर रहे हैं। लिखा आपके चेहरे पे नाम है, स्मृति में नाम है, वाणी में हम वार्ता कर रहे हैं, हमारा स्मरण चल रहा है। बहुत साउंड जब बजते तब हमें विक्षेप होता, तो हम साउंड में रहकर अभ्यास किया। जहां साउंड बजते वहीं खड़े हो जाते, घंटा डेढ़ घंटा निरंतर मन, मतलब तो हम कहीं कमजोर ना हो जाए। जहां बाजार है वहां भी खड़े होकर भजन करना, एकांत है वहां भी भजन करना, भूखे रहकर भजन करना, खूब भोजन पाके भजन करना, हर स्थिति में अभ्यास किया जाता है ना। जिसे अब आर्मी का जवान पहाड़ में, ठंडी में, गर्मी में, सामान में, जल क्यों, सब जगह उसको फिट किया जाता है कि ऐसी परिस्थिति में भी आप अपना कार्य पूरा कर लें। ऐसे ही भजनानंदी भगवान का पार्षद होता है। तो आपके ऊपर बड़ी कृपा है कि आप नवीन अवस्था में आप भगवत चिंतन पर महत्व दे रहे हैं, तो आप निश्चिंत, आपके साथ भगवान है, भगवान का स्मरण है। बस किसी से आपके द्वारा गलत नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हो गलत व्यवहार कर रहा है, मृदु भाव, उसकी रुचि है, बाजार है, जिसका मन आवे जो खरीदे। तो आप आए हो कर्म भूमि में, उसका मन है वो गंदा कर्म करना। अगर पूछे तो बता सकते हैं कि आपका मार्ग गलत है, हमने संतों से ऐसा सुना है, जो आप आचरण करते हो गलत है। अपनी तरफ से नहीं कहना, अपनी तरफ से अगर हाथ मिला रहा, हाथ मिला रहा, ऐसा लगे कि मेरे जैसा ही है, पर आप अपनी चतुराई से। भजन करने वालों के लिए उदाहरण दिया गया है, जैसे एक व्यभिचारिणी पत्नी, समझ रहे ना, अपने पति के साथ घर में रहते हुए भी वो सोनी लगा रही, सब कर रही, उसका चिंतन अपने जो जिस पर पुरुष से मित्रता की है उसका होता रहता है। किसी बहाने से दरवाजे में निकलेगी कि कहीं वहां तो नहीं रहा है, पति के पास रहते हुए भी उसका चिंतन उसी के पास रहता है। वो तो मान लो गलत मार्ग में है, पर हमको हर जगह गुण देखना है। वहां से एक गुण मिला कि जैसे वो सबके साथ व्यवहार करती हुई, हंसती, बात करती हुई, चेष्टा करती हुई, कोई जान न पाए, और वो पर पुरुष से लगाव रखती है, ऐसे ही घर परिवार में रहते हुए परमपिता परमात्मा से यदि लगाव किया जाए बहुत आराम से हो सकता है। देखो, हमारा हृदय केवल चाह ले मुझे भजन करना, तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अंदर की बात है ना। हम बाहर से आपके साथ खेलेंगे, हंसेंगे, बात करेंगे, पर अंदर एक पीड़ा है, प्रभु मिले भजन, बार बार चित्तवृत्ति प्रभु, जहां हमारा लगाव होता है वही हमारी चित्तवृत्ति जाती है। जैसे ब्रज की गोपीजन जब जल लेने जाती तो बाहर कुएं का मीठा जल होता था, तो 2-3 मटकी रस्सी बाल्टी सब साथ लेके जाती है। अब एक मटकी यहां है, हाथ में बाल्टी है, रस्सी भी, और ऊपर कई मटकियां हैं, और अपनी सखियों से बात करते हुए जा रही। रसखान गोविंद ने यूं भजिए जो नागर को चित गागर में। ब्रजवासिनी गोपियों का चित कहां है? अगर वो जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो मटकी भी फूट जाएगी, पानी भी गिर जाएगा। रसखान गोविंद ने यूं भजिए जो नागर को चित गागर में। सबसे कोई जान न पाए कि आप भजन करने वाले, अच्छे आचरण वाले, आप एक भगवत भक्त हैं। नहीं, सबके साथ ऐसे दिखाई दे रहा है एक नॉर्मल आदमी, वो अंदर से अगर दिखावा करोगे भक्ति का तो बाधा हो जाएगी, अगर अंदर तो फिर कोई बाधा नहीं। अंदर से कौन जान, प्यार को कोई जान पाता है क्या? बाहरी नाटक को प्यार के जानता है, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, ऐसा वैसा तो दिखाई देता है, हाँ भाई प्यार करता है, लेकिन वो अंदर की बात है। प्रीतम नेत्रों की भाषा समझते हैं, प्यार में नेत्रों की भाषा होती, वाणी का ज्यादा प्रयोग नहीं होता प्यार में, जिससे प्यार होता है नेत्रों की बात। एक बार भर नेत्र देख लिया वो इतने में जी जाएगा अपने प्यारे को, कामी की बात नहीं कह रहे, प्यार में एक बार भर नेत्र देखने की चाह होती है, उसको सुख प्रदान करने की। कैसे हम आचरण करें, कैसा हम भाव करें जिससे हमारा प्यारा सुखी हो जाए। तो हमारे प्यारे हैं प्रभु, हमको ध्यान, और हमारे नेत्र जहां भी जाएं अपने प्रभु को, क्योंकि सब मंदिर उसी के हैं, ये सब मंदिर है, सब में बसा हुआ भगवान है। बढ़िया, अब वो खेल कैसा कर रहे हैं उनकी मर्जी है, मुझे खेल कैसा करना ये उनका आदेश है। भक्त ऐसे चलता है, भक्त अपने लोग क्या करते हैं, भगवान ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए तो हम सबको सुधारेंगे, वो खुद बर्बाद हो जाता है, सुधर नहीं पाता है। आप सुधरो, आप भगवत, तो उनको क्या देखे, वो लीला है उनकी, तमोगुणी रजोगुणी लीला है उनकी, हो रही है हमारे ही प्रभु की है। अंदर से भावना करनी, पर ये भावना जल्दी नहीं होती, पवित्र हृदय में होती है, और बिना इस भावना के इतने बड़े जंजाल है ना, फंस जाओगे। भला कहीं ऐसा होता है, भला कहीं ऐसा होता, अरे वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, अपने आप से अपने आप में खेल रहा है, हमें चलना है, बहुत अच्छा है। पर उसमें ये नहीं कि हम भजन नहीं कर सकते, हम खुद अभ्यास की बात कह रहे हैं, जिसे देख रहे हैं उसमें नाम लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, अभाव मेरे प्रभु मेरे सामने, खत्म किया। हमारा चिंतन चल रहा, हमारा हृदय का चिंतन सुधरना चाहिए, और वो कहीं नहीं बिगड़ सकता, कहीं नहीं बिगड़ सकता। आपको इत्र लेने जाना है मान लो श्री जी के लिए, तो आप पूरी बाजार में घुसते चले जाएंगे, कहीं कुछ बिक रहा है, कहीं कुछ बिक रहा है, आपको किसी से कोई परेशानी नहीं है, आप सीधे इत्र की दुकान में जाके इत्र लेंगे चले आएंगे। अब ये थोड़ी कि आप सब बाजार हटा दी जाए, केवल इत्र की ही रखी जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सबकी पसंद है, कोई मिठाई खरीद रहा है, कोई वस्त्र खरीद रहा है, आप इत्र लेने जा रहे हैं श्री जी के, तो आपके दिमाग में इत्र और लक्ष्य इत्र की दुकान, तो पूरी बाजार चीर कर चले जाएंगे, आपको कोई विक्षेप नहीं, समझ रहे ना। ऐसे ही संसार में रहा जाता है, हमारा लक्ष्य है भगवान का दर्शन, भगवान का भजन, भगवान की प्राप्ति। अब पूरे संसार में आप डोलो, उसी का सारा ये बाजार लगा हुआ है, आपको क्या लेना है, हमको जो लेना है हमको वही, मतलब नाम लेना है और रूप दर्शन करना है, और जितना बन सके सबको सम्मान देना है, अनुकूलता देने, वो भले पापाचरण करने वाला वो जानेगा, हमारे सामने है हमारी मंद मुस्कान, हमारा प्रेम भरा व्यवहार उसको परिवर्तित करेगा। हमें चेष्टा नहीं करनी उसके साथ दुष्टता की, क्योंकि एक दुष्टता का आचरण कर रहा है, एक उसको दुष्ट कह रहा है, और एक खड़ा होकर दुष्टता को देख रहा है, तीनों समय बर्बाद कर रहे हैं, तीनों एक ही रंग में रंग रहे हैं, समझ रहे ना। हाँ, ना हमें दुष्टता देखनी है, ना हमें दुष्टता का आचरण करना है, ना दुष्टता की बात चिंतन करनी है, हमें तो नाम चिंतन करना है, भगवान को पाना है। तो इस भाव से चला जाए, अध्यात्म अलग उल्टा मार्ग संसार से, संसार के मार्ग का अगर आप अनुसरण करेंगे तो लड़ाई झगड़ा ही होता रहेगा। तो अब वो तो गंदी बात करता था, आप अपने हृदय को गंदा कर रहे हैं, इसलिए बहुत चतुराई की जरूरत है, बहुत चतुराई की जरूरत है। विवेकवान वही है जो अपने को बचा के निकल जाए, कोई उसे पकड़ ना पावे, समझ रहे ना जी। हमें बहुत अच्छा लगा भाई, जैसे आप नई नई अवस्था के बच्चे ऐसे चलते हो ना, तो हृदय में शीतलता होती नहीं। आजकल जलन बढ़ रही है कि गंदे गंदे आचरण, गंदे गंदे नशा नई अवस्था के बच्चे करते, तो लगता है जब ये हमारी नई पीढ़ी है हमारे भारत की, यही जब बिगड़ जाएगी तो फिर आगे होगा क्या? न शास्त्र को कोई मानेगा, न संतों को मानेगा, न धर्म को जानेगा, तो पतन ही पतन है। जब सही मार्ग नहीं तो भटकना ही भटकना है। जैसे आप सब नए बच्चे उत्साहित होते हैं तो लगता है हमारा जीवन सार्थक है, कि अगर आप लोग हो तो आपकी संतानें, आपका परिवार, आपकी समाज, जब आप धर्म व्यवस्थित रहेंगे ना तो फिर वैसी व्यवस्था बनती है। भगवान कृपा करें, बुद्धि शुद्ध रहे, शरीर स्वस्थ रहे और मन प्रभु की आज्ञा और प्रभु के नाम में रहे, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
7: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
7: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
7: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।

माता कैकेयी के कठोर आचरण से क्षुब्ध होकर आत्मग्लानि की आग में जल रहे हैं। पति समेत पूरे कुल का सर्वनाश कर डालने वाली माता की कोख से जन्म लेना उनके लिए घनघोर पातक सिद्ध हुआ है। पश्चाताप की ज्वाला शांत नहीं होती। मन में ये धारणा पुष्ट होती जा रही है कि उनसे बड़ा पापी इस जगत में कोई नहीं है। शत्रुघ्न भी माता की कुटिलता सुनकर जल रहे हैं, किंतु उनका वश नहीं चलता कि क्या करें। कि तभी कुबड़ी मंथरा भांति भांति के सुंदर वस्त्रों और आभूषण से लदी फदी उनके सामने आ गई। शत्रुघ्न का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया, मानो आग को आहुति मिल गई हो। उन्होंने उसके कुबड़ पर जोर से एक लात मारी। चीखती चिल्लाती मंथरा जो धरती पर गिरी तो कुबड़ फूट गया। शत्रुघ्न ने झूठा पकड़ उसे घसीटना शुरू किया कि तभी भरत ने उन्हें शांत करते हुए मंथरा को उनकी पकड़ से छुड़ा दिया। पश्चाताप और ग्लानि की आग को शीतल करने के लिए तब दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचे। शोक और संताप से कौशल्या का शरीर सूख गया है। लगता है जैसे सोने की कल्पलता को पाला मार गया हो। भरत और शत्रुघ्न को देख उन्हें हृदय से लगाने को वो दौड़ी, किंतु मूर्छित होकर गिर पड़ी। भरत उनके चरण पकड़ विलाप करने लगे। कभी तो वो माता कौशल्या से दिवंगत पिता वनवासी राम लक्ष्मण तथा सीता के दर्शन करा देने की विनती करते हैं, तो कभी माता कैकेयी की करतूत पर सिर धुनते हैं।

वीरता तथा कुटिलता की भर्त्सना करके भी भरत के हृदय में सुलगती आग शांत नहीं हुई। उधर क्रोधाग्नि में जलते शत्रुघ्न के सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमाकर उसकी कुबड़ फोड़ डाली और झूठी पकड़कर उसे घसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हैं। दिवंगत पिता तथा वनवासी राम लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना दे रही हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सबके संतोष के लिए जब वे वन को चले तो सीता भी उनके पीछे चल पड़ी। अग्रज के वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण भी अयोध्या में नहीं रुके।

पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही हैं। ज्ञान के उदय होने पर भी चाहे मन का मोह न मिटे, किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकते। पुरोहित तथा कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर चिता सजाकर दाह संस्कार होता है और एक दिन शुभ घड़ी और लग्न देखकर राजसभा में मुनिवर वशिष्ठ मंत्रियों तथा महाजनों की उपस्थिति में युवराज भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देते हैं।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
8: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 0 97 0 6 575।

0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
2: ठक ठक
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
9: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
10: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
11: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
11: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
10: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
12: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
10: संपर्क 99 393 65 930।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 9097160602।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
8: नमस्कार, रेडियो रिमिल से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुद्दे हालचाल। नीट परीक्षा की तैयारियों पर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक, वाहन चोर गिरोह के एक बड़े नेटवर्क का पुलिस ने किया खुलासा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यायालय परिसर में होगा योगा कार्यक्रम। अलग अलग हादसों में 3 लोगों की हो गई मौत और हत्या के प्रयास में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं इनके दृश्य अब हालचाल विस्तार से। 21 जून को आयोजित होने वाले नीट परीक्षा को लेकर जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान एक एक व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई और जिला पदाधिकारी ने आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में अपर समाहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी सहित तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे, साथ ही पुलिस के भी अधिकारी और केंद्राधीक्षक उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि 21/6/2026 को यानी रविवार को अपराह्न 2 बजे से अपराह्न 5:15 बजे तक 7 परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में ही परीक्षा का संचालन होगा। परीक्षा में कुल 3,906 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। विकलांग परीक्षार्थियों के लिए 1 घंटा का अतिरिक्त समय निर्धारित किया गया है, इसलिए विकलांग परीक्षार्थी 6:15 बजे तक परीक्षा दे सकेंगे। वहीं परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र, पासपोर्ट साइज का 2 फोटो, पोस्ट कार्ड साइज का 1 फोटो एवं पारदर्शी वाटर बॉटल के साथ परीक्षार्थी प्रवेश कर सकेंगे। परीक्षार्थी को केवल कलम ही केंद्र पर उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षार्थी को सुबह 11 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति मिल सकेगी। जिलाधिकारी ने आज तकनीकी विभागों के कार्यों की भी समीक्षा की। इसको लेकर उन्होंने बैठक किया और परियोजनाओं के अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। इसमें कार्यपालक अभियंताओं और संबंधित पदाधिकारियों से विभाग वार योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन योजनाओं में कार्य की गति धीमी है उनमें तेजी लाते हुए निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कराएं। गोपालगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस दौरान 2 आरोपियों की जहां गिरफ्तारी हुई है तो वहीं 11 चोरी की मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि फर्जी कागजात बनाकर चोरी के वाहन को बेचा जाता था। इस दौरान मोहम्मदपुर क्षेत्र के कुशहर गांव में पुलिस ने छापेमारी की और यहां के चंदेश्वर शाह और बैकुंठपुर के फैजुलापुर निवासी बुलेट उर्फ साहेब को गिरफ्तार किया गया। इसको लेकर सदर SDPO 2 से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
9: सर आपके नेतृत्व में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के सरगना पकड़े गए, इस पर क्या कहेंगे?
10: मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष को कल सूचना मिली कि ग्राम कुशहर में एक व्यक्ति के घर में चोरी का मोटरसाइकिल रखा गया है। उक्त सूचना को बड़े पदाधिकारी को सूचित करते हुए एक टीम गठित करके वहां पर छापामारी किया गया तो चंदेश्वर शाह नाम के व्यक्ति के घर में 3 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुआ, जिसको हम लोग सत्यापन किया तो वो चोरी का मोटरसाइकिल प्रतीत हुआ। उससे जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसके निशानदेही पे एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, साथ में उसके भी घर पे एक मोटरसाइकिल बरामदगी हुई जो कि फैजलापुर बैकंठपुर का बुलेट शाह बुलेट राम करके उर्फ साहब राम करके व्यक्ति अपना नाम बताया, एवं इसमें संलिप्त एक नेटवर्क के बारे में भी इनसे खुलासा हुआ, जिसके विरुद्ध में पुलिस लगातार छापामारी कर रही है और इन्हीं के निशानदेही पे कुल 11 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है, साथ ही 2 मोबाइल भी पकड़ाया है और इन सब बिंदुओं पे गहन अनुसंधान की जा रही है। हाँ, इस नेटवर्क का मेन काम था कि चोरी की गई मोटरसाइकिल के इंजन और चेसिस नंबर को वो पंच कर देता था एवं उसके कागजात को भी ये मैनिपुलेट करके जनता को बेचता था।
8: आज अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक घटना बरौली थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पास की बताई जा रही है, जहां 14 जून को सड़क हादसे में घायल नगर थाना क्षेत्र के 35 वर्षीय अंग्रेज महतो की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, आगे की कार्रवाई कर रही है। दूसरी घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कतालपुर गांव के पास की बताई जा रही है, यहां इसी गांव के 52 वर्षीय उमेश राम की सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया और उनकी मौके पर मौत हो गई। वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और इनके शव को भी कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया कर रही है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में मातम पसर गया है। 21 तारीख यानी रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जा रहा है। इसको लेकर अलग अलग जगहों पर योगा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सर्वप्रथम सुबह व्यवहार न्यायालय के नए भवन के ग्राउंड फ्लोर में सभी न्यायिक पदाधिकारीगण की उपस्थिति में प्रशिक्षित योग शिक्षक की देख रेख में योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही जनता से भी योग करने का अपील किया गया कि सभी लोग अपने जीवन में योगा को शामिल करें और स्वस्थ जीवन जिए। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ही कृतपुरा बाजार के पास एक बाइक सवार व्यक्ति को अज्ञात वाहन पर मार दी। इनकी भी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वहां से स्थानीय लोगों के सहयोग से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया और गोरखपुर में इलाज के दौरान इनकी भी मौत हो गई। मृतक बैकुंठपुर के मड़वा गाँव के 40 वर्षीय ज्ञानचंद साह बताए जा रहे हैं। थाने के डीएवी पब्लिक स्कूल में एक वाहन चालक अरुण कुमार सुबह स्कूल परिसर में ही हार्ट अटैक से मौत होने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि स्कूल में गाड़ी चला रहे थे। ये मूल रूप से बिहार के जहानाबाद के निवासी थे और स्कूल के मैदान में अचानक बेहोश होकर गिर गए। आनंद फानंद में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद अरुण ठाकुर के परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हत्या के प्रयास में फरार चले 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी अजय यादव है जो गंगा सागर यादव का पुत्र है और दूसरा बुलेट यादव है यह ब्रिज कुमार यादव का पुत्र है। ये दोनों बिलरुआ थाना भोरे जिला गोपालगंज के निवासी है। इन्हें गिरफ्तार कर आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाने पुलिस ने 90 बोतल देशी शराब के साथ शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी थाने थाना क्षेत्र के चनावे गांव का उपेंद्र सिंह है। इसके शराब को जब्त करने के बाद आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कृषि विज्ञान केंद्र जलालगढ़ तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिषद पटना के द्वारा खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत पूर्णिया जिले के श्रीनगर प्रखंड के बसगढ़ा गांव में धान की सीधी बुआई विषय पर किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 76 किसानों ने भाग लिया। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को धान की सीधी बुआई तकनीक एवं इसके लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और खेत समतलीकरण अल्पावधि धान किस्मों के चयन तथा शून्य जुताई मशीन के उपयोग पर महत्व डालते हुए किसानों को आवश्यक जानकारियां दी गई। इधर कुचायकोट थाना की पुलिस ने 23 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा है उनमें अनमोल सिंह पिता महात्म सिंह यह पहाड़पुर थाना कुचायकोट का निवासी है, दूसरा विशाल कुमार पिता मदन प्रसाद यह बलथरी थाना कुचायकोट का रहने वाला है और तीसरा राजू कुमार पिता बुद्धू यादव यह अही टोला थाना पहाड़पुर जिला मोतिहारी का निवासी बताया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नीट परीक्षा की तैयारियों पर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। वाहन चोर गिरोह के एक बड़े नेटवर्क का पुलिस ने किया खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यायालय परिसर में होगा योगा कार्यक्रम। अलग अलग हादसों में 3 लोगों की हो गई मौत और हत्या के प्रयास में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिसके साथ ही हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार सुझाव शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238
11: 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
12: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
13: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
12: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
1: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
14: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
15: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
1: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
16: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
1: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
17: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
18: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
17: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
19: अब बेटा, बहु घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
20: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
21: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
22: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-651 या 97-0-97-06-575।
23: दोस्तों, ये है मेरा शो जिसका नाम है टाइम मशीन, माइथोलॉजिकल कहानियों का वो सफर जिसमें आप और मैं अतीत में, पास्ट में चलते हैं, ऐसे पात्रों से मिलते हैं, ऐसी कहानियों को जी लेते हैं जो हमने शायद अपने बचपन में सुनी होंगी, अपने दादा दादी से, नाना नानी से, लेकिन फिर हम उनको भूल गए। पर इन कहानियों में, चाहे ये किसी भी धर्म या आस्था से जुड़ी हों, भारत का हृदय बसता है। इसलिए चलते हैं वापस उसी बचपन में, उन्हीं कहानियों में, इस टाइम मशीन में सवार होकर। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कहानी यशोदा। आज जहां मैं आ पहुंचा हूं वो जगह है गोकुल। नाम लेते ही लगता है जैसे जबान पर किसी ने मिस्री मिले मक्खन की डली रख दी हो। यहाँ कानों में बांसुरी का संगीत गूंजता है, जिसमें गायों के गले की घंटियों की रुंझुन घुलती है। सांस में यमुना नदी की गमक अंदर तक उतर जाती है। सुंदर चटख रंगों के लहंगे और ओढ़नियां हैं। गेरू से लिपे पुते सुंदर घर हैं, जिनके आगे रंगीन अल्पनाएं रची हुई हैं। दही दूध से छलकते कलसे हैं, हंसी है, ठिठोली है, प्यार है, अपनापन है। अभी मेरे सामने गोकुल का सबसे बड़ा और सुंदर घर है, यहाँ के मुखिया नंद और यशोदा का घर। लिपापुता आंगन है, जिसके कोने में मिट्टी के कुछ खिलौने बिखरे हुए हैं। एक कोने में तुलसी चौरा है, जहां यशोदा का जलाया दीपक अभी भी जलता दिख रहा है, मानो सूरज को चुनौती दे रहा हो। सामने वो लंबा सा चबूतरा, जहां नंद बाबा गांव वालों के संग बैठकर बातचीत करते हैं, अभी सुनसान है। तभी गली से कुछ बच्चे कान्हा को सहारा देकर इस तरफ आते दिखे। किसी गोपिका के घर माखन चोरी करने ग्वाल बालों के कंधों पे चढ़े होंगे, तभी पैर फिसल गया होगा। तभी मोच के कारण कान्हा के सुंदर गोलमटोल चेहरे पर दर्द की छाया है। मोर पंख उनके घुंघराले बालों को संवारता नीचे सरक आया है। एक पैर की पैजनिया गायब है और कमर में बंधी सुनहरी कमर पेटी का एक सिरा जमीन तक लटक चुका है। बहादुर दिखने की कोशिश में कान्हा ने होठों को भींच रखा है, फिर भी मुंह से एक धीमी कराह निकल ही पड़ी, मैया। और उधर तीर की तरह यशोदा घर के दरवाजे से बाहर निकल आई। माँ के दिल को बेटे का दर्द चीर गया था। यशोदा की तो जान उनके कान्हा में बसती थी। उन्होंने लपक कर कान्हा को गोद में उठाकर नाराजगी से चारों ओर नजर दौड़ाई, मानो जमीन आसमान पेड़ पौधे कान्हा के संगी साथी सभी उनके कसूरवार हों, जैसे वो जानना चाहती हों कि कैसे उन्होंने नन्हे कान्हा को चोट लग जाने दी। तभी उनके सीने से लगा कान्हा फिर बुदबुदाया, मैया। यशोदा का ध्यान उनकी ओर गया और कान्हा के पैर की हल्की सी सूजन देखकर उनकी सांस ही अटक गई। हालांकि कुछ देर बाद कान्हा का ध्यान माखन भरे कटोरे पर था, पर जड़ी बूटी का लेप उनके पैरों पर लगाती यशोदा की आंखें अभी तक नम थीं। जिस बेटे की एक टीस नहीं बर्दाश्त होती थी उनको, उस कृष्ण को हमेशा के लिए खुद से दूर कैसे कर पाएंगी यशोदा? कृष्ण को दुलारते हुए यशोदा अपनी यादों में डूबी अमावस की उस काली रात तक पहुंच गई थी जब उनकी संतान ने जन्म लिया था, जब डर और निराशा का अंधेरा चीर कर उनके घर चांद का उदय हुआ था। वो ऐसी भयानक तूफानी काली रात थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। यमुना का उफान पूरे जोरों पर था। लोग कह रहे थे कि ऐसी तूफानी बरसात उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। यशोदा प्रसव पीड़ा से कराह रही थी और उनके पति किसी पड़ोसी को ऐसे मौसम में बुलाकर परेशान नहीं करना चाहते थे। यशोदा बेसब्री से आने वाली संतान की प्रतीक्षा कर रही थी और बाहर बैठे नंद टिमटिमाते दीपक की लौ की दीवार पर बनती बिगड़ती परछाइयां देखकर सोच में डूबे थे। उन्हें यशोदा की चिंता तो थी ही, साथ में मथुरा के राजा कंस के आतंक से मुक्ति चाहते गोकुलवासियों की भी थी। मुखिया होने के नाते दारोमदार तो उन्हीं पर था। तभी कक्ष के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। नंद का चेहरा खुशी से खिल गया। वो तेजी से अंदर को बढ़े। बुरी तरह से थकी मगर संतुष्टि की मुस्कान से दिपदिपाती यशोदा ने अपनी बगल में लेटे नन्हे से बच्चे को बाहों में भींचे उनकी ओर देखा। नंद ने उनका हाथ थाम लिया। आंखों से खुशी छलक पड़ी, लेकिन दोनों से कुछ कहा नहीं जा रहा था। तभी टिमटिमाता दिया भी उन्हें बच्चे की एक झलक दिखाकर बुझ गया। अगली सुबह नंद के घर बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। यशोदा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सब बच्चे को गोद में लेने को व्यग्र थे। यशोदा ने बच्चे के माथे पर अपने काजल का ढिठोना लगाकर उसे चूम कर कहा, मेरा कान्हा। सभी गोकुलवासी नन्हे कृष्ण को देखकर सम्मोहित थे, लेकिन यशोदा के मन में एक आशंका ने जन्म ले लिया था। ये बच्चा वो नहीं था जिसे कल रात उन्होंने जन्म दिया था। एक माँ से बेहतर ये भला कौन जान सकता था? फिर ये बच्चा जिसे देखकर उनका भी दिल ममता से उमड़ रहा था, ये था कौन? ये कहां से आ गया था यहां? कौन ले आया होगा इसे और क्यों? कान्हा को दूध पिलाते हुए उनके मन में कई सवाल कौंध रहे थे। दिमाग कुछ सोचता लेकिन ममता भरा दिल उसे नकार देता। आशंका से यशोदा कांप जाती। उस दिन अपनी संतान अपने कृष्ण को लेकर यशोदा उधेड़बुन में लगी थी। तभी उनकी गोद में लेटा नवजात कान्हा गुनमुनाया और अपनी सीप जैसी पलकें खोल दी। एक टक यशोदा को देखकर हल्के से मुस्कुराया और फिर रो दिया। कितनी मधुर आवाज थी वो। उस मनमोहिनी सूरत को यशोदा मंत्रमुग्ध होकर देखती रह गई। उनको उस क्षण तीनों लोकों का साम्राज्य मिल गया था। उन्होंने झुककर अपने लाल के रुई के फाहे जैसे गालों को चूम लिया। सच में पूरी दुनिया में उनके कान्हा सा प्यारा कौन था भला? तभी उनकी गोद में लेटे नन्हे कृष्ण ने किलकारी मारी और हुलस कर यशोदा ने उसको अपने सीने से लगा लिया। ये कान्हा हमारा ही बेटा है, ये विश्वास उनकी आंखों में झिलमिला रहा था। उधर गोकुलवासी भी कान्हा के आकर्षण में बंध गए थे। पूरे नंद ग्राम में उत्सव का माहौल था। पता नहीं कहां कहां से दूर दूर से लोग नंद के घर की ओर खींचे चले आ रहे थे बाल कृष्ण की एक झलक देखने। दिन बीतते गए लेकिन कान्हा को देखने आने और मंत्रमुग्ध होने वालों की संख्या कम नहीं हुई। यशोदा को कुछ कसमसाहट होने लगी थी। आखिर एक दिन में कितनी बार नजर उतारे हूं अपने कान्हा की, ये पशु पक्षी इंसान सब क्यों उनके लाल के इर्द गिर्द भीड़ लगाए रहते हैं। एक दिन उन्हें मथुरा से आए यात्रियों की बातचीत सुनाई पड़ गई। कोई कह रहा था ये बालक सचमुच अवतार ही है, हमने सच ही सुना था। दूसरे की आवाज आई, देखना ये कान्हा ही दुष्ट राजा कंस का अंत करेगा। हाँ बस ये असाधारण बच्चा जल्दी मथुरा जाए, कोई और बोला। यशोदा की तो जैसे सांस ही रुक गई। ये लोग बाग उसके मासूम, उसकी आंखों के तारे, उसके दुलारे कान्हा में किस तारनहार, किस मुक्तिदाता को देख रहे थे। उसको दुष्ट कंस को मारने मथुरा भिजवा रहे थे। वो दौड़कर अंदर गई। सुंदर नक्काशीदार पालने में उनका कृष्ण सो रहा था और इस समय तो अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था। मुस्कुराते हुए उन्होंने अंगूठा हटाया तो पहले तो मुंह बनाया, फिर नींद में ही कान्हा ने अपनी नन्ही मुट्ठी में अपनी माँ की उंगली जकड़ ली। कितना प्यारा और भोला था उनका कृष्ण। बहुत हल्कापन महसूस हो रहा था। उन्होंने खुद को भरोसा दिलाया कि उनका कान्हा एक साधारण बच्चा ही है, कोई अवतार नहीं है, वो कभी उनसे दूर नहीं होगा। लेकिन यशोदा की ये राहत ज्यादा दिनों तक टिक कहां पाई थी। उनके कान्हा में कोई तो असाधारण बात है, इसका आभास उन्हें जल्द होने वाला था। उस दिन जब पालना खाली मिला तो उनका दिल धक से रह गया। व्याकुल सी वो पूरे घर में दुदमुहे कान्हा को ढूंढने लगी और बाकी सारे लोग नंद के साथ उन्हें खोजने निकल पड़े। कौन ले गया उनके बच्चे को, सोचते हुए यशोदा छटपटा रही थी। आंखों से बहते आंसू थम नहीं रहे थे। तभी उनकी कोई सखी उनका हाथ पकड़ के खींचती ले गई। जल्दी चलो यशोदा, एक राक्षसी पूतना ले गई हमारे कान्हा को। विह्वल सी यशोदा को जंगल में पहुंचकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। भयानक पूतना मर चुकी थी और उसी के पास उनका लाल मुस्कुराते हुए हवा में हाथ पांव चला रहा था। एक दुदमुहा बच्चा कैसे किसी राक्षसी की जान ले सकता है। इसी किस्म की फुसफुसाहट को सुनकर भी अनसुना करने की कोशिश करते हुए यशोदा अपने ललना को आंचल की ओट करके घर ले आई। लेकिन ये संदेह उनके मन में सर उठाने लगा कि शायद उस राक्षसी की मौत में कृष्ण का कुछ हाथ रहा हो। फिर ऐसा कुछ और होता ही जाता और यशोदा का दिल आशंकाओं से बैठा जाता। कान्हा में कुछ तो खास था, आखिर क्यों इतने असुर और राक्षस कृष्ण को मारने आते जा रहे थे और पता नहीं कैसे खुद ही मारे जा रहे थे। क्या सचमुच उनका कान्हा। फिर वो इस सोच को नकार देती, अपने कान्हा को सुंदर सा मुकुट पहनाती, पैरों में पैंजनिया और हाथों में छोटी सी बांसुरी थमा देती, फिर बार बार उनकी नजर उतारती। वो बिल्कुल इस बात को सोचना ही नहीं चाहती थी कि वो भयानक सा बगुला जिसकी चोंच कान्हा ने चीर डाली थी वो कोई भयानक राक्षस बकासुर था या कोई राक्षस शटकासुर भी था जिसने कृष्ण को कुचलने की कोशिश की थी। नटखट कान्हा कभी कालिया नाग को वश में कर लेते, कभी गोवर्धन पर्वत उठा लेते। नटखट कान्हा तेजी से बढ़ रहे थे। एक दफा उन्होंने माखन की मटकी लुढ़का दी तो नाराज यशोदा ने उनकी कमर से एक रस्सी ओखली में बांध दी, पर उन्होंने उसे दो पेड़ों के बीच अटकाकर दो देवताओं को शाप मुक्त कर दिया और चंचलता से बोले, मैया मुझे तो जाना ही होगा, कैसे बांध पाओगी। पहली बार अवाक खड़ी रह गई यशोदा। कहीं उनका डर सच तो नहीं हो जाएगा, कान्हा उनसे बिछड़ तो नहीं जाएगा। आज फिर अपने जिगर के टुकड़े, अपने कान्हा से बिछड़ने का ख्याल उन्हें दहला गया और वो एक झटके से वर्तमान में आ गई, जहां वो कृष्ण के चोटिल पांव को सहला रही थी। अचानक कान्हा उनकी गोद से उतरकर अपनी बांसुरी पकड़कर गायों के पीछे वंशीवट को दौड़ गया। मुस्कुराते हुए यशोदा उठी तो हल्का सा लड़खड़ा गई। मोच की सूजन उनके कान्हा के पांव से उतरकर उनके पैर में जो आ गई थी। तभी बाहर चबूतरे की ओर से कुछ आवाजें सुनाई दी। भीड़ से घिरे उनके पति नंद आज ज्यादा ही गंभीर दिख रहे थे। एक मन उन्हें उत्सुकता से आगे ढकेल रहा था, वहीं दूसरा आशंकित मन उनके पैरों को रोक रहा था। न चाहते हुए भी फरियाद करती डरी हुई आवाजें उनके कानों को बेंद रही थीं। नंद बाबा, लगता है मथुरा के राजा कंस को यकीन हो गया है कि अपना कान्हा ही उसकी बहन देवकी और वसुदेव की आठवीं संतान है जो उसका अंत कर देगा। यशोदा ने उचक कर देखा, कोई और कह रहा था। कंस की क्रूरता बढ़ती ही जा रही है, जीना मुश्किल कर रखा है। बाबा कृष्ण को मारने के लिए भी ये पूतना बकासुर सबको उसी ने तो भेजा था। नंद के सामने हाथ जोड़े एक गोपी की आवाज लड़खड़ा गई, और कान्हा ने उनका संहार किया ना, हमें लगता है उस पापी कंस से वही हमें मुक्ति दिलाएगा। कृष्ण ही हमारी आखिरी उम्मीद है, उसे मथुरा जाने की आज्ञा दीजिए ना। यशोदा का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था। कंस जैसा दुष्ट राजा जिसने अपने पिता उग्रसेन, बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को ही कारागार में डाल रखा हो, जिसने अपनी मौत के डर से अपने ही भांजों को निर्ममता से मार डाला हो, जिसने ऋषि मुनि तपस्वियों और पूरी निर्दोष प्रजा की जान संकट में डाल रखी हो, उसको मारने के लिए किशोर कृष्ण को भेजने की बात वो लोग सोच भी कैसे सकते हैं। तभी नंद धीमे से बोले, जैसा कृष्ण की मैया यशोदा चाहे। अब यशोदा रोष में भरी आगे बढ़ी, मना तो करना ही था, कान्हा को वो एक पल के लिए भी दूर नहीं कर सकती थी, मथुरा जाने देने का तो प्रश्न ही नहीं था। तभी उनका हाथ किसी ने पकड़ के रोक लिया। उन्होंने मुड़कर देखा, कान्हा। कान्हा का ये स्पर्श कुछ अलग था, जैसे बिजली सी दौड़ गई हो। यशोदा ने हैरत से देखा, ये उनका कान्हा आज इतना अलग सा क्यों लग रहा था। यशोदा स्वार्थी होना चाहती थी, अगर वो मना कर दें तो कृष्ण मथुरा थोड़े ही ना जा पाएंगे, कान उमेट देंगे अगर कान्हा ने जाने की बात भी की तो। उनका अंतर्मन कह रहा था कि अगर उनको भेज दिया तो फिर उनको कभी उनका कान्हा वापस नहीं मिलेगा। आंखों में आंसू छलक आए, रुंधे गले से उन्होंने फिर पुकारा, कृष्ण। अपनी उसी प्यारी तिरछी चितवन से कान्हा मुस्कुराए, मैया। वही सांवरी सूरत, वही मोहिनी मूरत, लेकिन उनकी ये आवाज जैसे पूरे ब्रह्मांड के कण कण में गुंजायमान होने लगी थी। यशोदा को लगा जैसे हर तरफ से उनके कान्हा को भेज देने की पुकार आ रही हो। मैया, कान्हा की आंखों में अनोखी चमक थी। यशोदा को लगा जैसे उनके इर्द गिर्द रोशनी का घेरा चमक रहा है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उनकी आंखें एक बारगी चौंधिया गईं। उनको लगा जैसे उन्हें कान्हा की बहुत बड़ी आकृति दिख रही है, जिसकी उंगलियों में उनकी मिट्टी की गाड़ी के पहिए सा चक्र है। वो हाथ जिससे मक्खन निकाल के खाया करते हैं आशीर्वाद देने को उठा हुआ है। तभी कान्हा ने उन्हें हिलाया, वो चौंक पड़ी। मैया, वो जो घर में मटकी खाली पड़ी है ना, वो माखन मैंने नहीं खाया। सच में, मैं तो यहाँ था ही नहीं, मधुबन गया था ना। रोती आंखें लिए यशोदा हंस पड़ी। सचमुच निराला ही है उनका कृष्ण, एक वरदान की तरह उनकी जिंदगी में आकर खुशियों से उनकी झोली भर गया। कृष्ण के जीवन का तो कुछ और उद्देश्य था, बहुत बड़ा उद्देश्य। तभी तो ये सारे डरे हुए कंस से आतंकित लोग उनकी शरण में आए थे। कान्हा के घुंघराले बालों पर स्नेह से हाथ फेरती यशोदा को अब व्यथित करने लगी थीं वो सूनी आंखें जो मथुरा के कारागार में कृष्ण का रास्ता देखती होंगी, हर वो सांस जो मुक्ति के लिए कृष्ण के नाम का जाप करती होगी। बाहर नंद के पास खड़ी उनकी बाट जोहती कातर भीड़ जो कान्हा को मथुरा जाने देने की उनकी आज्ञा के लिए आतुर होगी। बहुत भारी मन से उन्होंने कृष्ण को भेजने का निर्णय ले ही लिया। यशोदा ने अपने आंचल से कान्हा के मुंह पर लगा मक्खन पोंछा और आखिरी बार उन्हें सीने से लगा लिया, फिर उनकी ओर पीठ कर ली ताकि उनका जाना देख न सकें। नंद और गोकुल वासियों को आखिरी बार उनकी आवाज सुनाई दी, जाओ कृष्ण, मथुरा जाने की आज्ञा दी तुम्हें। और अंततः कृष्ण चले गए इतिहास का नया अध्याय लिखने। यशोदा की धड़कनें थम गईं, पर ममता मई आंखें उनके इंतजार में खुली रह गईं। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही। आप जब चाहेंगे, जितनी बार चाहेंगे, हम यहीं मिलेंगे और फिर चलेंगे एक नई यात्रा पर, एक और माइथोलॉजिकल कहानी के सफर पर, क्योंकि ये है टाइम मशीन।
21: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
22: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
21: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
22: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
22: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
21: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
22: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
21: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
22: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97714-86164।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज।

0: आज उपलब्ध है।
1: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अंबेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-6750।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माई गॉड आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
6: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने संतोष फर्नीचर के नीचे कॉलेज रोड गोपालगंज।

0: व्यवस्था एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
9: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
11: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है, इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
11: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
11: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई संतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164।
8: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
9: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
10: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर
11: 9:00 आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
12: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में, बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
11: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
12: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
11: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। यह कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट। नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रय तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
4: परीक्षा के सुरक्षित पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों समन्वयकों पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रवींद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
6: धन्यवाद भरत। NTA ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट UG पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्धि योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हार्मूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा। दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है, मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस। हिंदुस्तान की खबर है, पत्र लिखता है, दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
0: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527888291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
7: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
1: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
0: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करे 87894-18744।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के

0: एक एक
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602 भोरे ब्रांच में 8207856404
0: सिवान ब्रांच में 9942071405 मेरवा ब्रांच में 8207856403
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101-87952। नियम और शर्तें लागू।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
8: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
10: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
9: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
11: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
9: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
11: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
9: और 90-97-61-60-02।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। योग दिवस पर पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित हुआ मुख्य समारोह। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने किया सामूहिक योगाभ्यास। देश भर में नीट यूजी की परीक्षा आज दोबारा आयोजित की जा रही है। प्रदेश के 34 जिलों में बने केंद्रों पर 1,56,000 से अधिक परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। और जदयू की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक आज पटना में, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित योग शिविर में योगाभ्यास किया। योग शिविर में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी योगाभ्यास किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मुजफ्फरपुर में, नित्यानंद राय उजियारपुर में और सतीश चंद्र दुबे वाल्मीकि नगर में योग कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से भी योग शिविर के साथ योग दिवस पर अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पटना उच्च न्यायालय में भी इस अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुंगेर, शेखपुरा और अररिया समेत सभी जिलों के शैक्षणिक संस्थानों में भी योग शिविर आयोजित किए गए। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। यह परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। वहीं परीक्षा के लिए राज्य के 34 जिलों में 331 केंद्र बनाए गए हैं। राज्य सरकार ने कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। परीक्षा में 1,56,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इधर नीट यूजी पुनर्परीक्षा को लेकर पटना में कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा भवन के आसपास विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। कई मार्गों पर वन वे ट्रैफिक लागू रहेगा। ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए कई मार्गों पर डायवर्जन लागू किया जाएगा।
2: जो बापू परीक्षा सेंटर खास करके है, जहां पर जाम की समस्या प्राय हो जाती है, उसके मद्देनजर हम लोग ट्रैफिक की व्यवस्था में कुछ डायवर्जन प्लान बनाए हैं। जो धनकी की तरफ से चाहे जो पहाड़ी की तरफ से जितने पिकअप हैं, टेम्पो हैं, ई रिक्शा हैं, 8 बजे के बाद हम उसको डाइवर्ट किए हैं। अगर उनको टाउन में आना ही है तो बिस्कुमान ऊपर है, बिस्कुमान से होके जो कुम्हरार वाला पुल है उससे फिर जा सकते हैं टाउन में। जो भी बस धनकी पर आएंगे, जो गांधी सेतु की तरफ से आते हैं, चाहे जो पूर्वी दिशा से टोल प्लाजा की ओर से आते हैं, न्यू बाईपास होकर, मीठापुर होकर, गांधी मैदान, चाहे कहीं भी अन्यत्र जाना है तो जाएंगे। धनकी से या बिस्कुमान से कोई भी बस नीचे, चाहे कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी, जब तक एग्जाम होगा उस पीरियड में जाने की अनुमति नहीं होगी।
0: इधर परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग की ओर से विशेष बसों का परिचालन किया जा रहा है। साथ ही रेलवे की ओर से भी नीट अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक आज पटना के कर्पूरी सभागार में आयोजित हो रही है। अलग अलग होने वाली बैठकों में पार्टी की रणनीति और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अशफाक अहमद ने बताया कि सुबह में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें परिषद के सभी निर्वाचित पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद राज्य परिषद की बैठक होगी। इधर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में मंत्री, सभी सांसद, विधायक और MLC मौजूद रहेंगे।
1: यहाँ जो है बिहार प्रदेश जनता दल कार्यालय में राष्ट्रीय परिषद का राज्य परिषद का बैठक होने जा रही है, उसको लेकर हम लोग काफी उत्साहित सब हमारे पार्टी के जो भी प्रदेश के स्तर के जो भी कार्यकर्ता है नेता है सभी उत्साहित थे। बिहार में पहली बार इसके पहले भी हुआ है, लेकिन बिहार में जो है राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है। परिषद के सभी डेलीगेट सभी प्रदेश से आ रहे हैं, उनको यहाँ गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी पदाधिकारियों की सूची जारी की। नई कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष, 5 महासचिव और 6 सचिव बनाए गए हैं। मधुबनी से विधायक माधव आनंद को एक बार फिर प्रधान महासचिव बनाया गया है। अरविंद वाजपेयी को राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा है कि नई टीम सामाजिक न्याय, सुशासन और विकास के एजेंडे को संकल्प के साथ आगे बढ़ाएगी। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि सरकार उद्योग और निवेश के लिए एक सक्षम, प्रतिस्पर्धी और निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पटना में प्रमुख उद्योग संगठनों के साथ समन्वय बैठक में कहा कि हर 30 से 35 दिन के अंदर उद्योग संगठनों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे उद्योग जगत की जरूरतों के अनुसार सरकार को नीति निर्धारित करने में मदद मिलेगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 2027 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने परीक्षा परिणाम जारी करते हुए बताया कि 593 अंक प्राप्त कर श्रद्धा पांडे टॉपर बनी हैं। वहीं 592 अंकों के साथ शशांक गौरव सेकंड टॉपर बने हैं, जबकि आयुष विजय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2024 में आयोजित 70वीं BPSC संयुक्त परीक्षा के PT में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा में 1282 पुरुष और 745 महिला अभ्यर्थी सफल हुए हैं। टॉप 10 में 5 महिला अभ्यर्थी हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य के विकास में अपना सकारात्मक सहयोग दें। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से ईमानदारी और निष्ठा के साथ दायित्व निभाने की अपील की है। प्रदेश में जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज अब ऑनलाइन ही मिलेंगे। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। निर्देश में कहा गया है कि ऑफलाइन मोड में दस्तावेज जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग की उप निदेशक मोना झा ने इस संबंध में कहा है कि सभी प्रकार के राजस्व अभिलेखों की केवल डिजिटल हस्ताक्षरी प्रतियां ही भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से दी जाएंगी। सरकार ने कहा है कि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से जमीन संबंधी धोखाधड़ी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि वर्ष 1996 से अब तक के दस्तावेज डिजिटल कर दिए गए हैं। प्रदेश में मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव आ रहा है। दक्षिण बिहार में तपिश की स्थिति बरकरार है, जबकि उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। विभाग ने नवादा और पश्चिम चंपारण जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर, जबकि शेष भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के मध्य एवं पश्चिमी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के नवादा एवं पश्चिम चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भभुआ, भोजपुर और बक्सर जिलों में लू चलने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने नीट परीक्षा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने नीट परीक्षा पर लिखा है, अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट, मुख्य सचिव और डीजीपी खुद कर रहे निगरानी। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर लिखा है, भरत तिवारी मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के आदेश। दैनिक भास्कर ने बीपीएससी परीक्षा परिणाम पर लिखा है, 70वीं बीपीएससी में श्रद्धा टॉपर, टॉप 100 में 45 महिलाएं। प्रभात खबर ने केंद्र सरकार के निर्देश को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, लाभ से ज्यादा नुकसान की आशंका वाली 16 एफडीसी दवाएं हुई बैन। राष्ट्रीय सागर लिखता है, पीएम किसान योजना के तहत 9 करोड़ 44 लाख किसानों के खातों में भेजे गए 18,880 करोड़ रुपए। आज अखबार की सुर्खी है, पॉलिटेक्निक संस्थानों में शुरू होंगे नए कोर्स। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। योग दिवस पर पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित हुआ मुख्य समारोह। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने किया सामूहिक योगाभ्यास। देश भर में नीट यूजी की परीक्षा आज दोबारा आयोजित की जा रही है। प्रदेश के 34 जिलों में बने केंद्रों पर 1,56,000 से अधिक परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। और जदयू की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक आज पटना में, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।
9: Pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up. Hello. Now pick your phone up.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपनी रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस के साथ, जहाँ आपकी फरमाइशें और आपके पसंद की गीतें सजाते हैं इस महफिल को। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029994911। जी हाँ, 8029994911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। और दोस्तों, अब आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि आप कहीं भी हो, अपने जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM से कैसे जुड़ रहे हैं। तो देर किस बात की है, जुड़े रहिए हमारे साथ, भेजते रहिए अपनी फरमाइशें और बनिए इस संगीत भरी महफिल का हिस्सा। तो चलिए बढ़ाते हैं इस सुरीले सफर को आगे और लेते हैं आज की पहली फरमाइश। जानते हैं कौन है हमारे पहले श्रोता, कहाँ से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आप सुन रहे हैं हेलो माय चॉइस सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
2: जी मैं सुधीर बोल रहा हूँ, झारखंड से मैम।
1: जी जी, कैसे हैं सुधीर जी?
2: बिल्कुल ठीक है मैम, आप कैसे हैं?
1: हम भी बढ़िया हैं।
2: मौसम का क्या मिजाज है मैम?
1: मौसम का तो हाल मत पूछिए, अभी ही लग रहा है जैसे कि दोपहर का 1 बज चुका हो।
2: जी जी, इधर भी वही हाल है मैम। 2 दिन पहले बारिश हुई थी हल्की फुल्की।
1: हाँ, इधर भी वैसे ही हुई थी, बारिश तो नहीं है बोलेंगे लेकिन बूंदाबांदी हुई थी।
2: जी जी, आप सोनी मैम बोल रहे हैं ना?
1: जी जी। तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
2: आज भी पुरानी फिल्म का गाना सुना दीजिए मैम, कश्मीर की कली फिल्म का गाना सुना दीजिए।
1: कौन सा?
2: मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, गीत के बोल हैं इशारों ही इशारों में दिल लेने वाले।
1: जी जी, और डेडिकेट भी करिएगा।
2: जी मैम, उससे पहले मैम आपको आपके रेडियो रिम्यूम की पूरे टीम को और जितने भी रेडियो रिम्यूम के लिसनर हैं सबको सुनाना चाहता हूँ।
1: ओके, चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना।
2: जी मैम।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कॉल

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो रंजी में।
0: हाँ, साथ मास्टर ग्राम धनाव से।
1: जी, क्या हाल चल बा?
0: अरे हम एक ठीक है, बताऊँ अपन बताई।
1: हमरो बढ़िया बा।
0: हाँ, दो बड़ी कड़क निकल बा।
1: हाँ जी, क्या कह जाए, तो बातें अलग बाटे।
0: हाँ, एक बार फोन लगा ला रहा, फिर कट गई, बहुत बार लगे नी फोन जन नी।
1: उठे से पहले ही कट गए हटे।
0: हाँ हाँ, कहानी के भाई कितना देरी अगर उठाए में।
1: और सब बताए,
0: लगन पंगा सब बिता लेंगे हमने के, अब काम में लगन बन जाए, दो चार पाँच गो लगन बा।
1: गाना कौन सुनवा दिया आज?
0: एगो हमारे आजम पोता बा, बड़ी तंग करता है, बहुत नंबर याद कर लो।
1: अच्छा,
0: दिव्या जी से बातों कर ले रहे। गाना सुना दी नगीना मूवी के। आज कल याद कुछ और रहे नहीं, एक बस आपके।

0: के बाद सबसे पहले रवा को सुना के बाद और रेडियो रेंजी में रामा जी के और मनान भाई के और सगीर आलम मरान और जितना हमने के बन जाए रोशन टेलर में घना सुन जाए सबकी सुनम जाए।
1: चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सोना कॉल के।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
11: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
12: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
13: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
12: तो देर मत कीजिए,
13: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
14: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
15: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
14: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
16: तो दोस्तों, दोस्तों छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029294911। जी हाँ 8029294911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार बुधवार शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहाँ से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो 90.4 FM पर।

0: जी मैडम, हम गोपालगंज भोजपुर से बोल रहे हैं।
1: जी जी, नाम बता दीजिए अपना।
0: मेरा नाम दुर्गेश कुमार सिंह पड़ेगा, भोजपुर।
1: अच्छा अच्छा, तो क्या करते हैं दुर्गेश जी आप?
0: जी मैडम, मैं जॉब करता हूँ यहीं से।
1: अच्छा,
0: अपना खुद का बिजनेस।
1: तो गाना कौन सा सुना दे आपको?
0: जी हमको गाना सुना दीजिए भोजपुरी कोई अपने तरफ।
1: आवाज में सुनना पसंद करेंगे?
0: जी हम पवन सिंह का कोई सैड सॉन्ग हो।
1: पवन सिंह का सैड सॉन्ग कोई भी, और सुनवाना भी है?
0: जी हमारे दोस्त है जो अंशु सिंह है, हैप्पी सिंह है, और बहुत सारे दोस्त।
1: चलिए तो प्ले करें गाना आपके।
0: जी मैडम
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माइक्रो, इसमें कॉल किया।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
6: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
7: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
6: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
7: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
7: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन

0: BSNL, Jio, Airtel, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
0: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: Pick it up.
3: Hello.
2: Now pick your phone up.
3: Hello.
2: Pick it up.
3: Hello.
2: Now pick your phone up.
3: Hello.
4: Jab phone ki bindi bajti hai to kehte hain hello.
5: तो दोस्तों छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद के गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो 90.4 FM पर।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: विकास कुमार, अंतापुर
1: जी। क्या हाल चाल है विकास जी?
0: है बढ़िया है जी, बहुत आज गर्मी है, काम करने का मन नहीं कर रहा है।
1: गर्मी तो काफी है,
0: आज बहुत धूप है, बहुत ज्यादा
1: हवा नहीं चल रहा है ना इसलिए।
0: और बताइए मैडम, आप कैसी है मैडम?
1: बिल्कुल बढ़िया है।
0: अच्छा, अब खाना वाना खा लिया?
1: हाँ जी, खाना पीना हो गया है, खा के ही घर से आते हैं हम।
0: अच्छा,
1: तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
0: आज गाना सुनवा दीजिए, वो गाना नहीं है, क्या बोलते हैं, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, वही सॉन्ग सुनवा दीजिएगा।
1: और सुनवाना भी है?
0: सुनवाना है सबसे पहले आपको।
1: अच्छा,
0: अब मेरे दोस्तों को और जितने रेडियो रेंज में सुनने वाले हैं सबको शुरुआत, सबको।
1: ओके चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना।
0: ये बजे बजाइएगा ना?
1: ये शाम को चलेगा 5 से 7 के बीच में।
0: 5 से 7 आज के बीच में ना
1: जी? और रिपीट चलता है
0: 5 बजे से स्टार्ट कर दीजिएगा।
1: हाँ 5 बजे, ये नहीं बोल सकते कि 5 बजे ये स्टार्ट होगा, ठीक है, 5 से 7 के बीच में कभी भी आ सकता है। और सुबह रिपीट चलता है 9 से 11।
0: अच्छा, 9 से 11।
1: हाँ, और रात को चलता है 12 बजे से।
0: अच्छा,
1: 3 टाइम चलता है, आप उसमें से कभी भी सुन सकते हैं।
0: आज मेरी छोटी वाली लड़की बोल रही थी कि आपसे बात करने के लिए, तो हम तो आ गए काम पर, आज मैं छुट्टी में था।
1: अच्छा,
0: तो मेरे को ठेकेदार बुला लिया कि आ जाओ, सेंटरिंग वेंटरिंग ठोकना है।
1: अच्छा अच्छा,
0: इतना गर्मी पड़ता है कि आने का दिल नहीं करता है।
1: क्या करिएगा, गर्मी है ही ऐसा,
0: मजबूरी जो मजबूरी जो करे।
1: चलिए फिर बात होगी।
0: ठीक है ठीक है
1: ठीक है,
0: बहुत अच्छी कोशिश की है आपका नंबर लगाते लगाते, बहुत
1: काफी सारे कॉल आते हैं ना, सबसे बात हो ही रही है 11 बजे से।
0: फिर मैं बजरंग बली के नाम लिए कि आज आज मैडम से बात हुआ कि नहीं होगा।
1: चलिए
0: कोशिश किए तो मैंने लग गया। ठीक है, बजा दीजिएगा।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं जो इसमें कॉल।

0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: बस आपसे तो लगता है कि कितने दिन हुआ बात ये हुए। आज कैसे कैसे
1: चलिए, जैसे जैसे करके आज हम भी बात कर लिए।
0: नहीं तो मैं तो आपके शो से भागने वाला था कि अब तो सोनी जी से बातें नहीं होती है।
1: नहीं, भागिएगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि कब आने वाले हैं तुम्हें।
0: उसी इंतजार में तो कॉल कर दिए।
1: कॉल किया और बात हो भी गई। कहते हैं ना, सच्चे दिल से अगर कुछ चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने वाले जुड़ जाती है।
0: बात वही है।
1: बस
0: सही में मैं आज मैं करने वाला नहीं था। मैं सोचा कि चलिए एक बार करते हैं।
1: और बताइए, हाल चाल कैसा है?
0: बस कट रहा है जैसे तैसे।
1: तो छुट्टी होगी
0: आप लोग? हाँ छुट्टी है, आप लोगों के सहारे कट रहा है।
1: तो गाना कौन सुनवा दे आज?
0: आज हमें सुनवा दे आप वो जो शिल्पी राज का है, लवर के धोखा दो, एक बार मौका दो, अनारी के जैसा एकदम, आप तो ढूंढ के निकाल ही देंगे।
1: नहीं, जो पता है वो बता देते हैं, जो नहीं पता होता वो पूछते नहीं है कि किसके आवाज में है चाहे क्या है।
0: नहीं पता है वो भी सोनी जी से निकलने वाला नहीं है।
1: थोड़ा टाइम लगता है ढूंढने से, तो भगवान भी मिल जाएंगे। फिर भी गाना है,
0: जब जो गाना समझ में नहीं आता है वो भी बच जाता है। तो ये तो
1: पता है,
0: ये तो रोज की है, ये तो रोज की है
1: जी।
0: और सब
1: बढ़िया है।
0: आज भारती जी कहाँ है?
1: भारती जी भी यही है, बैठी हुई है पास में ही।
0: ठीक है, भारती जी भी सही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक होता है कि आपसे थोड़ी लगाव हो गया है। भारती जी भी सही है।
1: तो अब क्या पुराना आदत छूटते छूटते ना छूटता है?
0: आदत छुड़ा रहे क्या धीरे धीरे?
1: नहीं छुड़ा नहीं रहे, मतलब बात की बात है, छुड़ा कहाँ रहे, अभी तो है ये है।
0: हाँ ना सही है। तो वो जिस दिन आप बीच में एक बार और बात किए थे कि आधे आप बात किए थे, आप आधे भारती जी करी थी, वो शो आपका नहीं चला?
1: नहीं चला है, 3 कॉल उसमें से बच गया है। चला तो था, उसी दिन चला था। नहीं, आपका गाना है और 2 गाना और है जो कि आज तो शायद नहीं चलेगा, कल में चलेगा।
0: तो ठीक है, हमारा ही गाना पेंडिंग में होना चाहिए, ऐसा कुछ बात नहीं। वही तो बोल रहे हैं कि
1: तो आदमी पीछे रखता है ना बाकी।
0: अब आज उस दिन का सुनाएंगे तो फिर आज का फिर
1: पेंडिंग में रहेगा।
0: वो सब हमें पता है
1: ना, फिर रिकॉर्डिंग हुई है तो चलेगी, बस आप सुनते रहिए।
0: तो आज पूरे आपका रिकॉर्डिंग है कि भारती जी भी है?
1: नहीं, वो भी रहेंगी।
0: तो आधे आधे वो इसे सुनाएंगे ना मिला के, एक साथ तो दोनों नहीं चलेगा ना।
1: मेरा टाइम होगा शो का तो हम चले जाएंगे शो के टाइम में।
0: अच्छा
1: अच्छा ठीक है,
0: चलिए ठीक है, बहुत बात हुआ।
1: तो गाना आपकी प्ले कर रहे हैं।
0: ठीक, थैंक यू मैम,
1: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद तुमने कॉल किया।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
12: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
12: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
13: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
14: पिक इट अप, पिक इट अप,
15: हेलो,
14: नाउ पिक योर फोन अप,
15: हेलो,
14: पिक इट अप, पिक इट अप,
15: हेलो,
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
16: जब फोन दे रखते हैं तो कहते हैं हेलो।
17: तो दोस्तों, छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत। आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टूनशिप 90.4 FM में।
0: गाना सुनेगा मैम?
1: जी गाना तो सुनाएंगे। बता दीजिए नाम गाने का।
0: सैड सॉन्ग सुनना है।
1: सैड सॉन्ग कौन सा?
0: कोई सा जो अच्छा हो।
1: कोई सा भी तो नाम बता दीजिए, कोई सा भी गाना का।
0: याद नहीं है,
1: ऐसा थोड़ी होता है।
0: नीलकमल सिंह का सुना लीजिएगा।
1: नीलकमल सिंह का? और आप रवि बात कर रहे हैं? आप रवि बात कर रहे हैं?
0: हाँ
1: जी। और गाना डेडिकेट भी करिएगा?
0: हाँ यही पे है जिया जी।
1: अच्छा जिया जी का, चलिए।
0: और सुनने वालों
1: तो प्ले करे गाना?
0: हाँ प्ले करिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कॉल किया।

0: अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम सलाम। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: मैं अहमद अली सरिया वार्ड नंबर 1 से। क्या हाल चाल है मैम?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं? तबीयत पानी अच्छा है?
1: बिल्कुल बढ़िया है।
0: बहुत गर्मी पड़ रही है मैम।
1: गर्मी तो पड़ रही है, क्या किया जाए बताइए गर्मी से बचने के लिए।
0: गर्मी से बचने के लिए जितना हो सके अंदर रहे, घर के अंदर, और नींबू पानी पिया करें।
1: नींबू पानी तो नहीं पी सकते अभी, जहाँ है वहाँ।
0: क्यों, लेके जाइए ना मैम।
1: लेके जाएंगे फिर थोड़ा सा अस्कत हो जाता है ना।
0: बोतल में घर से ही बना कर लाया कीजिए और फ्रिज व्रिज उसको रख दीजिए और दिन भर पिया कीजिए।
1: फ्रिज तो नहीं है, उससे
0: अच्छी है ना मैम। अंदर तो एसी है, जरूरत नहीं है।
1: एसी है लेकिन अंदर सब कुछ पानी वगैरह नहीं जाता है ना, कहीं गिर उड़ गया तो फिर मशीन है, दिक्कत हो जाएगा।
0: कुछ नहीं गिरेगा, संभाल कर रखिएगा सर।
1: अब वो तो हम रख सकते हैं लेकिन अब एक हम लेके जाएंगे तो फिर और भी
0: और है। नहीं, जितने लोग सुन रहे हैं सभी लोग ऐसा किया कीजिए, पानी पिया कीजिए।
1: पानी तो पीना है, जितना हो सके पानी पिए बिना, मतलब का घर से बाहर ना निकले बिना, जरूरी क्या।
0: बहुत गर्मी है।
1: गर्मी तो है ही, साथ में
0: बुला कर रख दिया हूँ मैं। डेली मैं खुद पीता हूँ और बच्चे को भी पिलाते हैं, अपने घर पर पिलाते हैं नींबू पानी सबको।
1: चलिए तो गाना कौन सा सुनवा दें?
0: गाना हमको तो रेडियो पर बज रहा है, यही सुनवा दीजिए, सुना दे रहे हैं आपको। आप ही के चैनल पर बज रहा है।
1: हीरो फिल्म का गाना है क्या?
0: जी जी
1: जी। पूरा तो समझ में नहीं आया, शायद तू मेरा जानो है, तू मेरा दिल है वही गाना है ना?
0: जी जी मैम
1: जी।
0: मूवी का है आपका,
1: और सुनवाना भी है गाना?
0: सुनवाना तो जरूर है। सबसे पहले तो आपको, अख्तरी को, कमरान भाई को, और दिनेश भाई को, राघव जी को, और जो भी रिम रिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी।
1: चलिए
0: बहुत का शुक्रिया।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने राजसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
11: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
10: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
12: तो छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद के गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 80029994। जी हाँ, 80029994। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: हाँ जी हेलो है
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: आपको नमस्कार सुनी
1: जी, लाल बहादुर बात कर रहे हैं।
0: जी जी कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक है, बहुत प्रयास किए तब लगा है।
1: क्लियर फाइनली लग गया।
0: हाँ फाइनली तो लग ही गया। और सब ठीक है? और सब ठीक ठाक ना?
1: जी जी सब बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
0: ना फिल्म का
1: जाए
0: तो देर ना हो जाए, आ जा रही हो मैं तेरा रास्ता देख लिया।
1: और सुनवाना भी है?
0: हाँ ऋषि कपूर सुरेश राठौड़ का उसमें आवाज भी है। यही गाना सुना दीजिएगा हमारे स्वच्छता कर्मी में लगे हैं ग्रामीण से उनको और हमारे इंजीनियर सरस्वती बाबा और इनके प्रसाद।
1: तो प्ले करे गाना आपकी?
0: ठीक है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
9: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
0: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
1: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
0: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87894 18744।
12: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
13: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
12: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
13: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
14: Pick it up, pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
14: Pick it up, pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
16: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello.
5: तो दोस्तों, छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत। आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद के गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 80029494। जी हाँ, 80029494। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार बुधवार शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो 90.4 FM पर।

0: जी नमस्ते बहादुर
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में
0: जी।
1: कैसे हैं बहादुर जी?
0: ठीक है, आता मतलब
1: हम भी बढ़िया हैं। तो क्या हो रहा था अभी?
0: अभी तो कुछ ही भी नहीं हो रहा है, गर्मी चल रहा है।
1: तो नाश्ता हुआ?
0: जी जी, खाना है, नाश्ता हो गया।
1: चलिए बढ़िया है। स्वास्थ्य बताइए, घर परिवार में सभी लोग कैसे हैं आपके?
0: सब कुछ ठीक है।
1: चलिए बढ़िया का बात है। तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
0: नहीं, साधन में दुल्हन सजाएंगे
1: जी, और सुनाना भी है
0: जी जी। अमन
1: तो प्ले करे गाना आपकी?
0: जी जी
1: जी। गाना डेडिकेट भी करिएगा
0: जी। नमस्ते
1: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी चॉइस में कॉल किया।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: क्या बोलेगो?
1: वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: ऋषि।
1: कहाँ से बात कर रही हैं?
0: पहचानपुर जी।
1: एक बार और बताइए कहाँ से बात कर रही हैं?
0: पहचानपुर जी।
1: क्या करती हैं खुशी जी आप?
0: पढ़ाई करती हूँ।
1: अच्छा, किस क्लास की पढ़ाई करती हैं आप?
0: 9th क्लास के।
1: 9th क्लास की पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
0: अच्छी चल रही है, अभी छुट्टी करी मैं और छुट्टी चल रहा है।
1: अच्छा अच्छा, तो छुट्टी में कहीं घूमने गई कि नहीं?
0: नहीं नहीं।
1: तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
0: बाग में कोयलिया भोरे भोरे, वही कवाली सुनना है।
1: और सुनवाना भी है?
0: हाँ, मेरी मम्मी को और चाची को, मेरी बहन को और मेरी अंक को।
1: चलिए तो प्ले करें गाना।
0: ठीक है
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सो मैं कॉल किए।
2: कोयलिया भोरे भोरे,
3: क्या बात है।

पर बोलिए सुभान अल्लाह। अरे सूरज बोले, सूरज बोले एक हम ही नहीं, सूरज बोले।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
8: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
9: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
10: भरोसे वाले से लेंगे,
9: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
10: और कीमत भी।
9: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
11: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
12: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
13: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
14: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 8570-32042 पे।
15: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
16: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
15: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
16: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
16: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
16: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
17: Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
18: जब फोन बजने लगे तो कहते हैं hello, hello, hello.
19: तो दोस्तों, छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत। आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद के गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिए।
1: हाँ, किस्मत बोलते नहीं कैमरा से
0: जी। क्या हाल चाल बता जी?
1: था बाबू
0: सब बढ़िया? हाँ कहा तो नहीं, कैसे बने?
1: ठीक बनी बाबू,
0: ठीक बनी।
1: ठीक बना ना, घर सब ठीक बना?
0: हाँ जी, सब कोई बढ़िया बटे, घर भी हम बढ़िया बने।
1: ठीक बनिए चाहे,
0: ठीक बनो।
1: हाँ सब ठीक बना, जुम्मा आओ ना आओ।
0: अच्छा अच्छा, चलिए ठीक
1: बाली सुनाइए बढ़िया अपना मन से।
0: अच्छा चलिए ठीक बा, फिर
1: ठीक बा,
0: ठीक बा। तो प्ले करता नहीं रहा को वाली?
1: ठीक बा,
0: ठीक बा। बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल के।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
9: तो छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद के गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो 90.4 FM पर।

0: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: पठानपट्टी।
0: पठानपट्टी से कौन बात कर रही हैं आप?
1: रोशनी।
0: क्या हाल चाल है रोशनी जी?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ।
1: नाश्ता हो गया?
0: हाँ जी नाश्ता हो गया, आपका हो गया है? बताइए तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको? वालेकुम सलाम।
2: क्या हाल है?
0: बिल्कुल बढ़िया रहो, बताइए कैसा बने?
2: ठीक बने सर, आज तो गाना सुना दे बने, बहुत अच्छा लगा सुन के।
0: चलिए अच्छा बात है, क्या अच्छा लगा?
2: हाँ
3: भारती में
0: सोनी बात करता नहीं?
2: सोनी में और सब में
0: सब बढ़िया बा?
2: सब बढ़िया बा, तो ठीक बानो?
0: हाँ जी बढ़िया बा, और बताइए राहुल बढ़िया बानो?
2: हमने को बढ़िया बन सर, आज गाना भोजपुरी सुना दी तोरा पगली जी दुनिया के मेला में।
0: और गाना सुनवाओ के बा कोई के?
2: जी मैम।
0: शादी नाम लेवे के चाहे?
2: हाँ दयादिन वालो सब नाम रानी और देवर वालो अजी सफीक नीलो
0: गाना प्ले करता नहीं?
2: ठीक बा मैम,
0: ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल करी।

0: नमस्ते
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: मैं बोल रहा हूँ जिला गुना से, गोपाल ओझा।
1: जी कैसे हैं गोपाल जी?
0: बढ़िया है मैडम जी, आप कौन बोल रही हैं?
1: सोनी बात कर रहे हैं।
0: जी जी मैडम जी,
1: जी
0: दो हफ्ते में लगाया मैंने आपसे, दो हफ्ते में बात हो रही है मेरी तो।
1: चलिए बात हुई।
0: मौसम कैसा है बिहार का? मौसम कैसा है आपके उधर का?
1: इधर तो काफी धूप है, गर्मी है।
0: जहाँ भी धूप है थोड़ा, कल बारिश हुई थी थोड़ा सा, कहीं हल्की सी कहीं।
1: इधर तो क्या बोले, बादल भी नहीं आ रहा, बारिश तो दूर का बात।
0: धूप भी पड़ रही है इधर तो, बारिश भी हुई थी कल तो। क्या गाना सुनना है?
1: जी बिल्कुल, बताइए कौन सा गाना सुनवा दे आज आपको।
0: गाना सुनना है उदित नारायण अलका याग्निक फिल्म का, सुनवा दीजिए राजा हिंदुस्तानी का।
1: राजा हिंदुस्तानी का कोई भी?
0: राजा हिंदुस्तानी का ना, वो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं।
1: याद है तो चार लाइन गा दीजिए।
0: गा दें?
1: जी बिल्कुल।
0: कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। जी बस इतना ही आता है मतलब।
1: कोई नहीं, तो गाना डेडिकेट भी करिएगा।
0: डेडिकेट है ना, सुनील साहू मकसूदगढ़ से, ज्योति साहू जी है, मांगीलाल धागड़ जी है, रामधन धागड़ जी है।
1: तो प्ले करेगा ना?
0: प्ले कर दीजिए मैडम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: जी करे देखता रहूं।
3: क्या

0: जोकर।
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन बिन दे बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो।
4: तो दोस्तों, हर खूबसूरत सफर की एक मंजिल होती है और हर मंजिल पे एक छोटा सा ठहराव, लेकिन ये अलविदा नहीं बल्कि अगली मुलाकात तक का एक प्यारा सा विराम है। आज के हेलो माय चॉइस में हमने आपकी फरमाइशों के बहाने सुने कई सुरीले गीत, साझा किए कुछ प्यारी यादें और बिताए कुछ खूबसूरत पल। अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन वादा है कि फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी और फिर सजेगी आपकी पसंद की गीतों की महफिल। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी के हर पल को संगीत की तरह महसूस करते रहिए, क्योंकि दोस्तों जिंदगी की हर धड़कन में एक धुन छुपी होती है, बस उसे सुनने और गुनगुनाने की देर होती है। मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त और होस्ट आरजे सोनी। अब दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे, फिर सुनेंगे आपकी पसंद और फिर सजाएंगे संगीतों से भरी एक नई महफिल। तब तक सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM, अपने जिले की आवाज़। नमस्कार।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: एक अजीब सी दुनिया की कल्पना कीजिए, जहाँ की बंजर जमीन इतनी गर्म है कि पानी उबल जाता है, सतह पर किसी हमले के निशान है, उस पर मौजूद रहस्यमय सुराखों के नीचे टनल्स की एक भूल भुलैया है, हर सुरंग इतनी बड़ी है कि उसमें एक पूरा शहर बस सकता है। ये दुनिया खत्म हो चुकी है, फिर भी अपने पड़ोसी प्लेनेट पर जीवन को कायम रखने के लिए जिम्मेदार है। आप सोच नहीं सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जगह हमारे कितनी पास है। ये है हमारा मून।

0: मान लीजिए कि आप एक एलियन हैं और हमारे सोलर सिस्टम को देख रहे हैं। कौन सी बात हैरान करेगी आपको? वो क्या है जिसे आप फिर से देखेंगे? चौंकाने वाला जवाब है हमारा ओवरसाइज्ड मून।
1: अगर आप मून को देखें और उसे हमारे सोलर सिस्टम के बाकी मून से कंपेयर करें तो वो काफी अजीब है।
2: बहुत बड़ा है, सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स के मून्स के हिसाब से बहुत बड़ा है।
3: वो जायंट मून है, लगता है जैसे हमारा बाइनरी प्लैनेट है जो हमारे प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता है।
0: हमारा प्लैनेट के साइज का मून सोलर सिस्टम में सबसे यूनिक है और दागों और धब्बों से ढका ये जायंट हमारी रक्षा करता है। उसकी ग्रेविटी टाइड्स पैदा करके अर्थ के ओशंस को जीवन से भर देती है। मून हमारे प्लैनेट के झुकाव को कायम रखता है जिससे क्लाइमेट और सीजन्स चलते हैं। अगर मून ना होता तो हम कभी इवॉल्व नहीं कर पाते। हम पर मून के बहुत एहसान हैं, पर फिर भी उसका बनना प्लैनेटरी साइंस की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। हमारे सुपर साइज्ड मून के ओरिजिन से जुड़े कई आइडियाज हैं, पर वो सब एक ही तरीके से शुरू होते हैं 460 करोड़ साल पहले।
4: जब हमारा सोलर सिस्टम शुरू में बना तो वो उससे बिल्कुल अलग दिखता था जैसा अब दिखता है। सन के आसपास कुछ प्लैनेट्स और बहुत सारी खाली जगह होने के बजाय उस वक्त वहाँ पर एक डिस्क थी, पर वो डिस्क काफी मोटी थी और गैस और डस्ट और रॉकी बॉडी से बनी थी।
0: जब नए सूरज का जन्म हुआ तो उसने सबसे पास की गैस के बादलों को दूर उड़ा दिया। रॉक्स के जो टुकड़े पीछे छूट गए वो धीरे धीरे इकट्ठे होकर अर्थ जैसे प्लैनेट्स बनाने लगे, पर उस वक्त इससे कहीं ज्यादा प्लैनेट्स थे जितने हमें आज दिखते हैं। जायंट रॉक्स ने सही जगह लेने की कोशिश की और स्टेबल ऑर्बिट्स में जाने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें से ही किसी प्लैनेट को हमारा मून बनना था?
1: इस बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं कि हमारा ओवरसाइज मून कहां से आया। एक आइडिया ये है कि वो बस यूं ही हमारे सोलर सिस्टम में भटक रहा था और हमने उसे कैप्चर कर लिया।
0: कैप्चर थ्योरी के मुताबिक पास से गुजर रहा एक प्लैनेट हमारे शुरू के अर्थ के बहुत पास आया और हमारे प्लैनेट की जबरदस्त ग्रेविटी ने उसे पकड़ लिया। वो प्लैनेट अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट में घूमने लगा और वो मून बन गया जिसे हम आज देखते हैं। ये थ्योरी सुनने में ठीक लग रही थी, पर साइंटिस्ट्स को इसे सच साबित करने के लिए सबूत चाहिए था।
5: अगर ये बात सच है कि मून एक कैप्चर प्लैनेट है तो फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अर्थ से अलग होने चाहिए। वो एक ऐसी चीज थी जो कहीं और बनी थी जिसे बाद में अर्थ ने पकड़ लिया था, तो जाहिर है आप ये मानकर चलेंगे कि उसका कॉम्पोजिशन अर्थ से अलग होगा।
0: इस थ्योरी को साबित करने के लिए साइंटिस्ट्स का मून की शुरू की रॉक्स को अर्थ पर मौजूद उस तरह के सैंपल्स के साथ कंपेयर करना जरूरी था। इस कंपैरिजन के लिए सबसे अच्छी रॉक एक मिनरल है जो सिर्फ तब बन सकती थी जब नया बना मून पिघली हुई स्टेट में था। अर्थ पर इस तरह की रॉक बहुत ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी वाली जगहों पर बनती है जैसे आइसलैंड।
5: ये ढूंढ रहे थे हम अनऑर्थोसाइट को, कितना सफेद है ये अनऑर्थोसाइट। नॉर्मल बसॉल्ट की तरह नहीं बनता है, यूं समझिए कि ये डार्क बियर पर सफेद झाग है जो ऊपर तैर रहा है। तो एक मैग्मा एनवायरनमेंट में ये बनता है और फिर तैर कर मैग्मा सी के ऊपर आ जाता है।
0: मून पर से एनऑर्थोसाइट का सैंपल लेना जरूरी है क्योंकि हो सकता है एस्ट्रॉइड के टक्करों से डार्कर रॉक्स की केमिस्ट्री बदल गई हो।
1: हमें हर हाल में अनऑर्थोसाइट रॉक का टुकड़ा ही चाहिए था क्योंकि हम डार्क मटेरियल से मून के ओरिजिन के बारे में नहीं जान सकते हैं। हमें वो शुरू की रॉक चाहिए थी मून का ओरिजिन जानने के लिए।
0: ये पक्का करने के लिए कि अपोलो एस्ट्रोनॉट्स मून पर से सही रॉक उठाएं, नासा ने उन्हें आइसलैंड भेजा।
5: आप समझ गए होंगे कि एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग के लिए यहाँ क्यों भेजा गया था। ये जो लैंडस्केप है ये बहुत सुनसान है, यहाँ पर ज्यादा पेड़ पौधे नहीं है, ये काफी हद तक मून की तरह है, बहुत ही बंजर जगह है ये। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन लोगों में बहुत जोश है, वो फाइटर पायलट्स हैं और उन्हें थोड़ी जियोलॉजी सिखाना जरूरी है, और उन्होंने क्लासरूम ट्रेनिंग को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो उन्हें यहाँ ले आए ताकि उन्हें पता चले उन्हें कौन सी रॉक्स ढूंढनी है, वो कौन सी सबसे इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिन्हें अपने साथ वापस लाना है।
6: नाइनटीन सेवेंटीज में अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने सैंपल्स इकट्ठे किए और उन्हें कंपैरिजन के लिए अर्थ पर ले आए। नतीजों ने साइंटिफिक वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया।
5: उन्हें पता चला कि मून का कॉम्पोजिशन लगभग बिल्कुल वैसा था जैसा अर्थ के क्रस्ट का कॉम्पोजिशन है, तो वो आइडिया कि मून एक कैप्चर्ड प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम में कहीं और से आया था वो खत्म हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता था। वो रॉक्स अर्थ की रॉक्स से मिलती जुलती थी और ये एक पहेली थी।
6: कैप्चर्ड प्लैनेट थ्योरी के दम तोड़ने के बाद प्लैनेटरी साइंटिस्ट्स ने कुछ नया करने का सोचा।
1: साइंटिस्ट्स ने मिलकर इस बारे में कुछ करने के इरादे से कोना हवाई में एक कॉन्फ्रेंस की। प्लैनेटरी साइंस के सारे टॉप साइंटिस्ट्स वहां पहुंचे और उन्होंने अपने आइडियाज पेश किए।
2: लोगों को लगता है साइंटिस्ट्स में इमेजिनेशन नहीं होती है, वो सिर्फ रोबोट्स हैं जो चीजों को देखते हैं और एनालाइज करते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको ये पता लगाना है कि मून कहां से आया है तो आपके पास वाइल्ड इमेजिनेशन होनी चाहिए, क्रेजी आइडियाज होने चाहिए, लेकिन उनके पीछे कुछ बेस जरूर होना चाहिए।
1: उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और उस मीटिंग से बाहर आकर कहा, हाँ ये हो सकता है।
6: नई थ्योरी का फोकस मून रॉक्स का वाटर कंटेंट था, वो बहुत ज्यादा सूखी थी।
3: कोई चीज थी जिसने मून के टेम्परेचर्स को हद से ज्यादा बढ़ा दिया था और उसके बाद हम किसी तरह के कोलिजन के बारे में सोचने लगे।
6: नई थ्योरी के मुताबिक 450 करोड़ साल पहले एक बहुत भयानक टक्कर हुई थी, पर वो टक्कर मून के साथ नहीं बल्कि वो टक्कर अर्थ के साथ हुई थी।
2: ये बहुत ही अजीब आइडिया था कि अर्थ बना, बनने के कुछ ही वक्त बाद प्लैनेट के साइज का ऑब्जेक्ट जो लगभग मार्स के साइज का था आया और अर्थ से टकरा गया। उस टक्कर ने बहुत सारे मटेरियल को उड़ाया जो बाद में इकट्ठा होकर मून बन गया। ये बहुत ही अच्छा आइडिया था, बिल्कुल नया आइडिया था सच में।
6: साइंटिस्ट ने उस मार्स के साइज के प्लैनेट को थिया नाम दिया और सोचा कि उस टक्कर के दौरान क्या हुआ होगा। 450 करोड़ साल पहले थिया आता है और अर्थ से बहुत जोर से टकराता है। उस टक्कर की वजह से पिघला हुआ मलबा बिखर जाता है और जलते हुए पत्थरों की एक रिंग अर्थ के इर्द गिर्द बन जाती है।
5: अगर हम किसी तरह से वक्त में पीछे जा पाते और उस वक्त अर्थ पर खड़े होते जब मून बन रहा था तो वो कमाल का नजारा होता। आसमान में आग की एक चमकती रिंग फैली होती और आसमान में यहाँ एक ब्राइट बॉल होती मैग्मा की जगमगाती हुई, और हर तरफ से मलबा और छोटे रॉक्स उसी पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट होते बहुत ज्यादा ग्रेविटी की वजह से। वो प्रोटो मून था, वो चीज जिसे आगे चलकर वो मून बनना था जो आज हमारे आसमान में है।
6: हमारा मून 1 साल से भी कम में बन गया। उसका और अर्थ का क्रस्ट केमिकली लगभग सेम है क्योंकि दोनों का ओरिजिन एक ही है।
2: ये इम्पैक्ट आइडिया बहुत अजीब जरूर है, पर इससे हमें मून से जुड़े बहुत से सवालों के सही जवाब मिलते हैं।
6: इम्पैक्ट हाइपोथेसिस यानी टक्कर वाली थ्योरी हमारे ओवरसाइज मून के ओरिजिन के लिए एक लीडिंग थ्योरी बन गई। पर जब स्पेस प्रोब्स मून की पिछली तरफ पहुंचे तो उन्हें एक ऐसी बात पता चली जिससे ये थ्योरी भी सवालों के घेरे में आ गई। मून में एक गहरा राज छुपा है। इसका जन्म एक जोड़वा के साथ हुआ था।
7: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
8: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
7: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
1: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
7: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
7: और 9097160602।
9: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
11: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
12: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
11: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
13: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
14: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
13: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
14: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
13: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
15: ठक ठक।
16: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
17: अच्छा मिला ही नहीं।
16: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
11: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
16: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
11: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
0: आज रात मून को देखिएगा, हो सकता है आपको कोई जाना पहचाना चेहरा दिखाई दे या फिर अपने कल्चर के मुताबिक कोई खरगोश या पेड़ दिख जाए। मून की सतह पर नजर आने वाले पैटर्न्स के साथ बहुत किस्से और कहानियां जुड़ी हैं, पर वो निशान हमें हमारे इस बड़े साइज के रक्षक के बारे में क्या बता सकते हैं?
18: जिसे हम मैन इन द मून कहते हैं, वो असल में हल्के और गहरे धब्बों की एक सीरीज है मून की सतह पर, और हम लोग प्रोग्राम्ड है चेहरों को पहचानने के लिए, इसलिए हमें वहाँ पर भी एक चेहरा नजर आता है।
0: ऐसे गहरे धब्बे सिर्फ मून पर ही दिखते हैं। सदियों पहले एस्ट्रोनोमर्स सोचते थे कि वो लिक्विड वाटर के बहुत बड़े समंदर को देख रहे हैं, पर अब हम जानते हैं कि वो गहरे दाग असल में एंशिएंट वोल्केनिक लावा के बहाव के हैं। प्लेनेटरी साइंटिस्ट जेनी रेडेबा अपने रिसर्च काइट कैंप से हवाई में कुछ ऐसे ही मिलते जुलते फीचर्स को ऊपर से देख रही है।
18: ये लावा फ्लोज जिन पर हम इस वक्त खड़े हैं बिल्कुल उन चीजों जैसे हैं जो हमें तब दिखेंगे जब हम मून के डार्क पैचेस पर खड़े होंगे। इनका रंग गहरा है, ये बेसॉल्ट के बने हैं और ये सतह पर बहुत जबरदस्त लावा फ्लोज के साथ बाहर आए थे।
0: पता चला कि मून पर लावा के डार्क प्लेन्स कभी उस पर हुए हमले के निशान हैं। एक वायलेंट बीते वक्त के सुराग है वो। 400 करोड़ साल पहले नए बने मून पर एस्ट्रॉइड्स की बरसात हुई और उन्होंने उसकी सतह को छलनी करके रख दिया। जहाँ पर भी क्रस्ट पतला है वहाँ पर मून के गर्म इंटीरियर से पिघला हुआ लावा निकलने लगा। वो लावा फैला और जमने लगा और वो निशान बने जिन्हें हम आज अर्थ से देखते हैं। एक और अजीब बात, हालांकि मून रोटेट कर रहा है, अर्थ की ग्रेविटी उसे इतनी जोर से पकड़ लेती है कि हमारी तरफ हमेशा उसकी एक ही साइड रहती है। इससे उसकी दूसरी तरफ के फीचर्स एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन जाते हैं।
2: पूरी हिस्ट्री में मून की पीछे वाली साइड को अर्थ से कभी नहीं देखा गया था, आप वो हिस्सा देख ही नहीं सकते थे।
0: सन 1959 में सोवियत स्पेसक्राफ्ट लूना 3 मून की पिछली साइड के सामने से गुजरा और उसने पहली बार उसकी फोटोग्राफ ली। एस्ट्रोनॉमर्स को उम्मीद थी कि वहां पर भी वैसे ही डार्क और लाइट पैचेस दिखेंगे, पर उन्हें बहुत जोर का झटका लगने वाला था।
2: जब साइंटिस्ट्स ने वो पिक्चर्स देखी तो वो हैरान रह गए, पिछली साइड अगली साइड से बिल्कुल अलग दिख रही थी, उसमें क्रेटर्स ही क्रेटर्स थे। और मैं आपको बताऊं, वो बहुत ही अजीब बात थी, ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था।
0: पिछली तरफ बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट क्रेटर्स थे, पर उनका रंग एक जैसा हल्का था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ सतह पर बिल्कुल भी डार्क लावा नहीं बहा था, पर क्यों?
18: इसका एक ही सलूशन समझ में आता है कि जो सामने वाली साइड है और जो पीछे वाली साइड है, उनके क्रस्ट की मोटाई में फर्क है। मून की पीछे वाली साइड जरूर इतनी मोटी होगी कि लावा उसकी सतह को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाया, जबकि आगे वाली साइड जो पतली है, वहाँ पर लावा दरारों में से बाहर बहकर सतह के ऊपर आ गया होगा।
0: हाल के मास एमिशन से पक्का हो गया कि मून की पिछली तरफ का जो क्रस्ट है वो अगली तरफ के क्रस्ट से 48 किलोमीटर ज्यादा मोटा है।
2: पीछे वाली साइड पूरी की पूरी मोटी है, ऐसा नहीं है कि कहीं है कहीं नहीं है। नहीं, मून की दूर वाली साइड का क्रस्ट पास वाली साइड से ज्यादा मोटा है, अजीब बात है ये।
18: पिछले 50 सालों से प्लैनेटरी साइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक ये रही है कि पीछे वाली साइड का क्रस्ट इतना मोटा क्यों है।
2: इम्पैक्ट थियोरी में ये पॉइंट कवर नहीं होता है, उसमें से बस मून बनता है, उसे ये पता नहीं चलता कि एक साइड दूसरी से इतनी अलग क्यों है। इसलिए हो सकता है कि कुछ बहुत अजीब हुआ हो।
0: नई जेनरेशन के सुपर कंप्यूटर्स ने एक ऐसी एक्सप्लेनेशन दी है जो यकीन करने लायक है। थिया की टक्कर से एक नहीं बल्कि दो मून्स बने होंगे, और इस डबल बर्थ से डबल साइडेड मून की बात भी समझ में आ सकती है। थियरी के मुताबिक 450 करोड़ साल पहले रात के आसमान में दो मून्स हैं। छोटा मून अपने बड़े भाई का पीछा कर रहा है और धीरे धीरे उसके और करीब जा रहा है। आखिर में दोनों मून्स एक दूसरे के साथ स्लो मोशन में मिल गए, और छोटे मून ने बड़े मून की दूर वाली साइड को ढक दिया है, जिससे एक नया ज्यादा मोटा क्रस्ट बन गया है।
2: ऐसा नहीं है कि सभी टक्करें बहुत तेज स्पीड में होती हैं और उनके बाद बहुत सारा मटेरियल बिखरता है, तो जोर से टकराने के बजाय वो छोटा मून उससे बहुत आराम से मिला होगा और फिर उसी का हिस्सा बन गया होगा।
4: जब हम मून के एक हाफ को देखते हैं तो हमें एक बॉडी दिखाई देती है, और जब हम मून की दूसरी साइड को देखते हैं तो बिल्कुल अलग ही बॉडी दिखती है। वहाँ पर एक बॉडी दूसरी बॉडी से ढकी हुई है और इसलिए मोटी है।
0: दो मून्स एक हो गए। कम से कम सुपर कंप्यूटर्स के अंदर तो इस कॉस्मिक कोलिजन के सबूत बढ़ते जा रहे हैं, पर इससे सभी एस्ट्रोनॉमर्स सहमत नहीं है। वो स्पेस में एक अलग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और आखिर उन्हें वो मिल गया है, एक एलियन प्लेनेट में जिसे जिंदा भून दिया गया है।
19: सुनिए सुनिए सुनिए,
20: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
19: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
20: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
19: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
21: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
22: क्यों, क्या हुआ है?
21: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
22: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
21: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
3: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
23: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
23: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
23: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
23: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
23: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
23: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
23: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
24: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
25: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
24: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
23: संपर्क 99393665930।
26: हमारे सोलर सिस्टम से 480 लाइट ईयर्स दूर सन जैसे एक स्टार के इर्द गिर्द अर्थ जैसा एक प्लैनेट घूम रहा है, पर वो जो है जीने के लायक नहीं है। कोरो 7B एक सन ग्रेजर है। ये अजीब सा एक्सोप्लैनेट अर्थ के मुकाबले अपने सन के 60 गुना पास चक्कर लगाता है। इस कम दूरी की वजह से इस प्लैनेट का एक फेस अपने जलते हुए साथी की तरफ लॉक हो गया है, वैसे ही जैसे मून लॉक हो गया है अर्थ के साथ। नतीजा एक कॉस्मिक बारबेक्यू। स्टार की तरफ वाली साइड का टेम्परेचर 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा है, जिससे उसका रॉकी सरफेस लिक्विड मैग्मा के उबलते हुए समंदर में बदल गया है। इससे अलग प्लैनेट की दूसरी साइड ठंडी है और वहां का क्रस्ट सॉलिड है। ये ओवरकुक्ड एक्सोप्लैनेट एक इंस्पिरेशन है उस हैरान कर देने वाली नई थ्योरी के लिए जो हमारे मून के आधे मोटे क्रस्ट के बारे में सामने आई है। ये आइडिया दो ऐसे यंग रिसर्चर्स ने दिया है जिनका लूनर साइंस में कोई बैकग्राउंड नहीं है।
27: क्योंकि मैं एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करता हूँ, मुझे लूनर जियोलॉजी के बारे में बहुत कम पता था जब ये सब शुरू हुआ।
26: सन 2011 में जेसन राइट अपने कुछ कलीग्स से सन ग्रेजिंग एक्सोप्लैनेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि तभी मून के दो तरह के क्रस्ट्स की बात होने लगी।
27: और तब मुझे याद आया कि जब मून बना था वो अर्थ के बहुत पास था, और उस वक्त अर्थ बहुत गर्म होगा उस टक्कर की वजह से जिससे मून बना था। फिर मैंने देखा कि इसकी ज्योमेट्री बिल्कुल कोरो 7B जैसी है, और मैं ये सोचने लगा हो सकता है मून के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो।
26: जेसन ने ये थ्योरी पेश की कि अर्थ ने मून की पास वाली साइड को झुलसा दिया, वैसे ही जैसे स्टार्स सन ग्रेजिंग प्लैनेट्स को झुलसाते हैं।
27: तो अगर आप सोचें मून बन रहा है और ये बड़ी जलती हुई बॉल अर्थ उसके सामने लटकी हुई है, जबकि मून की पिछली साइड बिल्कुल शांत और ठंडी है।
26: मून के पास वाली साइड पिघले हुए अर्थ की वजह से गर्म है। अर्थ के गर्म सरफेस से मिनरल वेपर्स के बड़े बड़े बादल निकल रहे हैं, जो उस मून के इर्द गिर्द के बादल को और घना कर रहे हैं। ठंडी वाली साइड पर ये मिनरल्स कंडेंस होकर नीचे बरस रहे हैं और क्रस्ट को मोटा कर रहे हैं। ये आइडिया बुरा नहीं है, पर यह सिर्फ तब काम करेगा अगर मून का एक फेस उसके

0: जेसन के मून के झुलसने वाली थ्योरी को सपोर्ट मिला। ये अब भी नई है पर इस थ्योरी में दम है।
1: साइंस में अगर दो आइडियाज किसी चीज को बहुत अच्छे से समझाते हैं तो आप उसकी तरफ जाना चाहते हैं जो ज्यादा नेचुरल होता है। अर्थ का झुलसना उसे देखते हुए ज्यादा नेचुरल लगता है जो कुछ हम जानते हैं।
0: हमारी किस्मत अच्छी है कि अब अर्थ पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा ठंडा है, पर अंदर से ये अब भी गर्म है और इसकी वजह है अर्थ के कोर की गहराई में मेटल्स का रेडियो एक्टिव डिके। ये बढ़ती हुई गर्मी ही उस वोल्केनिज्म और जियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है जो आज हम सतह पर देखते हैं।
2: कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जो ऊपर उठ रही हैं और कुछ हैं जो ओशन में जा रही हैं। अर्थ का क्रस्ट लगातार बदलता रहता है।
0: मून के पास एक रेडियो एक्टिव कोर नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट्स ने हमेशा से माना है कि उसका सेंटर ठंडा है, उसकी जियोलॉजी डेड हो चुकी है। पर कुछ मिस्टीरियस ऑब्जर्वेशंस से एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि हम मून के बारे में गलत हैं।
2: एक बड़ा सवाल जिसका जवाब हम कई दशकों से ढूंढ रहे हैं वो ये है कि अब मून पर कुछ एक्टिविटी बची है या नहीं।
0: एस्ट्रोनॉमर्स ने कई सौ सालों से मून से लाइट के अजीब से स्फोट उठने की रिपोर्ट्स दी हैं। कुछ दूसरों ने कुछ मिनट तक कायम रहने वाले रेडिश ग्लोज भी देखे हैं। क्या इन रेयर साइटिंग्स का ये मतलब है कि मून का जियोलॉजिकल हार्ट अब भी धड़क रहा है?
1: हमारी जानकारी में मून इतना छोटा है कि उसे 400 करोड़ सालों में ठंडा हो जाना चाहिए, पर फिर भी कुछ है जो हमें दिखाई देता है। कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जिससे ऐसा लगता है कि उसके अंदर अभी भी कुछ चल रहा है।
0: मून की पास वाली साइड के नॉर्थ वेस्ट में एरिस्टाकस नाम का एक वोल्केनिक रीजन है। एस्ट्रोनॉमर्स ने यहाँ पिछले 50 सालों में 700 से भी ज्यादा चमकती हुई लाइट्स देखी हैं। यहाँ तक कि नील आर्मस्ट्रांग ने भी यहाँ अपोलो 11 लैंडर की खिड़की से कुछ अजीब देखा था।
3: नॉर्थ में एरिस्टार्कस की तरफ देख रहा हूँ और वहाँ पर एक एरिया है जो आसपास के एरिया से ज्यादा जगमगा रहा है। थोड़ी सी फ्लोरोसेंस है वहाँ और काफी ब्राइट है। रोजर 11 रिकॉपी।
0: एरिस्टार्कस में क्या हो रहा है? वोल्केनोज के स्मोकिंग फ्लेक्स ने जैसे यहाँ हवाई में है प्लेनेटरी साइंटिस्ट्स को एक आइडिया दिया है, क्योंकि जहाँ धुआं होता है वहाँ आग भी होती है।
4: इसका सबसे बड़ा क्लू कि मून पर ये इवेंट्स कैसे हो रहे हैं ये है कि वो कहाँ हो रहे हैं। वो मून पर एक खास जगह पर हो रहे हैं जो काफी हद तक वैसी है जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ।
0: एरिस्टार्कस वोल्केनिक ऐश के बहुत बड़े बहाव से ढका हुआ है और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये बारीक हल्का मटेरियल वो अजीब नजारे दिखाने के लिए जिम्मेदार है जो हमें अर्थ से दिखाई देते हैं।
4: ये जो ऐश मैंने अभी उठा रखी है ये थोड़ी सी गीली है क्योंकि इस इलाके में हाल ही में बारिश हुई थी, पर जो मटेरियल हमें एरिस्टार्कस में मिलेगा वो बहुत ज्यादा बारीक होगा।
0: एक्टिव वोल्केनोज से निकल रही गैसेज वोल्केनिक ऐश के बारीक पार्टिकल्स और भाप को हवा में ले जाती है। सनलाइट उस ब्लूम को चमका देती है जिससे वो कई किलोमीटर दूर से दिखने लगता है।
4: कुछ ऐसा ही मून पर भी हो सकता है। वहाँ गैस है जो वेंट से बाहर आती है, वो लूनर डस्ट को अपने साथ उठाकर पूरे लैंडस्केप पर फैला सकती है और सनलाइट पड़ने पर चमक कर दिख सकती है।
0: अगर ये थ्योरी सही है तो इसका मतलब ये है कि मून के वोल्केनोज अभी भी जिंदा है।
4: इस तरह की बात उठती है तो कुछ समझ में नहीं आता। ये सोचकर बहुत अजीब सा लगता है कि मून आज भी जिंदा है। मतलब हम कई सालों से ये सोचकर बैठे हैं कि मून ठंडा और बेजान है, पर अब जो ये तमाम चीजें हो रही हैं, उसका मतलब हो सकता है कि मून बेजान नहीं है, मून जिंदा है। ये बहुत एक्साइटिंग है।
0: हम सोचते थे कि हम मून को समझ चुके हैं, पर हर बार जब साइंटिस्ट एक लेयर हटाते हैं तो एक नया सीक्रेट सामने आता है। और शायद सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि अगर वहां मून न होता तो यहां हम भी ना होते।
5: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले

0: और बिना टाका लगोले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करो तनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा। आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
1: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
7: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
8: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
8: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714 86164।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
11: मून और अर्थ का जन्म साथ में हुआ था। इन दोनों ने एक दूसरे के इवोल्यूशन पर बहुत गहरा असर डाला है और अब हमें ऐसा लगता है कि अर्थ पर जीवन को शुरू करने में भी हमारे ओवरसाइज्ड मून का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये अर्थ है आज से 440 करोड़ साल पहले, लगभग उसी वक्त जब अर्थ पर जीवन की शुरुआत हुई थी। नया बना मून सिर्फ 24,140 किलोमीटर की दूरी पर है और उससे बड़ा दिख रहा है जितना अब दिखता है। उसकी ग्रेविटी अर्थ के गर्म नए बने समुद्रों में ऊंची ऊंची टाइड्स उठाती है।
12: उस जमाने में टाइड्स को फीट में नहीं माइल्स में नापा जाता था। बहुत बड़ी बड़ी सुनामीज उठती थीं, जो पहले जमीन पर जाती थीं और फिर समुद्र में वापस आती थीं।
11: मून की ग्रेविटी अर्थ के ओशंस को ऊपर खींचकर पानी का एक उफान बनाती है, जिससे टाइड्स क्रिएट होती हैं और अर्थ के स्पिन की वजह से ये उफनता पानी टाइड्स बनकर जमीन पर जाता है। मून जितना पास उसकी ग्रेविटी का खिंचाव उतना ज्यादा और उतनी ही जबरदस्त टाइड होगी। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि वो गर्म रॉक पूल्स जिन्हें ये शुरू की बड़ी टाइड्स पीछे छोड़ जाती थी वो लाइफ को शुरू करने वाले इंग्रेडिएंट्स के लिए परफेक्ट मिक्सिंग बोल्स थे।
13: टाइडल पॉन्ड्स की अच्छी बात यह है कि वहाँ एनवायरनमेंट्स बदलते हैं, पानी आता है, न्यूट्रिएंट्स लाता है, चला जाता है, न्यूट्रिएंट्स कॉन्सेंट्रेट होते हैं। हो सकता है इस प्रोसेस से वो सब चीजें कॉन्सेंट्रेट हो गई हों जो जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी थी।
11: चार सौ चालीस करोड़ साल पहले जोरदार टाइड्स अर्थ की सतह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हिलाती है। जब पानी पीछे हट जाता है वो केमिकल्स उथले रॉक पूल्स में वही छूट जाते हैं। सूरज की गर्मी की वजह से इवेपोरेशन होता है, उससे केमिकल कंटेंट्स और कॉन्सेंट्रेट होते हैं और शायद जीवन की शुरुआत इस रिच ऑर्गेनिक सूप में ही हुई थी।
14: अगर अर्थ के इर्द गिर्द मार्स की तरह छोटे छोटे मून्स होते तो उस तरह की बड़ी टाइड्स कभी नहीं उठती जो मटेरियल्स और एनर्जी को बीच एनवायरनमेंट पर ले गई और जहाँ पर जीवन को पनपने का मौका मिला। उसके बिना हमारे पास मिनरल्स नहीं होते, एनर्जी नहीं होती और शायद यहाँ पर लाइफ भी नहीं होती।
11: क्या अर्थ पर लाइफ मून की वजह से है? इसका फैसला होना अभी बाकी है, पर एक बात पक्की है, इंटेलिजेंट लाइफ के इवॉल्व होने में टाइम लगता है, हमारे केस में कम से कम 400 करोड़ साल। हम एक सिंगल सेल से बदलकर वो ऑर्गेनिज्म बन गए हैं जो अपना ओरिजिन जानना चाहता है, और वो मून ही है जिसने अर्थ के एक्सियल टिल्ट को 400 करोड़ सालों से स्थिर रखकर लाइफ को इवॉल्व होने का मौका दिया।
15: मून ने उस टिल्ट को एक जगह पर लॉक कर दिया और हमारे रोटेशनल एक्सिस को स्टेबलाइज किया है जिससे मौसम लगभग एक जैसे रहते हैं कई सौ सालों तक, कई हजार सालों तक।
14: जब हम अर्थ के टिल्ट को देखते हैं वो तब से वैसा ही है जब से कॉम्प्लेक्स लाइफ की शुरुआत हुई, और ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें एक सिंगल सेल्ड सिंपल ऑर्गेनिज्म से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कभी न बन पाते अगर ये स्टेबिलिटी नहीं होती।
11: मून के बिना सब चीजें कितनी अलग होती। अगर अनस्टेबल टिल्ट के भयानक असर को देखना है तो एक नजर मार्स पर डालिए।
16: मार्स का जो टिल्ट था वो लगभग 60 डिग्रीज का था। इसका मतलब ये है कि वहाँ इक्वेटर पर सर्दी होती थी और पोल्स पर गर्मी। वो बहुत ही मुश्किल माहौल था लाइफ के शुरू होने और कायम रहने के लिए।
14: जब हम मार्स को देखते हैं तो पता चलता है कि उसका एक्सियल टिल्ट इतना ज्यादा है कि वहाँ जीवन नहीं हो सकता है।
11: अगर अर्थ का टिल्ट बार बार बदलता रहता तो आइस एजेस मौसमों की तरह आती जाती रहती। ऐसे में जीवन को बार बार शुरुआत करनी पड़ती और उसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व होने का वक्त नहीं मिल पाता। मार्स की हालत देखकर ये बात और पक्की हो जाती है कि हमारे सुपर साइज्ड मून का अर्थ पर इंटेलिजेंट लाइफ को डेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ है, और इसीलिए साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगर हमें यूनिवर्स में दूसरी इंटेलिजेंट लाइफ को ढूंढना है तो उसके लिए इस तरह की कॉस्मिक पार्टनरशिप पर नजर डालना सही रहेगा।
13: जब हम एक्सोप्लैनेट्स को देखते हैं तो सोचते हैं इनमें से किन पर सिविलाइजेशंस एडवांस्ड लाइफ फॉर्म्स हो सकती हैं, और अगर कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास बड़ा मून है और कुछ ऐसे हैं जिनके पास नहीं है तो मैं कहूंगा चलो पहले उन्हें देखते हैं जिनके पास मून है, क्योंकि हमें मालूम है इस दुनिया में एक बड़ा मून है और यहाँ एडवांस्ड लाइफ है।
14: हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर देख रहे हैं, हम गैलेक्सी में देख रहे हैं, हम ऐसे एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं जिन पर जीवन हो सकता है। ऐसे में शायद हमें किसी स्टार के इर्द गिर्द घूम रही एक ऐसी चीज को ढूंढना चाहिए जिसके पास सही लोकेशन पर एक सुपरसाइज्ड मून हो।
11: अगर हमें कभी इन दूर के एक्सो स्टार्स को देखना हो तो हमें स्पेस में जाने का एक सस्ता भरोसेमंद जरिया चाहिए होगा, और स्टार्स के इस सफर में मून हमारे लिए बहुत काम आ सकता है। फ्यूचरिस्ट का मानना है कि इंसान की किस्मत में स्पेस पर राज करना लिखा है। हैरानी की बात यह है कि हो सकता है मून इस सपने को सच करने में अहम भूमिका निभाए, क्योंकि एक लूनर लॉन्च पैड पर एटमॉस्फेयर और ग्रेविटी बहुत कम होते हैं जिनकी वजह से अर्थ पर लॉन्चेस बहुत मुश्किल होते हैं।
14: तो अगर मिसाल के तौर पर हम मून पर एक बेस बनाते हैं तो हमें वहां से ऊपर जाने के लिए और दूसरी बॉडीज को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होगी।
6: एक लूनर केप कैनावरल बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? पता चला कि इसमें सबसे बड़ी रुकावट होगी ग्राउंड क्रू को जिंदा रखना।
15: मून की सतह पर होने में सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि आपको एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं बचाती है, क्योंकि वो वहाँ है ही नहीं। अगर एक बड़ा सोलर स्टॉर्म आ गया तो हाई एनर्जी पार्टिकल्स का फ्लक्स एस्ट्रोनॉट्स को इतनी ज्यादा एनर्जी से हिट करेगा कि उनके सेल्स बिखर जाएंगे और उनका डीएनए तबाह हो जाएगा।
6: मून को वो रेडिएशंस भी हिट करती है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आती है। बहुत दूर के सुपरनोवास कॉस्मिक रेज कहे जाने वाले चार्ज पार्टिकल्स फेंकते हैं जो लाइट की स्पीड से चलते हैं। अर्थ पर हमारा एटमॉस्फेयर उनमें से ज्यादातर को अंदर आने से रोकता है, पर मून पर एस्ट्रोनॉट्स उनके सीधे निशाने पर होते हैं और उनमें से कईयों ने अपनी ऑप्टिक नर्व से कॉस्मिक रेज के टकराने के बाद छोटे फ्लैशेस दिखने की बात बताई है। मून पर ऊपर से गिर रहे स्पेस रॉक्स एक और बड़ा खतरा है।
17: मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो अगर एक रेत के कण जितनी चीज भी जो एक बुलेट से कई गुना ज्यादा तेज स्पीड से चल रही हो और अगर वो आपकी कॉलोनी को हिट कर दे तो वो दीवार में अच्छा खासा सुराख बना सकती है।
6: एक और चीज जो मून पर ज्यादा देर तक रहने को मुश्किल बनाती है वो है टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन।
15: एक चीज जिसके बारे में हम बहुत कम सोचते हैं वो है हमारे आसपास की हवा जो गर्मी को फैलाने में मदद करती है। मून पर हवा नहीं है, तो अगर आपका आधा हाथ धूप में है और आधा छाया में है तो उन दोनों के बीच करीब 400 डिग्री का फर्क होगा।
6: इन सारी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स से बचने का सबसे अच्छा तरीका है रॉक की एक मोटी लेयर, और हाल ही में ये बात पता चली है कि फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स को मून पर अपने लिए अंडरग्राउंड शेल्टर्स बनाने के लिए खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। मून की सतह पर नजर आ रहा होल जिसे स्काईलाइट कहते हैं एक फुटबॉल फील्ड के साइज का है।
14: हम विशाल केव सिस्टम्स की उन बड़ी ओपनिंग्स को देख रहे हैं जो लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए परफेक्ट बेस बन सकती हैं।
6: स्काईलाइट्स उन बड़ी सुरंगों के जाल की एंट्रेंसेस हैं जो मून की सतह के नीचे कई किलोमीटर्स लंबी हैं।
17: वहां पर पहले से अंडरग्राउंड कैवर्न्स हैं और उन्हें पानी ने नहीं बनाया है, उन्हें लावा ने बनाया है।
6: वैसी ही नेचुरल टनल्स जिन्हें लावा ट्यूब्स कहते हैं अर्थ पर आइसलैंड के वॉल्केनिक रीजन्स में है।
18: तो हम एक होल के तले पे हैं जो एक कोलैप्स लावा ट्यूब से बना था। अब हम जानते हैं कि मून की सतह पर भी इस तरह के होल्स हैं और अगर सारी इंडिकेशन सही हैं तो उनके आगे भी इस तरह की जायंट लावा ट्यूब्स होंगी।
6: लावा ट्यूब्स तब बनती हैं जब पिघली हुई चट्टानों की बहती हुई नदियां ठंडी होनी शुरू होती हैं। पहले सतह जम जाती है पर उसके नीचे का गर्म लावा फिर भी बहता रहता है और इस तरह ये लंबी अंडरग्राउंड टनल्स बनती हैं।
18: इस तरह के ट्यूब में रहना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़ी ट्यूब है, पर जो मून पर है वो इससे 10 गुना ज्यादा बड़ी है।
6: मून पर लावा ट्यूब्स कई 100 फुट ठोस चट्टानों के नीचे हैं, इसलिए वो रेडिएशन और माइक्रोमीटियोराइट से बचाती है और वहां टेम्परेचर भी स्टेबल रहता है।
18: मून पर मौजूद इस तरह की लावा ट्यूब्स अच्छी और स्टेबल हैं, पर अब शायद अर्थ की सबसे ठंडी केव से ज्यादा ठंडी नहीं होती है।
6: मून पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स एयर लॉक्स ऐड करके खुद को इस तरह की ट्यूब्स के अंदर सील कर सकते हैं।
15: अगर हम लूनर सरफेस के नीचे की एक लावा ट्यूब में कॉलोनाइज कर पाए तो हम वहाँ के एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर पाएंगे। हम एयर पंप कर सकेंगे और टेम्परेचर को सही रख सकेंगे, इन विशाल सबट्रेनियन टनल्स में घूम फिर सकेंगे। वहाँ पर पूरे के पूरे शहर होंगे और लूनर टेरेन की दीवारें रोशन हो जाएंगी।
6: साइंटिस्ट्स को लगता है कि ये लूनर स्पेस स्टेशंस सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं।
14: वहाँ पर कुछ क्रेटर्स हैं जो हमेशा छाया में होते हैं और उनमें वाटर आइस है, और ये बहुत कमाल की बात है क्योंकि हमें नहीं पता था कि मून पर अभी भी पानी है।
19: हमारा ये मानना था कि मून पूरी तरह से सूख चुका है, ये बात पक्की थी, पर अब हमें पता चला है कि वहाँ की सॉइल में और उन क्रेटर वॉल्स के अंदर जो हमेशा छाया में रहती हैं, बहुत सारी वाटर आइस है।
20: एक लूनर लॉन्च पैड के लिए पानी एक परफेक्ट रिसोर्स है। उसे पीने के अलावा आप उसे इलेक्ट्रिसिटी से स्प्लिट करके सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और फ्यूल के तौर पर यूज करने के लिए हाइड्रोजन बना सकते हैं।
14: अगर आप ध्यान से देखें तो रॉकेट फ्यूल लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का बना होता है। अरे ये तो पानी के कंपोनेंट्स हैं।
20: मून के क्रेटर्स में लगभग 600 करोड़ टन वाटर आइस है। ये 100 सालों से भी ज्यादा तक स्पेस में हर रोज 20 रॉकेट्स लॉन्च करने के लिए काफी है। पिछले 400 करोड़ सालों में मून ने हमारे एवोल्यूशन को संभाला है, हमारे मौसमों को बनाया है, और फ्यूचर में उसके रिसोर्सेस स्पेस पर राज करने में हमारी हेल्प करेंगे। पर वो वहां हमेशा नहीं रहने वाला है। साइंटिस्ट ने मून की मौत का अनुमान लगा लिया है और वो बहुत दर्दनाक मौत होगी।
21: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
22: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
21: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
22: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
23: टॉप भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
24: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
23: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में,
25: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
26: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
27: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
28: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
27: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
22: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
27: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
22: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
27: और 9097160602।
29: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
30: मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा।
31: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
29: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
31: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
29: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमज़ेड पर।
0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
20: चार सौ करोड़ सालों से भी ज्यादा से अर्थ और मून बहुत ईमानदारी से सन के चक्कर लगा रहे हैं, पर हमारा सेलेस्टियल पार्टनर धीरे धीरे हमसे दूर होता जा रहा है।
1: कभी कभी जब हम किसी रिलायबल चीज की बात करते हैं, हम कहते हैं कि रोजाना सूरज के उगने से ज्यादा भरोसेमंद और कुछ नहीं है। हम ऐसा मून के लिए भी कह सकते हैं, वो अपने फेजेस से गुजरता है, हर रात आसमान में नजर आता है, पर पता चला है कि मून अर्थ से दूर जा रहा है और ऐसा मून और अर्थ के टाइडल बल्ज की वजह से हो रहा है।
20: ग्रेविटी की वजह से खींचे गए पानी का उठान मून से जरा सा आगे होता है, क्योंकि अर्थ की स्पिन करने की स्पीड मून के घूमने की स्पीड से तेज है।
17: मून अपनी ग्रेविटी से उस उठान को खींचता है और अर्थ की रोटेशन को धीमा करता है। पिछले करोड़ों सालों में वो अर्थ की रोटेशन को काफी धीमा कर चुका है। पहले हम अभी की स्पीड से दुगनी से भी ज्यादा स्पीड से स्पिन किया करते थे,
20: पर एक ग्रेविटेशनल विप लाइन की तरह उठान के लिए मून की अट्रैक्शन उसकी अपनी स्पीड को बढ़ा देती है। इससे मून और बड़े ऑर्बिट में घूमने लगता है और दूर होता जाता है।
14: ये बहुत कम होता है, मतलब एक साल में सिर्फ 3.8 सेंटीमीटर, जो कि लगभग डेढ़ इंच होता है।
20: करोड़ों सालों बाद मून आसमान में सिर्फ एक डॉट की तरह नजर आएगा और अर्थ का स्पिन इतना स्लो हो जाएगा कि लगेगा मून हमारे ऊपर फ्रीज हो गया है।
15: एक समय ऐसा आएगा जब अर्थ एक्चुअली लॉक हो जाएगा। अर्थ की एक साइड मून की एक साइड की तरफ होगी और वो दोनों उसी पोजिशन में घूमते रहेंगे।
14: अर्थ पर सिर्फ एक जगह होगी जहाँ से मून दिखेगा, तो आप सोच सकते हैं कि तब आपको मून को देखने के लिए उस जगह पर छुट्टियाँ मनाने जाना पड़ेगा, पर उसमें बहुत टाइम है, तो मैं मतलब अभी फिलहाल उसके लिए टिकट्स बुक नहीं करूँगी।
20: तो क्या यही है हमारे मून का भविष्य? कुछ साइंटिस्ट और ज्यादा ड्रामेटिक एंड की बात करते हैं। एक ऐसी आग जो मून को बर्बाद कर देगी और शायद अर्थ पर मौजूद सारे जीवन को भी। ये प्रोसेस सन के एक्सपैंड होने से शुरू होगी।
13: अर्थ मून सिस्टम का असली भविष्य सन पर डिपेंड करेगा और उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा।
20: सन और बूढ़ा होने के साथ और एक्सपैंड करता जाएगा, उससे अंदरूनी सोलर सिस्टम में घनी सोलर विंड भर जाएगी, वो विंड मून को रोकेगी।
15: तो जब मून अर्थ का चक्कर लगाएगा, वहाँ पर एक ड्रैग होगा, स्पेस में और ज्यादा चीजें होंगी जिनके खिलाफ मून को आगे बढ़ना होगा। तो वो मून जो करोड़ों सालों से अर्थ से दूर जा रहा था, हो सकता है उस पॉइंट पर वापस आने लगे।
20: ये नई इनवर्ड ट्रेजेक्ट्री एक डेथ स्पाइरल होगी।
14: मून स्पाइरल में घूमता हुआ पास आता जाएगा और फिर ग्रेविटेशनल फोर्सेस, टाइडल फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि वो आखिर में एक्सप्लोड कर जाएगा।
20: अर्थ की सतह से 17,700 किलोमीटर ऊपर मून उस पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां से वापस लौटना नामुमकिन होगा। आखिर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उस पर हावी हो जाएगा।
17: आपको वो शेक करता दिखाई देगा, झटके खाता दिखाई देगा और वो स्ट्रेच हो जाएगा। हमारे लिए ये जानना मुश्किल होगा कि वहां पर क्या हो रहा है, पर आखिर में आप उसे पूरी तरह से टूटते हुए देखेंगे। अर्थ की ग्रेविटी मून का नामो निशान मिटा देगी।
20: मून के टूटे हुए टुकड़े पथरीले मलबे का एक सैटर्न जैसा रिंग बना देंगे।
17: अर्थ के इर्द गिर्द एक रिंग का होना बहुत कमाल का नजारा होगा। मैं उसे देखना चाहूंगा। आप ऊपर देखेंगे तो आपको एक रिंग दिखाई देगी, वो अर्थ के साथ एक एंगल पर होगी। अगर आप अर्थ पर सही जगह पर होंगे तो आपको आसमान में वो चौड़ी रिंग साफ नजर आएगी। मुझे नहीं पता वो दिन में दिखाई देगी या नहीं, पर रात में वो इतनी खूबसूरत लगेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं।
20: लेकिन जल्दी ही वो खूबसूरती दहशत में बदल जाएगी जब वो टुकड़े अर्थ पर बरसने लगेंगे।
14: मतलब वो एक कमाल का नजारा होगा, बहुत डरावना नजारा होगा। पूरा आसमान बरसते हुए मीटियोर से भर जाएगा, वो बारिश की तरह गिरेंगे और वो बहुत बड़े बड़े होंगे। आखिर में वो सारा मटेरियल अर्थ में मिल जाएगा और वो दो भाई जो जन्म के वक्त बिछड़े थे फिर से एक हो जाएंगे।
2: इस भयानक आग में से एक नए अर्थ का जन्म होगा, पर इस दुनिया में जीवन नहीं होगा।
14: वो मून ही था जिसकी वजह से अर्थ पर जीवन की शुरुआत हुई और वो मून ही होगा जो अर्थ पर जीवन को खत्म कर देगा। मून ने ही जिंदगी दी और मून ने ही छीन ली। कहानी बुरी नहीं है, हालांकि हमारे हिसाब से ये अच्छी भी नहीं है।
3: बिना मून वाले अर्थ के बारे में सोचकर दुख सा होता है। हम पार्टनर हैं, हमने एक दूसरे की डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे मून को देखकर बहुत खुशी होती है और चाहे कितनी बार भी देखूं वो खुशी कम नहीं होती है।
4: हम सभी का मून के साथ एक लगाव सा है, वो हर रात हमें देखता है और बेशक उसे रोमांस के साथ जोड़ा गया है और आगे भी जोड़ा जाएगा। अगर कभी अर्थ पर मून के बिना लाइफ हुई भी तो वो लाइफ किसी सूरत में इतनी रोमांटिक नहीं होगी।
5: इक्कीस वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास दसवीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
7: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
5: तो देर मत कीजिए,
7: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
8: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
9: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
8: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: सुनिए,
12: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
11: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
12: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
11: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
16: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
18: रेडियो रिमझिम।
16: सुनो दिल से।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 अमरजैट पर।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
7: All right.

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
9: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आएं कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388-8947-0 या 9198-8869-73।
10: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
11: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
12: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
11: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
13: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रंजन 90.4 आमज़ ज़ैट पर।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
8: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
8: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-714-86-164।
9: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: उस धुन की तरह थी, वो धुन जो आप एक बार सुन ले साली जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ती।
1: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
10: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: आई कैन नॉट स्लीप।
1: प्रसाद क्लिनिक।
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
2: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
5: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 9097160602।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजेड पर।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर गोपालगंज।
8: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
9: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
10: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
2: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
2: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
5: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमा जेड पर।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एचपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एचपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
11: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।
12: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
13: रेडियो रमझिम,
12: सुनो दिल से।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
5: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है, वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
4: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर। तू जो
8: है आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल।

0: घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला, सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जात, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा, मिला ही नहीं
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: क्या चाहते हो, मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्हीं ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
8: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करे 87894-18744।
4: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
10: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
12: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
13: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
12: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
13: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
12: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
13: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
14: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
12: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम बा रेडियो रिम से 90.4 एफएम रुआ सबे सुन रहे बानी और 2:01 हो चुकल बा स्टूडियो घड़ी में बहुत बहुत स्वागत बा रुआ सबे के अपन शो भोजपुरी एक्सप्रेस में 2:01 हो चुकल बा स्टूडियो घड़ी में और रुआ भी अगर शो में जुड़े के चाहता नहीं तो माध्यम बाटे व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम बाटे और जौन माध्यम से चाहे रहुआ जुड़ सकता नहीं और समय बिल्कुल हो चुकल बा और अभी से लेके 5 बजे तक हम रहुआ सभी के साथ बानी रहुआ सभी के फरमाइश के साथ बानी तो अगर रहुआ भी जुड़े चाहते नहीं भोजपुरी एक्सप्रेस के कार्यक्रम में तो नंबर बाटे 98527-88-291 पे व्हाट्सएप मैसेज करी या फिर कॉल करी 72-77-16-65-96 पे। और हम बानी रुआ सबे के आपन रेडियो दोस्त आरजे सोनी और अभी से 5 बजे तक भोजपुरी गीत के लेके और संगीत के सुहाना सफर के साथ हम रुआ सबे के साथ रहम और गाना के फरमाइश जो भी रुआ करी भोजपुरी गाना के पसंद बेशक राउ रही लेकिन सुने वाला रुआ अकेले ना बानी बहुत सारा लोग बानी रुआ सबे के साथ है और बहुत सारा रेडियो श्रोता जुड़ल बानी तो ये बात का ख्याल रख के गाना के फरमाइश करे हम कोई भी ऐसा गाना के फरमाइश ना करी जो ना से कोई के अपन रेडियो बंद करे के पड़ो या फिर गाना सुन के कोनो आपत्ति हो के तो चली मुस्कुराई और गुनगुनाई और शुरू हो जाएं भोजपुरी एक्सप्रेस में जुड़े खातिर तैयार हो जाएं अपन अपन फ़ोन उठाएं और व्हाट्सएप के माध्यम से हो सके तो व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल के माध्यम से हो सके तो कॉल के माध्यम से जुड़ल शुरू करें जब तक रुआ सभी के मैसेज पहुँचा था हमारा पास तब तक इंजॉय कर जाओ एक बढ़िया सा गाना सिल्फी राज की आवाज़ में रेडियो रिमसिम 90.4 FM पे तब तक रुआ सभी मैसेज करी अपन फरमाइश पहुँचाई।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी रुवा सबे और कार्यक्रम बाटे रुवा सबे के अपन पसंदीदा कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस और भोजपुरिया एक्सप्रेस में एक बार फिर से रुवा सबे के बहुत बहुत बहुत स्वागत बाटे रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। और यहाँ काफ़ी सारा लिसनर हमने से जुड़ चुकल बानी भोजपुरिया एक्सप्रेस में। और चलिए भोजपुरिया एक्सप्रेस की ट्रेन भी पटरी पर आ चुकल भैया और अपन रफ्तार में चल पड़ल भैया। तो चलिए व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़े हम। और यहाँ मैसेज बांटे दुर्गेश जी जुड़ चुकल बानी आजमगढ़ से, बहुत बहुत स्वागत बांटे। लिखा था नहीं कि जीता था जिसके लिए गाना सुनने के बाद। दुर्गेश जी हम रोक बता दी भोजपुरी एक्सप्रेस के कार्यक्रम में ही मैं भोजपुरी गाना के फरमाइश करी, हिंदी गाना के फरमाइश हमने की प्ले कर सकत। अनिश यादव जुड़ चुकल बानी दुमरा यदवंशी टोला से, बहुत बहुत स्वागत बटे। उमा शंकर मिश्रा जी दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत बटे। सरफरोज अली आकिल टोला से, बहुत बहुत स्वागत बटे। मुस्तफ़ा सऊदी से, बहुत बहुत स्वागत। एक और यहाँ मैसेज बटे लिखा था हेलो हाय प्रणाम गुड आफ्टरनून जय माता दी। शिव सागर दीवाना जी आ चुकल बानी जम्मू एंड कश्मीर से, बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ श्रद्धा मुंबई से जुड़ चुकल बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे। प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से एक और यहाँ मैसेज बार लिखा था जी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत। गुड आफ्टरनून नाम जरूर अपन मैंसन करी के बानी कहाँ से, बहुत बहुत स्वागत बटे। और यहाँ आरजे अमन जी जुड़ चुकल बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे आपके भी। और यहाँ मैसेज बांटे बजाजी रोड लालगंज से एमडी नौशाद सदाब, एमडी निसार और रिजवान जी चुटचिकल बनी आप सभी के बहुत बहुत स्वागत बांटे। और यहाँ लिखा था नहीं कि आपके भी बहुत बहुत वेलकम बा वेस्ट आरजे साहिबा जी और मैसेज करे वाला बनी आरजे अमन जी। और एक और यहाँ मैसेज बांटे और निजामुद्दीन जी चुटचिकल बनी सऊदी अरब से, बहुत बहुत स्वागत बांटे। एक और यहाँ मैसेज बांटे और कल्याण चौक से जुड़ चुकल बनी नाम का बटे मिजाजी यादव जी, बहुत बहुत स्वागत बटे। और यहाँ दिलीप कुमार ठाकुर मिजापटू वाली पंजाब से, रोहित जी देहरादून से, बहुत बहुत स्वागत बटे आप सभी के। और बड़े मागे आज के अगला टिकट, पहला टिकट कंफर्म करें और पहला टिकट यहाँ कंफर्म करें गाना के फरमाइश करे वाला बानी मिथुन शर्मा जी उत्तर टोला से। तो चली राउर टिकट कंफर्म होता, आवाज़ पहुँचा था अपन गाना के एंजॉय करी आज के पहला टिकट राउर कंफर्म होता भोजपुरिया एक्सप्रेस में रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। तो एंजॉय करिए और सुनत रहिए रेडियो रिमझिम के। और मिथुन जी रहुआ तो हमने के पुराना लिसनर बनी और रहुआ के पता बाटे कि भोजपुरिया एक्सप्रेस के कार्यक्रम है, एकरा में हिंदी गाना के फरमाइश ना भेजल जला और रहुआ हिंदी गाना के फरमाइश भेजले बनी। तो चलिए आगे बढ़े और अगला टिकट कंफर्म करें और अगला टिकट हमरा पास गाने के फरमाइश पहुंचल बटे। और गाना बटे रिया राज की आवाज में। तो चलिए राउट टिकट कंफर्म होता, उमा शंकर मिश्रा बानी दिल्ली से और यहाँ के सुनने के बाद गाना। तो चलिए एंजॉय करिए अपन गाना के और सुनत रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM के।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा अल्बानी और कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनतने सन उमा शंकर मिश्रा जी के फरमाइश रहला दिल्ली से और यहाँ की तरफ से मैसेज पहुँच गया बा लिखा तनी के धन्यवाद। और यहाँ रवि तिवारी जुड़ चुकल बानी दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत बाटे। सविता देवी जी बानी दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत बाटे। संतोष कुमार जी बानी सूरत से, बहुत बहुत स्वागत। और अगला टिकट कन्फर्म करें और यहाँ 2:12 हो चुके बैठे घड़ी में, तो चलिए अगला टिकट रही यहाँ सरफरोज अली बानी अकिल टोला से। लेकिन लेकिन लेकिन समय हो गया दोपहर समाचार के, तरुआ सबे से मिला तनी हम दोपहर समाचार के बाद, तो कहीं मत जाई सुनत नहीं रेडियो रिमझिम 90.4 FM के। और दोपहर समाचार के बाद हम फिर से हाजिर होता नहीं रोवा सभी के बीच, कहे कि 2 मिनट में कोनो भी गाना प्ले करी और गाना तो हो ना पाई, फाइनल बीच में रोके के पड़ी। फिर रोवा लनी के शिकायत रही कि गाना रोक देनी। और अगर रोवा भी शो से जुड़े के चाहते नहीं, शो में जुड़े खातिर माध्यम बाटे व्हाट्सएप इंस्टा कॉल और जौन माध्यम से चाहिए रोवा जुड़ सकता नहीं। व्हाट्सएप से जुड़े खातिर नंबर 98527888291 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता नहीं, या फिर व्हाट्सएप ना यूज करें तो कॉल के माध्यम बाटे और नंबर बाटे 72776665 पे कॉल कर सकता नहीं और अपन तत्काल बुकिंग करा सकता नहीं। तो चलिए बढ़े मागे और मिलन रोवा सभी से दोपहर समाचार के बाद, कहीं मत जाएं सुनत रहे रेडियो रिमझिम के।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज, कॉल करें 94512-11001।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सीवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
7: और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
8: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
7: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
9: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
7: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
10: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
7: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
11: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। किताब ते आकाशवाणी समाचार मुंबई।
7: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
8: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
8: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
7: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
12: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि DPR बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, नफ के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
7: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
13: मेरा पूरा भरोसा है NTA के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
7: श्री प्रधान ने बताया कि CBSE के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
13: CBSE की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे CBSE के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। CBSE जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
7: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री वेंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
14: ईरान के प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधि मंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
7: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
15: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
16: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
17: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
18: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
19: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
18: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
19: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
19: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
19: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
20: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई लकी ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
20: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
21: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
22: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
23: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
24: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
19: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 0 97 06 575।

दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बटे रुवा सुबह के रेडियो रिमझिम 90.4 FM में रुवा सुबह क्या अपन पसंदीदा कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस में। और यहाँ 2:34 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और 5 बजे तक हम रुवा सुबह के साथ बानी, रुवा सुबह के फरमाइश के साथ बानी। तो चली ट्रेन फिर से रफ्तार पकड़ चुकल भैया भोजपुरिया एक्सप्रेस के। और रुवा भी अगर सफ़र करे के चाहता नहीं तो सफ़र करे खातिर 2 माध्यम बटे व्हाट्सएप और कॉल। रुवा जौन माध्यम से चाहे जुड़ सकता नहीं और जो लोग भी व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ल बाटे उन लोग से कहें कि मैसेज के लिए बनी तो थोड़ा सब्र रखी। अगर अपन सीट छोड़ के इन्हें उन्हें जाएँ और फिर बाद में कहें कि हमार गाना जौन बा नहीं बाजत तो फिर हमरा के दोस्त ना दे हम तो जहाँ जे बैठल बा वही जे रही। और ट्रेन बिल्कुल रफ्तार में बिया और लाइन से जातिया अपन अपन जगह पर बना रही। तो चली बढ़े मागे और अगला टिकट यहाँ कंफर्म हुई सरफोरा जल्दी बानी आकल टोला से जुड़ल बनी। और यहाँ के गाना सुने के बाद पवन सिंह के आवाज़ में प्रीतिया कितना सताए। तो चली सरफोरा जी और टिकट कंफर्म हो गल बा गाना प्ले कर दिल बनी एंजॉय करी और सभी भी एंजॉय करी सरफोरा जल्दी जी के फरमाइश के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा बानी रुआ सभी और कार्यक्रम बटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी काफ़ी दर्द भरा गीत के फरमाइश के लिए रनिया सरफरोज अली जी और यहाँ की तरफ से मैसेज पहुँच गया बा थैंक यू गाना बजावे खातिर और अगला टिकट कन्फर्म करें हम यहाँ कॉल के माध्यम से जुड़ल बनी तो चलिए बात कर जाओ देखल जाओ कि बानी कहाँ से और गाने का फरमाइश का बा। हेलो जी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो रिमझिम में जी रो वो बगल से कुछ आवाज़ आवाटे और राउर आवाज़ जोन बा काफ़ी धीरे आवाटे। हेलो हाँ आवता नाम बता दी अपन जंगलिया से नाम का पड़ी खजुरिया से बसंत बैठा जी जी का हाल चल बा गर्मी तो बा भगवान से प्रार्थना करी कि बारिश हो खो
1: और कौन पाए बारिश करा के कौन पाए बारिश मंगावे के
0: बस एक एगो उपाय बा कि ऊपर वाला से प्रार्थना कर जाओ कि बारिश हो खो थोड़ा गर्मी कम हो खो दूसर कोनो उपाय ना बा

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
6: छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुआ सभी के बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। रुआ सभी का अपन कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस में, और बड़े

हम अगला फरमाइश की तरफ और यहाँ इशाद मास्टर जी जुट गए बानी धनाव से बहुत बहुत स्वागत बटे और लिखा तनी कि साथ में सुनने वाला भाई बानी साजिद जी साहिद जी मुखिया जी और धनाव जिलानी जी और सबके साथ सुनने के चाहते हैं। सभी के बहुत बहुत स्वागत बटे शो में बन रही साथ में और यहाँ करण जी जुट चुकल बानी धनेश मिश्रा जी बानी दिल्ली से बहुत बहुत स्वागत बटे और एक यहाँ मैसेज बटे और लिखा था नहीं कि हमरो तरफ से प्रणाम बटे रुआ के सोनी मैडम जी बहुत बहुत स्वागत बटे राम कुमार पांडे जी बानी लंदन से बहुत बहुत स्वागत एक और यहाँ मैसेज पहुँचल बटे और सुजीत कुमार जी चुटचकल बानी बहुत बहुत स्वागत बटे शो में बने रही साथ में सुनत नहीं रेडियो रिमसिम को और अगला गाना और टिकट कन्फर्म करें श्री सागर दीवाना जी बानी जम्मू एंड कश्मीर से और यहाँ के सुनने के बाद गाना सड़िया ब्लू किया तो चलिए राउ टिकट भी कन्फर्म हो गए इंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमसिम 90.4 FM पे।

90.4 रेडियो रिंसिम सुन रहल बानी रुवा सभी और कार्यक्रम बटी भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी हमनी के गाना सुनते नेसन फरमाइश करे वाला रनिया शिव सागर दीवाना जी जम्मू एंड कश्मीर से और यहाँ के तरफ से मैसेज पहुँच गए वाली कतनी कि बहुत बहुत धन्यवाद बटे गाना बजावे खातिर और बढ़े मागे अगला टिकट कन्फर्म करें हम हमारा पास गाने के फरमाइश पहुँचल बटे और गाना के फरमाइश करे वाला बानी नाम बटे यहाँ के राजन कुमार जी तमकुही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़ल बनी और यहाँ के सुनी के बाद गाना तो चली रहा और टिकट भी कन्फर्म होता आवाज़ पहुँचा था तो अपन गाना के एंजॉय करी और सुनत रही रेडियो रिमझिम के

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी रउवा सभी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के और व्हाट्सएप मैसेज की बात करी तो काफी सारा मैसेज बा फरमाइश भी बा और यहाँ कॉल भी पहुँचा था तो चली कॉल से टिकट कन्फर्म कर लिए लेकिन ओकरा पहला टिकट कन्फर्म कर लिया अगला यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से पहुँचल बा मिजाजी यादव जी बानी कल्याणी चौक जधा वैशाली से जुड़ल बनी बहुत बहुत स्वागत बा एक बार फिर से और गाना सुने के बा यहाँ के अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नहीं के तो चली रहा और टिकट कन्फर्म हो गल बा अपन गाना के इन्जॉय करी और रोज सभी भी कल्याणी जी के फरमाइश पे इन्जॉय करी यहाँ के फरमाइश के गाना रेडियो

यहाँ विनोद कुमार जी जुड़ चुकल बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे। एक और यहाँ मैसेज बटे और मैसेज करे वाला बानी नाम भैया के, कि सुपर हिट सॉन्ग और मैसेज करे वाला बानी केशव राज जी बिहार बेगूसराय से जुड़ल बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सरलवानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस का और अभी गाना सुना तुमने सन गाने का फरमाइश करे वाला रनिया मिजाजी यादव जी कल्याणी चौक जाधा वैशाली से और यहाँ के गाना सुन ले बनी और यहाँ मैसेज वाली कहते नहीं कि हम लोग टिकट और कंफर्म कर दी बिल्कुल कर दे। धर्मेंद्र शाहनी जो चुकल बनी समस्तीपुर से बहुत बहुत स्वागत बटे। एक और यहाँ मैसेज बटे और लिखा था नहीं कि आज हमके भी गाना सुने के बाद। सन्नी कुमार जी जुड़ल बनी बहुत बहुत स्वागत बटे बने रही और हमारा साथे अनिल कुमार जी बनी बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ सभी के। और यहाँ डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी छपरा कुशनगर उत्तर प्रदेश से जुड़ चुकल बानी सन्यासी रंजन बाबा जी बानी बहुत बहुत स्वागत बटे। और अगला फरमाइश के तरफ बढ़े और अगला टिकट बटे कॉल के माध्यम से और यहाँ कॉल रिसीव करते ही कट गई। चलिए दोबारा कॉल पहुँच चुकल बात कर जाओ के बानी कहाँ से और फरमाइश का गाना के। हेलो
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते बहुत बहुत स्वागत बटे भोजपुरी एक्सप्रेस में।
1: हम रामा जी प्रसाद खावे राजन मार्केट से।
0: जी का हाल चाल बा रामा जी।
1: हाल चाल ठीक बा। हवा तो आज बहुत है पछुआ।
0: चली बढ़िया बा पछुआ बहुत है तौल छुरवाई।
1: गाना सुना दे। हाँ लिट्टी चोखा वाला गाना बा ढेर सुन ले भइल
0: मनोज तिवारी के।
1: हाँ
0: जी और सुनाए के बा
1: सब सुने हम रउआ जितना लोग रेडियो सुनना सब कोई।
0: जी गाना प्ले कर दे बने।
1: नमस्ते
0: नमस्ते बहुत बहुत धन्यवाद सुनो कॉल करने।

90.4 रेडियो रंजन सुनवानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनते हैं फरमाइश करे वाला रनिया रामाजी प्रसाद थावे से और अगला टिकट कंफर्म करें व्हाट्सएप के माध्यम से गाने के फरमाइश पहुंचल बा मुस्तफा वानी सऊदी से और यहाँ के सुने का गाना शिल्पी राज की आवाज़ में तो चली रहा टिकट भी कन्फर्म हो गल बा और गुरबानी राजा करिया हो जाए एंजॉय

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

ब्रेक के बाद फिर हाजिर बानी रुवा सभी के बीच रेडियो टिमटिम 90.4 एफएम पे रुवा सभी के अपन कार्यक्रम भोजप्रिया एक्सप्रेस के साथ है। और अगर रुवा भी जुड़े के चाहते नहीं शो में करे के चाहते नहीं आज के एक्सप्रेस में सफर तक करे खातिर नंबर बटे 98-527-88-291 पे व्हाट्सएप मैसेज करी या फिर कॉल करी 72-77-16-65-96 पे और जुड़ जाइए अपन शो भोजप्रिया एक्सप्रेस से। और यहाँ बड़े मागे मनीर आलम जुड़ चुकल बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे। विनोद मठनिया से जुड़ल बानी और यहाँ प्रीति रैदास जी बानी भी ले लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान से, बहुत बहुत स्वागत बटे। और अगला टिकट हम कंफर्म करें यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से। और यहाँ मैसेज बटे लिखा था नहीं कि खाली बैठा रहनी है तो सोचनी है कि आप लोग के भी कुछ बात बता दी और कहे कि बता दी कहे कल सोमार हटे, कसम से ज्ञान बहुत बटे लेकिन घमंड ना कर ले बानी। और मैसेज करे वाला बानी रोहित जी देहरादून से, सही बाटे ज्ञान होके पर घमंड ना होके के चाहे। और गाने के फरमाइश बात तो चली रहा, टिकट भी कंफर्म हो चुका, आवाज़ पहुंचा था अपन गाने के एंजॉय करी रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी रोहित जी के फरमाइश रहला और लिखा तनी कि धन्यवाद सोनी जी गाना प्ले करे खातिर और गाना दोनों जनी के फरमाइश रहला। चलिए काफ़ी बढ़िया गाना और सीजन के हिसाब से गाना भी अच्छा बा और धान के बिया तो ऐसे लोग गिराइए दिले बा, बस बारिश के इंतजार होता है, जब बारिश होल तब रोपनी शुरू हो जाए। और आगे बढ़े में यहाँ विष्णु कुमार जी जुड़ चुकल बने वीके फास्ट फूड सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत बटे। और यहाँ मैसेज बा लिखा तनी कि हमरो मैसेज बा बोरा में कस दिले बानी काजी, बिल्कुल नहीं कि कसले बोरा में और मैसेज शामिल कर दिले बानी। सन्यासी रंजन बाबा जी बानी बहुत बहुत स्वागत बटे, एक बार फिर से शो में बने रही साथ में सुनत रही रेडियो रिमझिम के। और यहाँ अभी अभी दस्तक दिले बानी नाम मैंसन नहीं कि कले, बहुत बहुत स्वागत बटे शो में। और संतोष कुमार जी बानी बिहार सिवान से, बहुत बहुत स्वागत बटे संतोष जी। और अगला टिकट यहाँ कन्फर्म करें कॉल के माध्यम से, कॉल पहुँचल बा तो बात कर जाओ के बानी कहाँ से। हेलो,
1: बेतिया से है
0: जी, बहुत बहुत स्वागत बटे बेतिया से, नाम बता दिया अपन।
1: तनवीर आलम।
0: तनवीर आलम,
1: मैम कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना दीजिए।
0: तनवीर जी भोजपुरी बोले आवेला?
1: हाँ थोड़ा थोड़ा।
0: हाँ तो थोड़ा थोड़ा ही बात करी, कहे की भोजपुरी एक्सप्रेस के कार्यक्रम हफ्ते में भोजपुरी में ही बात करी।
1: ठीक बा मैम, थोड़ा एक गाना सुना दी।
0: जी बिल्कुल बता दी, कौन गाना सुना दी रुबा के?
1: हम साथ साथ मूवी का।
0: तो ये तो हिंदी गाना है, अभी बोल रही ना भोजपुरी गाना के भी फरमाइश हुई हमें।
1: अच्छा खेसारी लाल का कोई गाना सुना दी।
0: खेसारी लाल के
1: जी मैम,
0: कोई भी गाना।
1: कोई भी गाना।
0: चलिए का हाल चाल बा बताई, मौसम के हाल चाल कैसन बा रुआ होने के?
1: बहुत डेंजर बा,
0: बारिश वरिश भइल कि ना?
1: बारिश वरिश कुछ नहीं थे,
0: बारिश भी नहीं थे,
1: बहुत धूप बा।
0: तो बढ़ले बा, तो चली गाना प्ले कर दिले बानी, सुन के बताई कैसा लागल।
1: ठीक
0: ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल करनी।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा बानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनत रहे सन कॉल के माध्यम से गाने के फरमाइश रहे और बढ़े मांगे अगला टिकट कंफर्म करें। दिलीप कुमार ठाकुर बानी मिर्जापुर माली पंजाब से और यहाँ के सुने के बाद गाना दिलवा टूट गए तो चलिए रॉयल टिकट भी कंफर्म होता आवाज पहुंचा था अपन गाने के एंजॉय करिए।

90.4 रेडियो रिमझिम सुनरलवानी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी हमनी के गाना सुनत नेशन गाना के फरमाइश करे वाला रनिया दिलीप कुमार ठाकुर जी मिर्जा पुटुमाली पंजाब से लिखा तनी के धन्यवाद सुनी जी हमार गाना बजाए खातिर दिल से धन्यवाद बाटे और प्रणाम बाटे और अगला टिकट कन्फर्म करें सद्दाम जी जुड़ल बनी मुंबई से और गाना सुने के बाद नीलकमल के आवाज़ में मायरे तो चलिए राव टिकट भी कन्फर्म होता है इंजॉय करिए अपन गाना के और सुनत रहें रेडियो रिमझिम के

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
8: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042-34003, 62042-34003।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में और वस्ते विज्ञापन कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस में और 3:28 हो चुके स्टूडियो की घड़ी में और अभी जुड़े के साथ यानी सो में जुड़े खातिर माध्यम बाटे व्हाट्सएप और कॉल रुआ जॉन माध्यम से चाहे जुड़ सकता नहीं। साधु राजी जुड़ चुके बानी छपरा से बहुत बहुत स्वागत बाटे रुआ के सो में बने रही साथ में सुनत नहीं रेडियो रिमझिम के और यहाँ आगे बढ़े अगला टिकट कंफर्म करें और अगला फरमाइश जोन हमारा पास पहुंचल बा संतोष कुमार जी बानी सूरत से और यहाँ के सुने के बाद गाना लॉलीपॉप लागल हो तो चलिए रहो टिकट कंफर्म होता है आवाज पहुंचाता अपन गाने के एंजॉय करिए।

और यहाँ अनिल कुमार जी बानी दरभंगा से। अनिल जी, हम लोग के बता दी भोजपुरी एक्सप्रेस के कार्यक्रम है, गाना सुने के बाद तो भोजपुरी गाना के फरमाइश करी हमारा, और टिकट जरूर कन्फर्म करें। और गाने के फरमाइश बा हिंदी, तब

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा बानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुना तने संत संतोष कुमार जी के फरमाइश रहा सूरत से और यहाँ के कहतनी की ओके मैडम जी गाना सुना तने और यहाँ मनीष रजाक जी जुड़ चुकल बानी फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से बहुत बहुत स्वागत बाटे मनीष जी फरमाइश बात प्ले करे के पूरा कोशिश बाटे और यहाँ एक और मैसेज बाटे और रहीम जुड़ चुकल बानी बहुत बहुत स्वागत बाटे बेंगलोर से गाना के फरमाइश बा इंतजार करे राउर बारी आते ही हम राउर टिकट कन्फर्म करें और आगे यहाँ एक और मैसेज बाटे और हमारे टिकट कब कन्फर्म हुई तो राउर भी हुई थोड़ा इंतजार करी और यहाँ अगला टिकट कन्फर्म करें कॉल के माध्यम से बात कर जाओ के बानी और कहाँ से हेलो
1: नमस्ते दी
0: नमस्ते बहुत बहुत स्वागत बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस में
1: और सब बताइए अपना
0: हमारे तो सब कुछ बढ़िया बाटे हम भी ठीक बानी रहुआ बताएं कैसन बानी
1: हम भी ठीक बानी
0: जी तो नाम बता दी अपन और कहाँ से बात करते ने
1: संजना कुमारी बोल रही हूँ टीवीरवा से
0: जी संजना जी
1: हाँ
0: तो बताएं क्या होता है अभी
1: अभी कुछ नहीं बैठी हूँ आपसे बात कर रही हूँ
0: भोजपुरी बोल रही भोजपुरी बोले ना आवेला का
1: आवेला
0: हाँ तो भोजपुरी हम बात करी अच्छा लगे बाकी सप्ताह के 7-6 दिन तो बात के लिए जाला हिंदी में
1: हाँ
0: तो गाना कौन सुना दी बताई
1: पृथ्वीराज का वो गाना है ना बेफाई
0: कौन
1: चेहरा तुम्हारी इतना बस मेरा ही वाला
0: चेहरा तुम्हार
1: इतना मस्त में रहे तू धोखा देवा हमके मन में रही वाला
0: और गाना डेडिकेट भी करें के हुके
1: हाँ सबसे पहले तरुआ के उसके बाद से रेडी रिमझिम जितना स्रोतो है वो सबके
0: चलिए तो गाना प्ले कर दिला मैंने
1: ठीक है
0: ठीक बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल करने
2: रातों को जगा करते थे उसके एक बुलाने पे उसके एक बुलाने पे खाली पैर ही भगा करते थे खाली पैर ही भगा करते थे

रेडियो रंजन सुन रहा अल्बानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनत ने सुनसिल्पी राज की आवाज़ में दर्द भरा गीत चेहरा था मासूम और गाने का फरमाइश करे वाला रनिया कॉल के माध्यम से और बढ़े मागे यहाँ काफ़ी सारा मैसेज भी लिखा था नहीं कि हमार गनवा कब बाजी तो बिल्कुल आप सभी के गाना बाजी। फिलहाल यहाँ अगला टिकट कन्फर्म करें रवि तिवारी जुड़ल बनी दिल्ली से और लिखा था नहीं कि भोजपुरी एक्सप्रेस में हमू आ चुकल बनी तो चलिए राव टिकट भी कन्फर्म होता और गाना सुने के चाहते नहीं प्यार काल है परसों के कल ना रहे इश्नहा सोनल के आवाज़ में तो चली रहो टिकट कन्फर्म हो गए एंजॉय करिए अपन गाना के और सुनत रही रेडियो रिमझिम के

90.4 रेडियो रंजन सुनाल बानी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनते हैं मनीष तिवारी जी, सॉरी रवि तिवारी जी के फरमाइश रहे और यहाँ के तरफ से मैसेज बार की खतनी की गाना बजाए खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ मनीष पांडे जी जुड़ चुकल बानी, बहुत बहुत स्वागत बाटे मनीष जी। एक और यहाँ मैसेज बाटे और लिखा तनी कि हमके भी गाना सुने के बाटे, चला था चक्कर सिलिपिया से। बिल्कुल गाना का फरमाइश प्ले करें, नाम जरूर मेंशन करी के बानी कहाँ से। टुनटुन यादव जी जुड़ चुकल बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे रुवा के भी शो में। और आगे बढ़े मार्च के अगला टिकट कन्फर्म करें और अगला गाना के फरमाइश पहुँचल बा सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से विष्णु कुमार जी बानी और यहाँ के सुने के बाद गाना तो चलिए और टिकट भी कन्फर्म हो गल बा और गाना के फरमाइश बटे दाल बनौनी भात बनैनी। तो इन्जॉय करिए अपन गाना के रेडियो 90.4।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञ

0: द्वारा
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

छोटा सा ब्रेक रहला, ब्रेक हो गेल बा खत्म, और ब्रेक के बाद फिर से हाजिर बानी रउआ सब के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे रउआ सब के अपन पसंदीदा कार्यक्रम योर सॉरी भोजपुरिया एक्सप्रेस में। और यहाँ 3:48 हो चुकल बा स्टूडे घड़ी में, और बढ़े में आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज के तरफ तक काफ़ी सारा मैसेज बाटे, कॉल भी पहुँचाता, तो चली बिना देरी के लिए अगला टिकट कन्फर्म कर जाओ। और अगला गाना के फरमाइश जोन हमरा पास पहुँचल बाटे, गाना के फरमाइश बाटे गणेश कुमार बानी पिपरा नारायण से, और यहाँ के सुने के बाद गाना पिया जी के मुस्की, तो चली रहो टिकट कन्फर्म हो गल बा, इंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनत नेसन गाना के फरमाइश करे वाला रहनी है गणेश कुमार जी पिपरा नारायण से लिखा तनी की सुपर सॉन्ग दीदी गाना बजावे खातिर धन्यवाद बटे और बहुते बहुते धन्यवाद बटे। तो चलिए बढ़ी आगे और अगला टिकट कन्फर्म करी कॉल के माध्यम से देखल जा के वानी कहाँ से और फरमाइश का बा गाना के। हेलो
1: हेलो
0: जी बहुत बहुत स्वागत बटे भोजपुरी एक्सप्रेस में।
1: नमस्कार सनी जी।
0: नमस्कार नाम बता दिया अपन।
1: कृष्णा जी।
0: जी कहाँ से बात करते हैं कृष्णा जी?
1: जी
0: का हाल चाल बा?
1: अरे हाल चाल तो बढ़िया बा, बहुत गर्मी बा।
0: गर्मी तो बा
1: बहुत ठंड कमरा ना खुला सर होता।
0: तो बताई क्या कर जाओ गर्मी से बचेला? गर्मी से बचे खातिर का कर जाओ? सही बात बा। बात बिल्कुल सही बात है। गाना कौन सुना दी बताई आज?
1: अरे भाई हम तो दुए बजे नंबर
0: और समय पे आई तो कॉल रिसीव कही तबे तो बात होता है।
1: धन्यवाद
0: तो बता दी गाना कौन सुना दी रुवा के?
1: हमारा गाना तो सुनने के बाद
0: कॉल लगाओ के चक्कर में गाना भुला गई नहीं ना। सोची सोची
1: करे के बाबई के विदैया हो विदाई के रुपैया। ठीक बा
0: जी? बढ़िया बा।
1: कृपया तो तनी बजा दी, बहुत परेशान रही है बहुत दुर्गा प्रेस में बहुत तनी जुड़ गई है ऐसे
0: जी। और ये गाना तो बहुत सारा सिंगर लोग के आवाज में बात रहुआ किकरा आवाज में सुने के बाद
1: अभी नहीं बता सका कि कौन सिंगर का गाना गावल हो, लेकिन सुनले बन जो तनी अच्छा लागल हमरा कटवन में भी रहत है मंगाई हम हूं का कहत तनी सुने जी।
0: चलिए तो गाना प्ले कर देले बनी।
1: हां सॉरी
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल करने।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहा वानी और कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनत ने सुन कृष्णा प्रसाद जी के फरमाइश रहला बिदबिरवा से और बढ़े मागे अगला टिकट कंफर्म करें। और यहाँ उमा शंकर मिश्रा बानी दिल्ली से लिखा था कि ऑनलाइन बारिश करावे के पड़ी और तब जाके गर्मी खत्म हुई। और यहाँ मैसेज बटे लिखा था कि सोनी मैम हमारे टिकटवा ना कन्फर्म हुई का गढ़ा में डाल दे बनी का हमारे फरमाइश के तो बिल्कुल गढ़ा में नहीं कि डाले रहा और टिकट भी कन्फर्म हुई। और यहाँ मैसेज बांटे सुजीत कुमार जी जुड़ गल बानी थोड़ा इंतजार करी अगला टिकट राउर कन्फर्म करें फिलहाल बढ़े मागे और आज के अगला टिकट कन्फर्म करें हमारा पास अगला मैसेज पहुँचल बाटे। और यहाँ मुन्ना कांत जुड़ चुकल बानी बहुत बहुत स्वागत बाटे मुन्ना कांत जी। और यहाँ गाने के फरमाइश बाटे अंकुश राजा और कल्पना जी की आवाज़ में जब साथ देवे के ना रहे और गाना के फरमाइश करे वाला बानी मुकेश शर्मा जी तो चली रहा और टिकट भी कन्फर्म होता आवाज़ पहुँचाता अपन गाना के इंजॉय करी और सुनत रही रेडियो रिमझिम।

90.4 रेडियो टिमटिम सुन रहा बानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुना था सर मुकेश शर्मा जी के फरमाइश रहे और यहाँ के गाना सुन ले बानी बड़े आगे अगला टिकट कंफर्म करें और यहाँ मैसेज पहुँचल बटे महमूद अंसारी बानी जयपुर से और गाना के फरमाइश बटे जाए चंदा ले आवा खबर या तो महमूद जी चली रहा टिकट कन्फर्म करता नहीं आवाज़ पहुँचाता था अपन गाने के इंजॉय करिए और सुनत रही रेडियो टिमटिम के

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 90971602।

94.4 रेडियो रिमझिम सुरालवानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़े तो काफ़ी सारा मैसेज भी लिखा था ने कि सुपर सॉन्ग जबरदस्त सॉन्ग और गाना सुन के मज़ा आ गई। और बढ़े मागे अगला टिकट कंफर्म करें उससे पहले यहाँ दिलीप राम जी जुड़ चुकल बानी अपना गांव सिन्हरुआ से बहुत बहुत स्वागत बाटे दिलीप राम जी और फरमाइश बात प्ले करे के पूरा कोशिश बाटे बना रही साथ में सुनत रही रेडियो रिमझिम के और यहाँ अगला फरमाइश हमारा पास पहुँचल बा मुन्ना कान जी बानी और यहाँ के सुने के बगाना वादा करो बनारस घुमैबा तो चलिए रहो टिकट भी कन्फर्म हो गए एंजॉय करिए अपन गाना।

90.4 रेडियो रंजन सुनाल बानी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरिया एक्सप्रेस के और यहाँ प्रीति रैदास जी बानी कहते नहीं एक घंटा हो गई और हम रुआ के बता दी कि एक घंटा रुआ फरमाइश से भी पहले यहाँ काफ़ी सारा फरमाइश पहुँचल बा और यहाँ मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ल बानी सुजीत कुमार जी और यहाँ के सुने के बाद गाना खेसारी लाल के आवाज़ में तो चली राहुल टिकट कंफर्म होता आवाज़ पहुँचा था तो अपन गाने के एंजॉय करी रेडियो रंजिम 90.4 FM पे राहुल टिकट भी कंफर्म कर दिले बानी और एंजॉय करी अपन गाने के सिर्फ और सिर्फ रेडियो रंजिम पे

0: 94.4 रेडियो रंजन सुराल वाणी और कार्यक्रम बाटे वो प्रिया एक्सप्रेस के और अभी हमनी के गाना सुनत ने सन गाना के फरमाइश करे वाला रनिया सुजीत कुमार जी जे कि लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश रनिया लिखा तनी बहुत बहुत धन्यवाद सुनी जी आपके गाना फरमाइश करे खातिर और यहाँ आगे बढ़े मैसेज बा लिखा तनी कि आज बहुत मजा आवत आटे और मैसेज करे वाला बानी नाम बाटे बलमपुर उत्तर प्रदेश से नान बाबू जुट चुकल बानी बहुत बहुत स्वागत बाटे नान बाबू जी के भी शो में और यहाँ एक और मैसेज वाला लिखा था कि बैकग्राउंड में आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छा लगा था और मैसेज करे वाला बानी महमूद अंसारी जी जयपुर से बहुत बहुत स्वागत बाटे शो में और आगे बढ़े अगला टिकट कन्फर्म करें कॉल पहुँचल बात चलिए बात कर जाओ देखल जाओ के बानी कहाँ से हेलो
1: हेलो
0: जी बहुत बहुत स्वागत बाटे रेडियो रिमझिम में
1: हम कब से गोरखपुर में बैठल बानी एक डेढ़ घंटा हो गया हमारे फोन है ना कि क्या हो
0: चलिए बैठल बानी तो इंतजार खत्म भइल
1: फोन बानी है तो सब तू ही से
0: जी नाम का पड़ी राउर
1: हमार लाल हो गया घर
0: बा अच्छा अच्छा का हाल चल बा
1: हाल चाल ठीक बा अपन बताई
0: हमरो बढ़िया बात तो गोरखपुर का करे गेल बनी आज
1: गाना बा पटना से पवित्र
0: अच्छा ये तो फिल्म का नाम है
1: हाँ फिल्म का नाम है बस ये कौन गाना बजा दी है ना सब गाना अच्छा था
0: पटना से पाकिस्तान के कौन गाना
1: क्या जो जो भी गाना बजाई गाना अच्छा था
0: चलिए तो गाना प्ले कर दे बानी
1: ठीक बा
0: ठीक बा बहुत बहुत धन्यवाद सोने कॉल के
1: नमस्ते
0: नमस्ते

और यहाँ कुछ लोग के मैसेज पहुँचाता, शायरी वगैरह पहुँचाता, पर वह शिक्षा हम कह दी कि शो में शायरी ना भेजी, कहे कि इतना सारा फरमाइश बा हम लोग सभी के शायरी नहीं की शामिल कर सकब। योर वॉइस योर चॉइस में जोर में मैसेज करे के बाद करी, हमें सिर्फ गाने को इंजॉय करी।

0: अल्बानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनाते हैं। संगाना के फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुंचा रहे और यहाँ मैसेज बटे लिखा था नहीं कि बैकग्राउंड में मैडम जी तुहार आवाज़ तक गजब लागत था। और अगला फरमाइश बटे मनीष रजाकवानी फाजिलनगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से और यहाँ के सुनने के बाद गाना चटनी। तो चलिए राव टिकट भी कन्फर्म हो गल आवाज़ पहुँचा था, अपन गाना के इंजॉय करिए और सुनते रहिए।
1: मिला

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हो गई रुवा सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। रुवा सभी के अपन पसंदीदा कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस में 4:29 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में, और आधा घंटा हम रुवा सभी के साथ है, वानी रुवा सभी के फरमाइश के साथ है। और यहाँ फरमाइश के बात करी तक काफ़ी सारा फरमाइश और सबके फरमाइश पूरा कर पॉसिबल नहीं के। फिलहाल बढ़े मागे और बिना देरी के लिए अगला टिकट कन्फर्म करें, और अगला टिकट कन्फर्म करें गाना के फरमाइश बा लव लाइट इस थैले बा, और गाने का फरमाइश करे वाला बानी प्रीति रैदास जी, लकड़ी दरगाह सिवान से।

0: हे भौजी, एकरा कुछौ नहीं खे भइल।
1: तब पियराइल काहे बाड़न?
0: भौजी हो काथी कहीं?
1: बोला बोला।

0: ए भौजी, अरे एकरा कुछौ नहीं खे भइल
1: त दुबराइल काहे बाड़न।
0: भौजी हो काथी कहीं
1: बोला बोला।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा बानी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनतने से कटना पोडवारी की आवाज़ में गाने का फरमाइश करे वाला रनिया प्रीति रैदास जी और गाना काफ़ी लंबा रहे इसी बीच में ही गाना रोके के पड़ल और यहाँ प्रीति जी के तरफ से मैसेज भी पहुँच गए बा लिखा तनी कि बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी मुन्ना खान ज्वेल बनी बहुत बहुत स्वागत बाटे और अगला फरमाइश के तरफ बढ़े तो अगला फरमाइश हमारा पास पहुँचल बाटे काफ़ी देर से इंतजार करते नहीं अपन गाना के फरमाइश के तो चली रहा और टिकट भी कंफर्म होता टे और मैसेज के लिए बानी समस्तीपुर से बानी धर्मेंद्र शाहनी जी और यहाँ के सुने के बगाना तो चली रहा और टिकट कंफर्म कर दिल बानी सिर्फ राज की आवाज़ में सुने के बाद इंजॉय करिए अपन गाना के और गाना के नाम चली समझ और जब भी गाना के नाम लिखी लो तो एक बार पढ़ ली लो कि कौन गाना लिख ले बानी ताकि पढ़े में दिक्कत ना होके और कुछ भी लिख के जैसे आ जाता तो दिक्कत हो जाता है गाना के नाम समझे में और पता चलता है गाना सर्च करे के बाद गाना कोनो और सुने के चाहते नहीं और गाना कोनो और आ जाता है। फिलहाल धर्मेंद्र जी के फरमाइश भी एंजॉय करिए यहाँ के पसंद के गाना रेडियो

94.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस का और अभी हमनी के गाना सुनत रहे सा गाना के फरमाइश रहे और मैसेज पहुंच गल बा लिखा था थैंक यू मैम गाना बजावे खातिर धर्मेंद्र शाहनी जी रही समस्तीपुर से और अगला टिकट बाटे यहाँ गाना के फरमाइश बाटे आसिकी ने आसिकी से बाद है ऐसे धागे और फरमाइश करे वाला बानी केशव राज जी बेगूसराय से तो चली रहा और टिकट भी कन्फर्म हो गल बा आवाज़ पहुँचा था अपन गाना के इन्जॉय करी और सुनत रही रेडियो रिमझिम के

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की।

0: माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, Jio, Airtel, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
0: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399 66999।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बाटे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में रुवा सबे के अपन कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस में। और 4:43 हो चुकल बा यहाँ स्टूडियो घड़ी में, समय काफ़ी कम बा और फरमाइश काफ़ी ज़्यादा। तो चली बात के अपन हमें रोकम और अगला फरमाइश के तरफ बढ़े। और अगला फरमाइश पहुँचल बा बजाजी रोड लालगंज से MD नौशाद जी के और सदाब जी के। गाना सुने के बाद हैंडसम हीरो, तो चली रहा टिकट भी कन्फर्म हो गए, इन्जॉय करिए अपन।

90.4 रेडियो रंजन सुराल वानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के बाटे। और अभी हमनी के गाना सुनतने से एमडी नौशाद जी के फरमाइश रहला लिखतने, थैंक यू मैम गाना सुनावे खातिर। और साथ में एमडी महमूद जी वानी केरला से बहुत बहुत स्वागत बाटे। और यहाँ अगला टिकट कन्फर्म करें विराज जुड़ल बनी। और यहाँ के गाना सुने के बाद नदिया के पार से कौन दिशा में लेके चला है बटो, यह तो चली रहा। और टिकट भी कन्फर्म हो गई, एंजॉय करिए अपन गाना के और सुनत रही रेडियो रंजन 90.4 FM पे।

104 रेडियो रंजन सुन रहल बानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी हमनी के गाना सुनत नेसन गाना के फरमाइश करे वाला रनिया नाम बटे यहाँ के विराज जुड़ल बानी और यहाँ के तरफ से मैसेज पहुँच कर लिखा तानी कि थैंक्स भाई और बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़े खातिर। यहाँ मैसेज बैठे लिखा था नमस्कार मैम हम जुड़ गए बानी और मैसेज करे वाला बानी अहमद अली जी सारे वार्ड नंबर 1 से बहुत बहुत स्वागत बैठे शो में।

0: और बढ़े में आगे यहाँ आगे और भी मैसेज वाले लिखा था कि गाना सुन के बहुत ही अच्छा लागल और मैसेज करे वाला बानी नाम मेंशन नहीं की कहले नाम ज़रूर मेंशन करी। और महमूद अंसारी बानी जयपुर से बहुत बहुत धन्यवाद रहुआ के भी शो में जुड़े खातिर। और यहाँ मैसेज बैठे दिलीप राम जी बानी सिनोरवा से लिखा था कि हमरो गनवा बजा दी हमरो टिकट कन्फर्म कर दी, तो बिल्कुल कोशिश बैठे। और आगे यहाँ दुपट्टा सरक रहा है गाने की फरमाइश पहुँचल बैठे और गाने के फरमाइश करे वाला बानी नाम बैठे यहाँ के नाम मेंशन ही नहीं की कहले भैया नाम ज़रूर मेंशन करी और वो के बता दी कि मैं भोजपुरी गाना के फरमाइश करी तरह और टिकट कंफर्म कर दें। फिलहाल यहाँ कॉल पहुँचल बा तो चली बात कर जाओ के बानी कहाँ से और गाने के फरमाइश का बा। हेलो
1: हेलो
0: जी बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो रिंची में।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते नाम बता दी अपन और कहाँ से।
1: थाना से रामनेश प्रसाद बोल रहे
0: हैं जी। का हाल चल बा।
1: एक बार अपन सुनाई।
0: हमरो बढ़िया बा। कहाँ रनिया जी
1: इतना दिन रनिया टाइम ना मिल सब।
0: अच्छा अच्छा वही में से तनी मुनी टाइम निकाले के चाहिए नो।
1: आज निकलल बा तो फोन कइले बानी।
0: तब बताई और सब बढ़िया बा घर परिवार सब कैसन बा।
1: सब लोग ठीक बा।
0: चलिए अच्छा बात बा। आज कौन गाना सुना दी रुबा के।
1: तुम सुना दे गाना दबे पावा है नजरिया बचा के।
0: काफी बढ़िया गाना के फरमाइश बा और डेडिकेट भी रही।
1: डेडिकेट भाई सबसे पहले रोगा के रामा जी बने थामे से अरंदा जी बिरंदा जी रमेश जी आज जितना भी भोजपुरी एक्सप्रेस सुनने वाला हमारे सभी श्रोता लोग।
0: चलिए तो गाना प्ले कर दे बानी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। रोगा के भी धन्यवाद बटे सो में कॉल के नहीं।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी राम नरेश जी के फरमाइश सुनत ने सन और बढ़े आगे यहाँ आगे मैसेज बाटे और मैसेज करे वाला बानी नाम बाटे यहाँ के विशाल दीवाना जी जुड़ल बानी दिल्ली से बहुत बहुत स्वागत बाटे शो में और आगे यहाँ एक और मैसेज बाटे लिखा था गुड इवनिंग सोनी जी और हम जुड़ गल बानी लास्ट में ही सही और अनिल जी छोटपुर से जुड़ चुकल बानी बहुत बहुत स्वागत बाटे अनिल जी और एक और यहाँ मैसेज बाटे लिखा था कि फर्स्ट टाइम शो में जुड़ रहा बानी और फर्स्ट टाइम ऐप यूज कर रहा बानी मैसेज करे वाला बानी नाम बटे यहाँ के विराज जी तो रोह के बता दी कि संडे स्पेशल शो है और एक शो में एक ही गाना के फरमाइश जोन बा हम पूरा कर सकते नहीं गाना सुने के बाद तो फिर नेक्स्ट संडे जुड़े और बाकी डेली योर वॉइस योर चॉइस के शो चलेला ओमे रोवा जुड़ सकता नहीं और बाकी के जानकारी रोवा वहाँ से ले सकता नहीं और यहाँ राजेश कुमार जी जुड़ चुकल बानी बहुत बहुत स्वागत बाटे दुबई से जुड़ल बानी और गाना सुने के बाटे दिल दीवाना तो चलिए शो में समय समाप्ति के हो गल बा और समय इशारा करता है कि शो से विदा ली तो चलिए अगला टिकट कन्फर्म करके और ये गाना के संगे हमरा के दी सभी जाए कि इजाजत और गाने के फरमाइश करे वाला बानी गोपालगंज से राजेश कुमार सोनी जी तो चलिए और टिकट भी कंफर्म हो गल बा आवाज पहुँचा था अपन गाना के एंजॉय करी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे और यही गाना के साथ दी आज के कार्यक्रम से हमके जाए की इजाजत स्वस्थ रही मस्त रही और सुनत रही रेडियो रिमझिम के और रखी अपन ख्याल अपना के ख्याल और फिर मिलल जाइए अगला कार्यक्रम में तब तक के लिए नमस्कार।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
7: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62-042-34-03, 62-042-34-03।
11: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 80-29-94-921 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना लें और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
12: हेलो,
13: मनोज कुमार बोल रहा हूँ।
12: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
13: यस मैम।
12: कैसे हैं मनोज जी?
13: मैं ठीक हूँ मैम
12: जी। तो पढ़ाई कहाँ तक की है आप मनोज?
13: मैं ग्रेजुएशन किया हूँ।
12: उसके बाद पढ़ाई जारी है कि बंद है?
13: नहीं, इस समय तो बंद है। ग्रेजुएशन के बाद जो है ना, मैं इधर थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए आप एक साल बाद जो है आपकी बार रुकूंगा।
12: अच्छा अच्छा, तो मनोज जी अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
13: पापा का नाम है अनिरुद्ध सिंह और मम्मी का नाम है राम दुलारी देवी
12: जी। तो पापा जी आपके क्या करते हैं?
13: पापा ये दुकान है, जैसे अलमारी बक्से कूलर वगैरह की है ना, यही सब अलमारी की दुकान है।
12: तो तैयार है मनोज जी आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
13: यस मैम।
12: ओके,

0: तो चलिए मनोज जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए इंदिरा सागर, बी गोविंद सागर, सी नागार्जुन सागर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन नंबर ए कौन सा था?
0: इंदिरा सागर।
1: मैम नागार्जुन में लगा दीजिए।
0: नागार्जुन में लगा दें?
1: वैसे तो कन्फर्म तो नहीं है लेकिन।
0: चलिए तो लॉक करें
1: जी। यस मैम।
0: ओके तो चलिए मनोज जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी नागार्जुन सागर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा गोविंद सागर झील, के भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम। हेलो।
2: हाँ नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: मैं कमरान नसीब, विलेज पकड़ी सुल्तान
0: जी। क्या हाल चाल है कमरान जी?
2: ठीक है, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है कमरान जी आपकी?
2: मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है।
0: चलिए तो अपने अम्मी अबू का नाम बता दीजिए।
2: मोहम्मद रशीद अहमदिया खातून
0: जी। लिया जाए पहला प्रश्न आपसे आज का।
2: जी
0: जी,

0: तो कमरान जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? बोल रहे हैं कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? आवाज जा रही है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी और ऑप्शन सी विटामिन के। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विटामिन सी।
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक कर दो?
1: जी जी
0: जी। तो चलिए कमरान जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विटामिन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। तो कमरान जी, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए रोहिणी, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: तुम आर्यभट्ट,
0: आर्यभट्ट को लॉक करें? प्योर नहीं है?
1: प्योर नहीं है।
0: चलिए, तो चलिए कमरान जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी आर्यभट्ट को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है।
1: थैंक यू मैम।
0: तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, बी थार मरुस्थल, सी गोभी मरुस्थल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ये सवाल क्या था?
0: विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है?
1: जी।
0: ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, बी थार मरुस्थल और सी गोभी मरुस्थल।
1: सहारा ऑप्शन।
0: श्योर है?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए रशीद, कमरान रशीद जी, आपकी तीसरे प्रश्न का उत्तर सहारा मरुस्थल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: हाँ मैम।
0: ओके, आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, भारत से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत से होकर के गुजरने वाली कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम 8 को फिक्स।
0: श्योर है?
1: हाँ मैम श्योर है।
0: लॉक कर दें?
1: जी
0: जी।
1: 8।
0: चलिए, तो आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 8 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवें प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन और सी 52वां संशोधन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ये तो उनको याद था,
0: अभी ध्यान नहीं आ रहा।
1: ध्यान आ रही, मैं ना 2-3 दिन पहले पढ़ा था इसको, मैं पढ़ता हूँ ऑनलाइन, वो याद था। क्वेश्चन कर रहे
0: हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?
1: 42
0: श्योर है?
1: नहीं 42 मैंने कर दिए थे।
0: 42 को ही लॉक करें?
1: हाँ कोई याद नहीं आ रहा।
0: ओके तो चलिए कमरान जी, आपके पांचों प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 42 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचों प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: मैं पढ़ा था मगर उनको ध्यान नहीं
0: था। चलिए
1: हाँ।
0: तो लिया जाए छठा प्रश्न।
1: जी मैं
0: संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? आपसे आपका छठा प्रश्न है।
1: जी
0: संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय और सी संसद। आपका समय श्रोता है अब।
1: सवाल क्या
0: था? संविधान का रक्षक किसे माना जाता है?
1: राष्ट्रपति को। फिर करिए
0: राष्ट्रपति को।
1: जी
0: श्योर है?
1: जी
0: ओके। तो चलिए कमरान जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए राष्ट्रपति को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। जी हेलो, क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
8: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
9: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
8: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
9: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
8: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
9: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
8: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
9: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
8: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
9: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
10: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
11: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
10: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
12: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
10: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
12: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
10: और 9097160002।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029494921 8029494921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो
13: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
13: जी मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से।
13: नाम सलोनी कुमारी बंजारी ब्रह्मस्थान गोपालगंज से।
0: जी कैसी हैं सलोनी जी।
13: ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है सलोनी जी आपकी।
13: बीए फाइनल ईयर
0: चल रहा है।
13: हाँ,
0: पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी।
13: अच्छी चल रही है।
0: मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
13: मम्मी का नाम है सविता देवी और पापा जी का नाम है कुंदन लाल।
0: ठीक, तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
13: हाँ लीजिए।
0: ओके,

0: तो सलोनी जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है।
1: हाँ,
0: भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए इंदिरा सागर, ऑप्शन बी गोविंद सागर और ऑप्शन सी नागार्जुन सागर।
1: गोविंद सागर।
0: चोर है?
1: चोर तो नहीं है पर लग रहा यही होगा।
0: लॉक कर दें?
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सुनिए जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी गोविंद सागर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है।
1: हाँ,
0: भाखड़ा बांध के निर्माण से कौन सी झील बनी है? ऑप्शन ए नागार्जुन, बी हीराकुंड, सी गोविंद सागर। आपका समय
1: छोटा है।
0: श्योर है?
1: हाँ श्योर हूँ।
0: लॉक कर दूँ?
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी, आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन सी गोविंद सागर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है। संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संसद। आपका समय होता है अब।
1: मैम ऑप्शन बी से बोलिएगा।
0: ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय और सी संसद।
1: सर्वोच्च न्यायालय।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है।
0: लॉक कर दें?
1: लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय को लॉक करते हैं। और आपको बता दी कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947। आपका समय श्रोता है अब।
1: पेन भी लगाइए।
0: 26 नवंबर 1949।
1: हाँ।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है। नहीं,
0: 26 जनवरी 1950 नहीं हो सकता।
1: लगा लीजिए 26 जनवरी 1950।
0: एक बार फिर सोच लीजिए।
1: लगाइए 26 जनवरी 1950।
0: कंफर्म है?
1: हाँ कंफर्म है।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर 26 जनवरी 1950 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर था 26 जनवरी 1949, जो आपने पहले बताया था।
1: ठीक है।
0: हेलो, क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो।
3: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
3: जी नमस्ते मैम।
2: नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
3: सालू कुमारी शेर से बेटोला से।
2: ठीक, कैसी हैं सालू जी?
3: हम ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं?
2: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो कहाँ तक पढ़ाई की है सालू जी आप?
3: अभी 9th में हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ।
2: 9th का चल रहा है, पढ़ाई कैसा चल रहा है आपकी?
3: अच्छा चल रहा है।
2: आगे क्या करना है, कुछ सोचा है आपने?
3: जी UPSC में जाना, सिविल सर्विसेज में जाना।
2: अच्छा, तो तैयारी शुरू कर दी है कि अभी 10th के बाद?
3: 10th के बाद।
2: 10th के बाद, चलिए बढ़िया है। चलो, क्विज कॉन्टेस्ट में इससे पहले कॉल किए हैं आप?
3: हाँ किए हैं, एक बार मैंने दिया था 10 क्वेश्चन का टोटल आंसर, तो उसमें कुछ हुआ ही
2: होगा? जरूर दी है तो
3: पता नहीं।
2: पक्का होगा, ऐसा थोड़ी है, सबका
0: एक साल में जब हमारा ये रेडियो रिमझिम का स्थापना दिवस होता है, जब सबको ही रहता है, उस बीच में बुलाया जाता है सभी को, जो पूरे साल में जितने लोग विनर बने होते हैं। आपके बगल में कोई है?
3: नहीं, वो पापा का फोन आ रहा है इसलिए।
0: अच्छा, कोई है तो फिर उन्हें भेज दीजिए या फिर आप कहीं अलग हो जाइए, ठीक है?
3: ठीक है।
0: ओके, तो सालू जी लिया जाए पहला प्रश्न आपसे आज का।
3: हाँ,
0: अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
3: मेरी मम्मी का नाम श्रीमती निर्मला देवी, पापा का नाम बलिंद्र कुमार।

0: तो सालू जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है।
1: हाँ बोलिए।
0: कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी और ऑप्शन सी विटामिन के। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विटामिन के।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दो?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए सालू जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विटामिन के को लॉक करते हैं। और आपको बताएं कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा विटामिन सी, ना कि विटामिन के।
1: जी मैम।
0: ओके, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में की बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आंख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।
9: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
9: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
10: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
10: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
9: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029494921 8029494921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
11: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंचिंग के कार्यक्रम में, क्विज कॉन्टेस्ट में।
11: जी गुड्डू कुमार यादव बोल रहा हूँ।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं गुड्डू जी?
11: माधवा रोड से।
0: भाटवा रोड से? ये कहाँ पड़ता है आपका भाटवा रोड?
11: कुचायकोट से।
0: कुचायकोट, कैसे हैं गुड्डू जी आप?
11: ठीक है,
0: हम भी बढ़िया हैं। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है गुड्डू जी आपकी?
11: ग्रेजुएशन तक की है।
0: उसके बाद पढ़ाई चल रही है कि छोड़ दिए हैं?
11: नहीं, बीएड कर रहे हैं।
0: अच्छा, बीएड चल रहा है, चलिए बढ़िया है। मम्मी पापा का नाम बता दीजिए आप अपना।
11: जी, पिताजी का नाम उमा शंकर यादव और माता जी का नाम कल्पवती देवी।
0: जी, तो गुड्डू जी लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
11: हाँ लीजिए।
0: ओके,

0: पुटो जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, गोविंद सागर झील का संबंध किस बांध से है? गोविंद सागर झील का संबंध किस बांध से है? ऑप्शन ए है टिहरी बांध, बी है भाखड़ा बांध और सी है सरदार सरोवर बांध। आपका समय शुरू होता है अब।
1: सरदार सरोवर को ठीक चाहिए।
0: प्योर है?
1: प्योर तो नहीं है लेकिन ठीक चाहिए।
0: ओके तो चलिए गुड्डू जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सरदार सरोवर बांध को लॉक करते हैं। और आपको बता दे कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा भाखड़ा बांध। जी हेलो क्रूज कौन? हेलो।
2: हाँ नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
2: जी
0: नाम बताइए अपना और कहाँ से?
2: जी मैं विमल कुमारी बोल रही हूँ लाइन बाजार से।
0: जी कैसी हैं विमल जी?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो पढ़ाई करती हैं आप?
2: हाँ पढ़ाई कर लिए है।
0: अच्छा फाइनल है?
2: हाँ अभी फिलहाल बंद है।
0: अच्छा कहाँ तक हुई है पढ़ाई आपकी?
2: ग्रेजुएशन तक।
0: ग्रेजुएशन करके छोड़ दी है?
2: हाँ।
0: तो आज के प्रश्न के लिए तैयार हैं आप?
2: जी मैम।
0: जी तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए विमल जी।
2: जी मेरे मम्मी का नाम प्रभावती देवी है और पापा जी का नाम श्री रामा जी प्रसाद है।
0: चलिए तो प्रश्न पहला आपसे।
2: जी मैम।
0: जी तो चलिए विमल जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: भारत के संविधान को लागू कब किया गया? भारत के संविधान को लागू कब किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949। आपका समय श्रोता है अब।
1: आपका आवाज कट गया मैम।
0: तो ऑप्शन फिर से बोले।
1: आपका आवाज नहीं सुनाई दिया शुरू में।
0: क्वेश्चन नहीं सुनाई पड़ा
1: जी।
0: क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान को लागू कब किया गया? भारत के संविधान को लागू कब किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949। आपका समय शुरू होता है अब।
1: छब्बीस जनवरी 1950।
0: श्योर है
1: जी?
0: लग कर दूं?
1: जी मैम।
0: ओके, तो चलिए विमल जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, बी थार और सी गोबी मरुस्थल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बी ऑप्शन बी
0: थार मरुस्थल।
1: मेरा आवाज में थोड़ा फोन कट कट के आ रहा है ना, तो नहीं सुन पा रहे।
0: तो ऑप्शन फिर से बोले
1: जी।
0: ऑप्शन ए है सहारा मरुस्थल, बी है थार मरुस्थल, सी है गोबी मरुस्थल।
1: बी लॉक कर दीजिए।
0: थार मरुस्थल को
1: जी।
0: जी तो चलिए विमल जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी थार मरुस्थल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
1: ओके मैम।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की।
1: ओके,
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
11: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
12: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
11: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
12: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
11: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक।

0: अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करे 94512-11001।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80-29-94-921 80-29-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
3: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ड्यूरिंग जिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
3: जी नमस्ते मैम।
2: नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
3: निरंजन कुमार बोल रहे हैं। बताओ से
2: निरंजन की रंजन?
3: निरंजन।
2: कहाँ से बात कर रहे हैं निरंजन?
3: बतरदे से।
2: बतरदे
3: जी।
2: ये बतरदे किधर पड़ता है? नाम तो सुना हुआ है।
3: डौली पर खड़ा पड़ता है।
2: अच्छा अच्छा।
3: मेरे गाँव का नाम अंग्रेजों रखा था बेटरडे।
2: अच्छा,
3: बतरदे हो गया यहाँ। अच्छा, दिन गुजरता था लोग का।
2: ये बतरदे थोड़ा सीधा हो गया, साधारण हो गया है। कोई भी बोल सकता है। तो कैसे हैं निरंजन जी आप?
3: अपना सुनाइए।
2: हम भी बढ़िया हैं। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
3: इंटर तक हुई है।
2: इंटर के बाद जारी है कि खत्म, वहीं से छोड़ दिए हैं?
3: छोड़ दिए हैं।
2: इंटर के बाद छोड़ दिए हैं।
3: 2020 में ही इंटर का एग्जाम।
2: अच्छा।
3: उसके बाद कोरोना आ गया, पैसा भी नहीं था एडमिशन कराने के लिए।
2: उस टाइम तो काफी लोगों का पढ़ाई लॉस हुआ है।
3: ऐसा टाइम में मैंने ऐसा ऑनलाइन कराया थे, एक कॉलेज में भेजा था नेचुर जलाल, तो उसे पैसा 6000 का लग रहा था 8 से दुकाने के लिए। 4000 रुपया लेकर गए थे, नहीं हुआ।
2: नाम आने के बाद 8000 रुपया लग रहा था।
3: 6000 एडमिशन लिए।
2: लिस्ट में नाम आने के बाद?
3: हाँ, लिस्ट में नाम आने के बाद।
2: फिर तो ये तो बहुत ही ज्यादा लग रहा था।
3: हाँ,
2: क्योंकि हमारे यहाँ तो जो कॉलेज है यहाँ कमला राय है, उसमें तो इतना नहीं लगता है।
3: इधर उतना नहीं लगता है। उधर भेज दिया था।
2: तो आप ऑप्शन में लिए होंगे?
3: उसको लास्ट में डाले थे, 10 ऑप्शन रहता है, 10 कॉलेज का डालना पड़ता था।
2: 10 कॉलेज का नाम होता है।
3: और लास्ट में डाले थे, किसी में डाल दिए।
2: चलिए, जो होना था वो हो गया।
3: उसमें जो मास्टर थे, तो किधर है बात करना है, प्रिंसिपल साहब, तो सब उल्टा पुल्टा बोल रहा था। रोज से घूमत हुई है, पहने घूमत हुई, आपकी इस बार छोड़ दीजिए।
2: क्या करते हैं आप निरंजन जी?
3: अभी तो गांव में आए हुए हैं, बाहर आते हैं सूरत।
2: अच्छा, काम करते हैं।
3: हाँ,
2: तभी घर आए हुए हैं।
3: जी।
2: रेडियो रिमझिम को कब से सुनते हैं आप?
3: रेडियो रिमझिम को तो हम 2009 से ही सुनते हैं।
2: मतलब जब से इसका स्थापना हुआ तभी से?
3: क्या,
2: जब स्थापना हुआ रेडियो रिमझिम का तभी से आप सुनते हैं?
3: हाँ, छोटे पाँच छह क्लास से पढ़ रहे थे। रेडियो रिमझिम दिन में 2-3 बार बंद होता था।
2: दो बार।
3: हाँ, तो बढ़िया से सुनते थे। जब स्टार्ट होता था तो भक्ति गाना बजता था। जनरेटर जो चलता था उसका आवाज ही सुनाता था पहले।
2: कभी कभी आता था।
3: हाँ, तो उस टाइम से ही सुन रहे हैं।
2: चलिए बढ़िया है। तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं इससे पहले?
3: हाँ, कॉल तो बहुत बार किए।
2: अच्छा, तो लिया जाए आपसे आज का प्रश्न है। जी, तो निरंजन जी आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
3: माता जी का नाम श्रीमती जनमती देवी और पिताजी का श्री सुनम जी।
2: तो निरंजन जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

विद्वान शब्द का सही विलोम क्या है? विद्वान शब्द का सही विलोम क्या है? ऑप्शन ए ज्ञानी, बी मूर्ख, सी शिक्षक। आपका समय श्रोता अब।

0: मूर्ख होगा।
1: श्योर है?
0: हाँ श्योर है।
1: लॉक कर दो।
0: जी
1: जी। तो चलिए निरंजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी मूर्ख को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
0: जी।
1: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? ऑप्शन ए
0: विटामिन सी।
1: श्योर है?
0: जी।
1: लॉक कर दूं?
0: जी।
1: चलिए तो चलिए निरंजन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर विटामिन सी, लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए? जी। आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? श्योर है? ओके। तो चलिए निरंजन जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर लाल बहादुर शास्त्री को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए? चौथा प्रश्न आपसे ये है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, बी थार मरुस्थल, सी गोभी मरुस्थल। आपका समय शुरू होता है अब।
0: थार।
1: क्यों है?
0: जी।
1: लॉक करूं?
0: जी
1: जी। तो चलिए निरंजन जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी थार मरुस्थल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा सहारा
0: मरुस्थल। थार
1: भारत का है, हम विश्व का पूछे हैं।
0: अच्छा विश्व का।
1: कोई नहीं, नेक्स्ट संडे फिर कोशिश करिएगा।
0: ठीक है,
1: ठीक है। कुछ कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
9: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-21 8029-94-21 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम में।
0: हेलो, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
0: प्रियांशु थारे से।
1: जी, क्या करते हैं प्रियांशु?
0: अभी तो स्कूल में है।
1: मतलब स्कूल में किस क्लास की पढ़ाई चल रही है अभी आपकी?
0: सेवेंथ।
1: पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी?
0: बढ़िया
1: चल रही है। तो प्राइवेट में पढ़ते हैं या सरकारी में?
0: प्राइवेट।
1: कौन से स्कूल में?
0: क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल।
1: अच्छा, और कहाँ से बात कर रहे प्रियांशु, एक बार फिर बताइए।
0: थावे से।
1: प्रॉपर थावे या फिर थावे में कोई जगह?
0: थावे ही है, नानी थावे।
1: अच्छा, तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में पहली बार कॉल किए हैं आप? चलिए, कार्यक्रम सुनते हैं।
0: हाँ, सुनते हैं।
1: तो तैयार हैं आप आज के हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के लिए?
0: हाँ।
1: अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
0: पापा का नाम श्री तेजवाल दुरुस्त है, मम्मी का नाम श्रीमती दुर्गा देवी।
1: पापा जी क्या करते हैं आपका?
0: बाहर रहते हैं, इलेक्ट्रिशियन है।
1: तो ले आज का पहला प्रश्न आपसे। चलिए, तो प्रियांशु जी, आज का पहला प्रश्न आपसे ये है

0: जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी महात्मा गांधी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: लाल बहादुर शास्त्री।
0: श्योर है? लॉक कर दें? चलिए तो प्रियांशु जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए? ओके, तो प्रियांशु आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, बी थार मरुस्थल, सी गोबी मरुस्थल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: सहारा मरुस्थल। सहारा।
0: श्योर है? लॉक करें? जी। और प्रियांशु जी आप जहाँ हैं वहाँ से हट जाइए, बहुत सारे आवाज आ रही है बगल से।
1: ठीक है
0: जी, तो लॉक करें ना आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर। तो आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर सहारा मरुस्थल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए? तो प्रियांशु जी आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया? भारत के संविधान को लागू कब किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। आपका समय शुरू होता है अब।
1: पंद्रह अगस्त को किया गया था।
0: 15 अगस्त 1947। श्योर है? लॉक करो? चलिए तो प्रियांशु जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आप तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था जी। हेलो, क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर कोशिश करिएगा।
1: ठीक है,
0: ओके।
2: तो दोस्तों ये रहा हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त और रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 90971660।
6: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
7: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
6: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए। आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
8: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
9: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
10: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
11: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो रिमझिम। सुनो दिल से।

0: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94-704-34-468 पे।
10: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: गोला एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869973।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
10: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
3: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
6: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिंजन 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: मुरारीलाल विजय कुमार
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारीलाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारीलाल विजय कुमार।
1: मुरारीलाल विजय कुमार मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करे 87894 18744।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।
5: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

बाप है। आज रात का ड्रेस कोड है।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946। अगर आपको

0: रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
0: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
0: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करें बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
0: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
2: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
7: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
7: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: यह कहानी है एक अतुलनीय पराक्रम की, ऐसे योद्धाओं की जिन्होंने अपने प्यारे देश के लिए बिना झिझके अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये कहानी है असीम वीरता की, गाथा है अमर बलिदान की, ये कथा है एक ऐसे देश की जो संकट में एकजुट हुआ। कहानी करगिल की।

ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सीना चीरती ये सड़क पहुंचती है सरहद पर बसे एक शहर में। सुरू नदी के किनारे बसा ये शहर करीब 8,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1,000 किलोमीटर से भी दूर मौजूद इस छोटे से शहर का नाम है करगिल। जी हाँ, वही करगिल जिसका नाम सुनते ही जहन में खास तस्वीर उभर आती है। तस्वीर एक ऐसे युद्ध की जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

0: आज यहाँ न गोलियों की गूंज है न युद्ध के निशान। सरहद पर होने की वजह से सेना की मौजूदगी जरूर देखी जा सकती है, लेकिन बाजारों में वैसी ही हलचल है जैसी दूसरे शहरों में होती है। वक्त के साथ जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हवा में लहराता ये तिरंगा अब भी सुनाता है करगिल की वो कहानी जो भारतीय सेना के वीरों ने अपने लहू से लिखी थी। श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला हाईवे हो या यहां मौजूद चोटियां, ये सब करगिल की कहानी का अहम हिस्सा है। बर्फ से ढकी ये पहाड़ी चोटी कभी दुश्मनों के कब्जे में थी, लेकिन जब भारतीय सेना के जवानों ने इस चोटी पर तिरंगा लहराया तो ये तस्वीरें यादगार बन गई। करगिल के चारों तरफ मौजूद हर चोटी की ऐसी ही कहानी है।
1: 26 जुलाई 1999 ये वही दिन था जब भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। इसी दिन करगिल की जंग खत्म हुई थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को ऐसा सबक सिखाया कि उनके लिए जान बचाकर भागना भी मुश्किल हो गया था। ये भारत और पाकिस्तान की चौथी लड़ाई थी। पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के साथ धोखा करता आ रहा है, लेकिन 1999 में पाकिस्तान ने किया सबसे बड़ा विश्वासघात।

0: My message to the people of Pakistan will be short and simple. Put aside the bitterness of the past. Together, let us make a new beginning.
1: इस संदेश के साथ शुरू हुआ साल 1999, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों की एक नई शुरुआत की अपील की। भारत पाकिस्तान की सीमा पर घट रही इस ऐतिहासिक घटना पर पूरी दुनिया की नजर थी। लाहौर में पाकिस्तान ने जिस गर्मजोशी से भारत की दोस्ती का हाथ थामा, भारत ने उतनी ही आत्मीयता से पाकिस्तान को गले लगाया। दिल्ली से लाहौर तक जाने वाली ये बस न सिर्फ दो पड़ोसी मुल्कों को जोड़ रही थी, बल्कि उनके बीच भरोसे की एक नई कहानी लिख रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह वादा किया था कि उस साल के अंत तक दोनों मुल्क मिल बैठकर कश्मीर मसले का हल निकाल लेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी इस नए रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाने का वादा किया था।
2: Underscore to Prime Minister Vajpayee the immense potential of building a mutually beneficial cooperative relationship once we achieve a final settlement of Jammu and Kashmir issue.
1: अमन, चैन और दोस्ती की उम्मीद से भरे इस माहौल में 21 फरवरी 1999 को दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पत्र जारी किया। लेकिन जिस वक्त लाहौर में यह सब हो रहा था, उसी वक्त पाकिस्तानी जमीन पर भारत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। ये साजिश थी भारत की सीमा में घुसकर हमले की। भारत को इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिस पाकिस्तान को वो गले लगा रहा है, वो उसकी पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के इस छल का खुलासा हुआ मई 1999 में।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
8: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
9: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
8: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
10: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
11: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
12: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
13: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03 62042434-03।
14: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
15: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
16: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
17: आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
16: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
17: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
16: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
17: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
16: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27। 22 गोपालगंज।
17: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
1: कहानी करगिल की, अमन चैन और दोस्ती की उम्मीद से भरे इस माहौल में 21 फरवरी 1999 को दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पत्र जारी किया। लेकिन जिस वक्त लाहौर में यह सब हो रहा था, उसी वक्त पाकिस्तानी जमीन पर भारत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। यह साजिश थी भारत की सीमा में घुसकर हमले की। भारत को इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिस पाकिस्तान को वो गले लगा रहा है, वो उसकी पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के इस छल का खुलासा हुआ मई 1999 में।
18: 1999 की करगिल जंग की शुरुआत बटालिक सेक्टर से हुई थी। इस समय हम बटालिक सेक्टर में है और मेरे ठीक पीछे पाकिस्तानी नियंत्रण वाले कश्मीर का गांव है। लेकिन जो जंग लड़ी गई थी वो इन पहाड़ियों के ऊपर लड़ी गई थी। जब बटालिक के एक शख्स ने अपनी भेड़ बकरियां लेके ऊपर इस पहाड़ की तरफ गए थे, तो यहाँ पे उनको पाकिस्तानी घुसपैठिए दिखाई दिए थे, जिसकी खबर बाद में उन्होंने मई महीने में ही सेना को दी थी। यानी जो पहले घुसपैठिए देखे गए थे करगिल जंग में, वो इन्हीं पहाड़ियों में दिखे थे।
1: बटालिक सेक्टर के इसी गरकुन गांव के कुछ गडेरियों ने सबसे पहले पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा। उनके मुताबिक पठान सूट पहने कुछ लोग बंकर खोद रहे थे। इस खबर के बाद सेना की कुछ गश्ती टुकड़ियों को भेजा गया, लेकिन भारत को तब यह अंदाजा नहीं था कि जिन्हें वो घुसपैठिया समझ रहे हैं, वो दरअसल पाकिस्तानी फौज के सिपाही हैं। पाकिस्तान के धोखे का पता तब चला जब कैप्टन सौरभ गालिया की पेट्रोलिंग टीम लापता हो गई।
19: ये जो पहले पहले जो खबर इन लोगों को मिली यहाँ पर लोकल फॉर्मेशंस को, यूनिट्स को, तो उन्होंने ये समझा कि कुछ घुसपैठिए आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि वो उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। लोकल फॉर्मेशन ने समझा कि हम इनको निकाल फेंकेंगे और इनके पास ज़्यादा हथियार नहीं होंगे। जब ये असेसमेंट को चेंज किया गया, जब हमको खुद आर्मी को लगा के नहीं ये घुसपैठिए नहीं है, ये तो रेगुलर आर्मी के लोग हैं, तो उस वक्त हमको पूरा का पूरा स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स सब बदलनी पड़ी।
20: जब तक भारत को पता चल पाता, तब तक पाकिस्तान ने भारत की करीब 150 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी सेना ने उन चौकियों पर कब्जा किया था जिन्हें भारतीय सेना सर्दियों में खाली कर देती थी और गर्मियों में वापस जाया करती थी। लेकिन 1999 में भारतीय सेना की उन चौकियों पर जाने से पहले ही पाकिस्तानी फौज ने उन चौकियों पर अपना कब्जा जमा लिया था। जाहिर है इसके लिए पाकिस्तान ने एक बड़ी तैयारी की होगी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या फरवरी 1999 में जब नवाज शरीफ अटल बिहारी वाजपेयी से लाहौर में मिल रहे थे, तो क्या उन्हें इस घुसपैठ की जानकारी थी?
1: नवाज शरीफ खुद ये दावा करते रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान की साजिश की भनक भी नहीं थी। खुद को इस मामले से पूरी तरह अलग करते हुए शरीफ ने यहाँ तक कह डाला कि उन्हें तो अटल बिहारी वाजपेयी के फोन से मालूम चला कि पाकिस्तानी फौज भारत में घुस चुकी है।
21: मेरे भाई मुशर्रफ ने कारगिल पे हमला किया और उस फौजी हमले का मुझे इल्म नहीं था। मैंने उसका नोटिस लिया और नोटिस मैंने तब लिया जब वाजपेयी साहब का मुझे टेलीफोन आया, मुझे कहने के नवाज शरीफ साहब ये आपने क्या कर दिया हमारे साथ। मैं तो थोड़े दिन पहले आपके पाकिस्तान से होके आया हूँ, इतना अच्छा जज्बा लेके मैं हिंदुस्तान वापस आया हूँ और आपने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। तो मैंने कहा क्या हुआ वाजपेयी साहब? कहने आपको मालूम नहीं क्या हुआ है, आपकी फौज ने हमारी फौज पे हमला कर दिया। मैंने मुशर्रफ साहब से बात की और फिर हकायक जो वाजपेयी साहब कह रहे थे उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक निकले और फिर मैंने कहा कि आपने ये सब कुछ क्या किया।
1: परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने बाद में नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर पाकिस्तान की सत्ता अपने हाथ में ले ली, उस वक्त पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हुआ करते थे। जानकारों के मुताबिक 1998 में पाकिस्तानी सेना की कमान संभालते ही मुशर्रफ ने भारत पर हमले की योजना बना ली थी।
0: नवाज शरीफ को इस घुसपैठ के बारे में कितना इल्म था, इस सच का पता तो नहीं चल सका, लेकिन ये बात अब पूरी दुनिया जानती है कि करगिल का मास्टरमाइंड कौन

0: अनऑक्युपाइड एरिया में इंडिया सियाचिन में आ गया, यहां हम चले गए। ये हमें और हमने मैं आई से विद कॉन्फिडेंस हमने हिंदुस्तानी फोर्स को गले से पकड़ लिया, और मैं रिपीट कर रहा हूं, उनको गले से पकड़ लिया क्योंकि हम उन जगहों में चले गए जहां उनकी जो मेन आर्टरी है जो श्रीनगर से द्रास, कारगिल और लद्दाख ले जाती है, उसको हम डोमिनेट कर गए। उस पर गाड़ी नहीं चल सकती थी अगर हम ना चाहते।
1: इससे पहले की तीन लड़ाइयों में भारत से मुंह की खाने के बाद भी 1999 में पाकिस्तान ने भारत पर हमले की हिमाकत की। उसकी सबसे बड़ी वजह थी 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट। उस साल दोनों ही मुल्क एटमी हथियारों से लैस हो चुके थे। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान एटमी हथियारों का डर दिखाकर ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे कश्मीर के मुद्दे पर भारत पर दबाव डाला जा सके।
2: इन न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान में एक ह्यूबरिस की स्थिति आई कि साहब अब तो हम एटमी ताकत बन गए हैं, भारतवर्ष हिम्मत नहीं करेगा, अगर हम कोई प्रोवोकेशन करते हैं सब कन्वेंशनल दर्जे पे तो भारत में हिम्मत नहीं होगी कि उसका वो जवाबी कार्रवाई कर सके, और इसी के चलते उन्होंने कारगिल का युद्ध जो है छेड़ दिया था।
1: जनरल परवेज मुशर्रफ का प्लान बिल्कुल साफ था, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से काटकर सियाचिन में भारत की पकड़ कमजोर करना।
3: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
9: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
10: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
11: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
10: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
11: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
10: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
11: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
10: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।
12: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: कहानी कारगिल की। जनरल परवेज मुशर्रफ का प्लान बिल्कुल साफ था, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से काटकर सियाचिन में भारत की पकड़ कमजोर करना। मुशर्रफ ने बेहद खुफिया तरीके से यह साजिश रची।

0: पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी के मुताबिक करगिल में घुसपैठ के सीक्रेट ऑपरेशन में मुख्य तौर पर पाकिस्तानी सेना के 4 ऑफिसर शामिल थे।
1: आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ कमांडो, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज, हेड ऑफ कश्मीर जिहाद, ये वो सारा कुछ आईएसआई में जब वो थे तो अब वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बन गए। जनरल महमूद कोर कमांडर 10 कोर, और हमारा फॉर्मर एम्बेसडर टू अमेरिका ब्रिगेडियर जावेद हसन इन चार्ज ऑफ नॉर्दर्न इन्फेंट्री फोर्स कमांड नॉर्दर्न इन्फेंट्री, जो कि इन इलाकों के, ये थे द फोर पीपल हु कंसीव्ड द गैंग ऑफ फोर। अक्टूबर नवंबर 98, अभी बस डिप्लोमेसी शुरू भी नहीं हुई थी, तो इन्होंने फैसला किया कि कुछ करते हैं, देखते हैं। उस वक्त कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडिया इस सेक्टर के अंदर कुछ अग्रेसिव शेलिंग हो रही है, इंडिया के कुछ प्लान्स बन रहे हैं, कोई और ना कुछ सीज कर ले एलओसी के ऊपर। तो इन्होंने ब्रिगेडियर साहब को कहा कि जी, क्योंकि वो इंचार्ज थे, कि आप जाके चेकआउट तो करें वहां इंडिया के क्या इरादे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये जब ब्रिगेडियर साहब गए उस इलाके में रेकी करने, तो देखा वहां तो बंदर और बंदे की जात, थोड़ा और आगे गए थे बंदर और बंदे की जात, सोचे कोई तो रास्ता खुला है, तो है ही कुछ नहीं, ये तो ऐसी वी कैन वॉक इन, पता नहीं चलना किसी को। वहां से ये प्लान बना।
0: मुशर्रफ के इस प्लान को नाम दिया गया ऑपरेशन बद्र। नजम सेठी के मुताबिक 1999 के जनवरी फरवरी महीने में मुजाहिदीनों की शक्ल में पाकिस्तान के करीब 200 सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल को लांघकर करगिल की सुनसान पहाड़ियों में घुस गए। धीरे धीरे इन सैनिकों की संख्या बढ़ती गई और मार्च अप्रैल तक उन्होंने भारत की 140 से ज्यादा पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन डायरेक्टोरेट में रहे कर्नल अशफाक हुसैन ने अपनी किताब विटनेस टू ब्लंडर में लिखा है कि हमले से पहले परवेज मुशर्रफ खुद एलओसी क्रॉस करके भारतीय नियंत्रण रेखा में 11 किलोमीटर अंदर तक गए और वहां एक रात भी गुजारी।
2: करगिल की लड़ाई का ये पहला चरण था। पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री यानी एनएलआई के फौजी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपनी पोजीशन ले चुके थे, लेकिन भारत को इसकी खबर तक नहीं थी। करगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर की ऊंची ऊंची पहाड़ियां करीब 16 से 18 हजार फीट तक की हैं, और यहां पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों के सीधे निशाने पर था नेशनल हाईवे नंबर 1A, यानी वो रास्ता जो कि लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ता है। पाकिस्तान की योजना ये थी कि इस हाईवे पर लगातार फायरिंग कर लद्दाख को बाकी के जम्मू कश्मीर से काट दिया जाए।
0: जम्मू कश्मीर का सबसे शांत इलाका, लद्दाख पर पाकिस्तानी कब्जा ऑपरेशन बद्र का पहला लक्ष्य था। इसी रणनीति के तहत करगिल की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिक नेशनल हाईवे पर जबरदस्त गोले बरसा रहे थे।
3: उनका इरादा मेरे ख्याल से ये भी था कि एक बार अगर श्रीनगर से लद्दाख का रोड कम्युनिकेशन को काट दिया जाए, तो उसके बाद वो शायद सियाचिन मुद्दे के ऊपर भी भारत के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, और उसके बाद भारत को एक कमजोर स्थिति से फिर पाकिस्तान के साथ बात करनी पड़ेगी।
0: शुरुआत में भारत यही समझता रहा कि हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, लेकिन जैसे ही भारत को इस बात के सबूत मिलने लगे कि आतंकवादियों की शक्ल में पाकिस्तानी सेना गोले बरसा रही है, भारत ने मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। दुनिया के इतिहास में पहली बार महाविनाशक एटॉमिक हथियारों से लैस दो देश युद्ध के मैदान में आमने सामने थे।
4: इस समय देश के सामने युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। कारगिल में, उसके आसपास के क्षेत्र में बड़ी तादाद में पाकिस्तान से सशस्त्र घुसपैठी आए।
0: भारत एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। उसे ऐसा जवाब देना था जिससे पाकिस्तान को सबक भी सिखाया जा सके और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माहौल उसके पक्ष में रहे। यही वजह थी कि 24 मई को CCS यानी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। भारत ने पाकिस्तानी हमले का जवाब देने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया, लेकिन सेना को किसी भी हाल में लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस न करने की हिदायत दी।
5: बहुत लोग चाहते थे कि हम पलटवार करें, लाइन ऑफ कंट्रोल को जाके पार करें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारी जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का ये फैसला था एलसी ना पार करने का, ये बहुत समझदार फैसला था, क्योंकि इससे कोई विदेशी ताकत इसमें अब हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल पार करते तो ये इंटरनेशनल स्थिति बन जाती, यूएन उसमें बीच में टपक पड़ता, अमेरिका दबाव डालता कि लड़ाई बंद करो, मैक्सिमम हम 7-8-10 दिन 15 दिन तक लड़ाई लड़ सकते थे, जबकि ऐसे पहाड़ों पे हमारा अंदाजा था कि 2-2.5-3 महीने लग जाएंगे उनके पांव उखाड़ने में। तो इसलिए अगर हमने लाइन पार की होती, हमने दबाव पड़ता, 15 दिन में हमको खत्म करना पड़ता और काफी सारा इलाका उसके हाथ में रह जाता ऐसे अहम जगह में।
4: शांति और शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शांति में राष्ट्र की शक्ति तैयार होती है, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तेज होती है, शांति में जीवन की रक्षा होती है, विकास होता है। लेकिन जब शांति खतरे में पड़ जाए दूसरों के व्यवहार के कारण, तो फिर शक्ति से काम लेना पड़ता है।
2: युद्ध के इतिहास में करगिल की लड़ाई को सबसे मुश्किल लड़ाइयों में गिना जाता है, जहां दुश्मन 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर बंकर में छुपा बैठा था और उनसे मुकाबला करने वालों को हमला करने वालों का नीचे से जवाब देना था। इसलिए भारत रणनीतिक तौर पर कमजोर स्थिति में था। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने हमलावरों की संख्या करीब 5,000 थी और उन्हें खदेड़ने के लिए भारतीय सेना को करीब 30,000 जवानों को भेजना पड़ा था।
0: भारतीय सेना की मुश्किल ये थी कि जिस हाईवे को वो अपने सप्लाई रूट की तरह इस्तेमाल कर सकते थे, उस पर पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर रहा था। इसलिए भारत ने सबसे पहले उन चोटियों को निशाना बनाने की योजना बनाई जो सीधे हाईवे के सामने थी, यानी तोलोलिंग और टाइगर हिल्स। भारत की जवाबी कार्रवाई के इस पहले चरण में सबसे अहम भूमिका निभाई बोफोर्स गन ने। कुछ साल पहले राजनीति के मैदान में बदनाम हो चुकी बोफोर्स गनों ने करगिल के मैदान में अपना दम दिखाया। जमीन पर बोफोर्स के गोले तो आसमान में एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने बम बरसाना शुरू किया।
5: लड़ाई के मैदान में इसने अपना पूरा जौहर दिखाया और जैसे मैंने बताया कि उस ऊंची पहाड़ी चोटियों पर अगर हम दुश्मन को हिला पाए तो सबसे ज्यादा उसमें भूमिका थी हमारी बोफोर तोपों की और हमारे इन्फेंट्री के सिपाहियों की हिमाकत और शुजात की। और ये बोफोर तोपें हमने बताया हर इन्फेंट्री पलटन के अटैक के लिए हमने 100 गन्स वहां पे पहुंचवाई थी और जो ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर्स थे वो वहां पहुंचाए ताकि दुश्मन को हिला लिया जाए हमले के पहले और तभी दुश्मन के पांव उखड़े, नहीं तो उस हाइट से उसको निकालना असंभव था।
2: करगिल की कहानी बिना बोफोर्स के पूरी नहीं होती। 155 मिलीमीटर की होविट्जर गन का बैरल करीब 70 डिग्री तक घूम सकता है, यानी इसका गोला ऊंची से ऊंची पहाड़ियों तक पहुंच सकता है। करीब 40 किलोमीटर की रेंज वाली इन गनों ने ऊंची पहाड़ियों पर बने दुश्मनों के बंकरों को तबाह कर दिया।
0: ₹26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने हवाई हमला शुरू किया। हालांकि दुश्मन की सही पोजीशन पता न होने की वजह से वायुसेना को शुरुआती झटके लगे। 27 मई को MiG-27 तकनीकी खराबी की वजह से दुर्घटना का शिकार हुआ। सहायता के लिए बढ़ा दूसरा MiG-21 विमान पाकिस्तानी मिसाइल के निशाने पर आ गया। MiG-27 के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता को युद्ध बंदी बना लिया गया, जबकि मिसाइल के निशाने पर आए विमान MiG-21 के पायलट स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को पाकिस्तानियों ने बर्बरता से मार डाला।

0: all of you here will share my sadness that on first report and preliminary inspection of the body, we find bullet wounds. Now the body is being taken for post-mortem, and when we have the full report of the post-mortem, we shall present it to you.
1: शुरुआती झटकों के बाद वायुसेना ने अपनी रणनीति बदली। 1971 के बाद पहली बार वायुसेना के जंगी जहाज युद्ध में शामिल हो रहे थे। इसे ऑपरेशन सफेद सागर का नाम दिया गया। MiG-29 हवा में दूसरे विमानों को सुरक्षा देता था। इसने पाकिस्तानी F-16 विमान को भारतीय सीमा से दूर रहने पर मजबूर किया, जबकि MiG-27, MiG-21 और Mirage-2000 विमान जमीनी निशाना ढूंढते थे। भारतीय वायु क्षेत्र में रहकर विमानों ने वो काम किया जो अब तक दुनिया की किसी भी वायुसेना ने नहीं किया था। 13,000 फुट से 18,000 फुट की ऊंचाई पर छुपे पाकिस्तानी फौज के सैनिकों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। पहली बार लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल हुआ।
2: Fortunately, by a system that we had adopted in Western Air Command, the enemy was convinced that we are ready for the air battle, willing for the air battle. आप आओ, हम आपसे लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, and we are waiting for it. वो नहीं आया।
1: इसके साथ भारत ने जल्द ही दुनिया के सामने पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी के पुख्ता सबूत दे दिए।
3: Direct involvement of the Pakistani army in these intrusions have been proved beyond doubt.
1: भारतीय सेना के लिए जमीन पर हालात तब बदले जब तोलोलिंग पर कब्जा हुआ।
4: कोई नाइट 12-13 को टू राजरिफ ने आर्टिलरी की सपोर्ट के साथ ये ऑपरेशन लॉन्च किया।
5: आकाशवाणी पटना है, अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने संदेश में कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की घोषणा, अगले वर्ष से योग राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नीट यूजी पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न, राज्य के 34 जिलों के 331 केंद्रों पर किया गया परीक्षा का आयोजन। और वैभव सूर्यवंशी के नाम नया विश्व रिकॉर्ड, श्रीलंका ए के खिलाफ एक दिवसीय मुकाबले में 11 गेंदों पर सबसे तेज अर्धशतक लगाया। अब समाचार विस्तार से। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज देश विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। योग दिवस का मुख्य आयोजन आज सुबह पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वयं तारासन, अर्ध चक्रासन, भद्रासन, त्रिकोणासन सहित कई योग मुद्राओं का अभ्यास किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि योग आज दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन माना जाना चाहिए।
6: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित योग कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने लोगों से योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करने की अपील की है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने लोक भवन में आयोजित योग शिविर में भाग लिया और योगाभ्यास किया। इधर राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न स्थानों पर योग दिवस के अवसर पर योग शिविर और योगाभ्यास का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित शिविर में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और रामनाथ ठाकुर, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने यहां योगाभ्यास किया। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से भी योग शिविर कार्यक्रम आयोजित किए गए। पटना उच्च न्यायालय में इस अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि अगले वर्ष से बिहार के स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में योग को शामिल किया जाएगा। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारत की प्राचीन और अमूल्य सांस्कृतिक विरासत है तथा स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है। उन्होंने लोगों से नियमित योगाभ्यास को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से योग को वैश्विक पहचान मिली है। आज दुनिया के अनेक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मुख्यमंत्री से राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने का अनुरोध किया था। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि आधे घंटे का योग कार्यक्रम वैकल्पिक तौर पर पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए।
7: आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध की है कि योग को बिहार के जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उसके पाठ्यक्रम में शामिल करें। आधे घंटे का एक प्रोग्राम होना चाहिए योग का, जिसमें योग ध्यान योग निद्रा कराई जाए, और वो कोई बात ही नहीं है आप करने के लिए। हम इलेक्टिव रखेंगे, आपको करना है करें, ना करना है ना करें। उसके लिए कोई अटेंडेंस बनाने की जरूरत नहीं है, क्लास करने की जरूरत नहीं है। अगर करें तो करें, कोई एग्जाम नहीं लेंगे बस।
5: मुंगेर स्थित बिहार योग विद्यालय के पादुका दर्शन आश्रम में विद्यालय के अध्यक्ष स्वामी कैवल्यानंद महाराज के संचालन में योगाभ्यास किया गया। इसमें योग साधकों, श्रद्धालुओं और आम नागरिकों ने भाग लिया। औरंगाबाद के सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित योग कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कटिहार के फणीश्वर नाथ रेणु ऑडिटोरियम में रेल मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग शिविर में भाग लिया। शिविर का उद्घाटन DRM किरेंद्र नरह ने किया। लखीसराय के बड़ैया प्रखंड अंतर्गत BNM कॉलेज परिसर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त समेत कई वरीय अधिकारी शामिल हुए। भभुआ व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित योग कार्यक्रम में न्यायिक पदाधिकारियों ने योगाभ्यास किया। पटना के इको पार्क में सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय पटना और SSB की 40वीं वाहिनी के संयुक्त तत्वावधान में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अरवल के समाहरणालय पार्क में आयोजित योग कार्यक्रम में जिलाधिकारी अमृता बैंस समेत विभिन्न पदाधिकारियों ने योगाभ्यास किया। भोजपुर जिला मुख्यालय आरा स्थित खेल भवन में आयोजित योग शिविर में विभिन्न खेल संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने योग किया। सुपौल के महात्मा गांधी चिल्ड्रन पार्क, दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर, अररिया के व्यवहार न्यायालय प्रांगण और खेल भवन, बक्सर के रामरेखा घाट समेत सभी जिलों में योग शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के तत्वावधान में आज नीट UG पुनर्परीक्षा का आयोजन किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गयी। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा भारत के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए। प्रदेश के 34 जिलों में 331 केंद्रों पर नीट UG परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो गई। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू हुई और अपराह्न 5:15 बजे समाप्त हुई। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। पटना में कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा भवन के आसपास विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई। इसके साथ ही कई मार्गों पर परीक्षा की समाप्ति तक वन वे ट्रैफिक लागू रहा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की आज पटना में आयोजित बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर निर्वाचन की विधिवत घोषणा की गई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इससे संगठन को नई वैचारिक ऊर्जा मिलेगी। बैठक में उमेश सिंह कुशवाहा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर निर्वाचन को भी औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया। राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अन्य राज्यों में भी जदयू को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वे स्वयं अन्य राज्यों में जाकर पार्टी के विस्तार के लिए कार्य करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
1: राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी के निर्वाचन का अनुमोदन किया गया। इस बैठक में 4 प्रस्ताव पेश किए गए।
0: बैठक में पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। समस्तीपुर के रहने वाले युवा क्रिकेटर खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। वैभव ने श्रीलंका के दाम्बुला में खेले जा रहे त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में आज श्रीलंका ए के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों में अर्धशतक बनाया। इनमें 5 चौका और 5 छक्का शामिल है। वैभव ने 29 गेंदों में 94 रन बनाए। इधर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने वैभव की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत को अगला स्टार मिल गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह खिलाड़ी कई और रिकॉर्ड ध्वस्त करेगा। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल की वापसी हुई है। दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन ने टीम में अपनी जगह बनाए रखी है। सीरीज का पहला मैच 14 जुलाई को एजबेस्टन में खेला जाएगा। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार हो रही हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मानसून की एक ट्रफ रेखा राज्य के जमुई और मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर भागों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश हो सकती है।
2: 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। अररिया, कटिहार एवं किशनगंज जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा उष्ण लहर के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा एवं सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज भी बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर समेत विभिन्न जिलों में लू की स्थिति बनी रही। प्रचंड गर्मी के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों में 30 जून तक शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन प्रातःकालीन सत्र में ही करने का निर्देश दिया है। इधर पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने 8वीं कक्षा तक सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 27 जून तक शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। भोजपुर जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक सभी स्कूलों में 24 जून तक पठन पाठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने अपने आदेश में कहा है कि वर्ग 9 से 12 तक की कक्षाएं सुबह 11 बजे तक ही संचालित की जाएंगी। दरभंगा और जयपुर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा आज से शुरू हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान की राजधानी जयपुर के खातीपुरा में आयोजित समारोह में सप्ताह के 6 दिन चलने वाली इस नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस ट्रेन का नियमित परिचालन कल से शुरू होगा। नई ट्रेन सेवा से मिथिलांचल और उत्तर बिहार के यात्रियों, विशेषकर कामगारों, व्यापारियों और पर्यटकों को राजस्थान आने जाने में अधिक सुविधा मिलेगी। पटना जिले के दानापुर अनुमंडल अंतर्गत शाहपुर दियारा के

0: सम्मान प्राप्त किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने संदेश में कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की घोषणा, अगले वर्ष से योग राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नीट यूजी पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न, राज्य के 34 जिलों के 331 केंद्रों पर किया गया परीक्षा का आयोजन। और वैभव सूर्यवंशी के नाम नया विश्व रिकॉर्ड, श्रीलंका ए के खिलाफ एक दिवसीय मुकाबले में 11 गेंदों पर सबसे तेज अर्धशतक लगाया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
5: क्यों, क्या हुआ है?
4: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
5: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
4: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
7: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
8: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
9: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
8: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
10: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार,
11: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोग

0: रेडियो रिमझिम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेडियो दोस्त सोनू के तरफ से नमस्कार प्रणाम। समय हो चुका है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का, तो ठीक सही समय पे आप सभी के द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से भेजे गए संदेशों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यदि आप भी इस कार्यक्रम में

0: शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपना विचार भेजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28। व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291 और ईमेल आईडी है radiorimjhim@gmail.com। आप संचार के जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से अपना शिकायत, सुझाव या प्रशंसा, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी बातों को रोकते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
1: नमस्कार आदरणीय श्रोता बंधु, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से आप सभी को बारंबार नमस्कार है। रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम आपका संदेश मिला में आप सभी का स्वागत है। साप्ताहिक कार्यक्रम आपका संदेश मिला जिसमें देश विदेश, प्रदेश और अपने जिले के विभिन्न भागों से आपके द्वारा कई सुझाव दिए जाते हैं, कई जानकारियां दी जाती है और रेडियो रिमझिम के बेहतर प्रसारण के लिए लगातार और नियमित सुझाव आते हैं। हम उन तमाम श्रोताओं का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि रेडियो रिमझिम को अच्छा बनाने में आपका निरंतर और बेहतर सहयोग मिलता है। हम प्रसारण करता है अपने तरफ से बेहतर समसामयिक विषयों पर अपनी प्रसारण को जारी रखते हैं, लेकिन आपके द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं हम प्रसारणकर्ता से बहुत ही बेहतर होता है। आदरणीय श्रोता बंधु, मौसम की स्थिति आप सब देख रहे हैं, दिन के समय तापमान इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है कि घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा है। लगता है कि आकाश से आग नीचे के तरफ गिर रहा है। ऐसे परिस्थिति में हमें अपने को, अपने परिवार को, अपने द्वारा संरक्षित जीव जंतु को संरक्षण देना है। रेडियो रिमझिम अपना प्रसारण सुबह 5 बजे से शुरू करता है और रात को 11:10 तक लगातार और नियमित प्रसारित करता है। इसके अलावा जो गूगल के प्ले स्टोर में ऐप है, जो आदरणीय श्रोता बंधु अपने मोबाइल में डाउनलोड किए हैं, उस पर हमारा प्रसारण 24 घंटे चलता है। हम चाहते हैं कि जब भी आप रेडियो खोलें, आपका मन प्रसन्न चित हो जाए। अच्छी अच्छी जानकारियां रेडियो रिमझिम 90.4 के तरफ से आपको प्राप्त हो, यह हमारा लगातार और नियमित प्रयास रहता है। जिस तरह हर दिन एक अलग होता है, हर व्यक्ति के लिए एक नया इतिहास गढ़ने का मौका रहता है, उसी तरह रेडियो रिमझिम प्रत्येक दिन बेहतर से बेहतर कार्यक्रमों का प्रसारण करता है और यह भी ध्यान रखता है कि जो हमें सुन रहे हैं उन्हें बोरियत महसूस नहीं हो। अच्छी अच्छी बातें, अच्छी जानकारियां विभिन्न रिकॉर्डेड कार्यक्रम के माध्यम से हम देते हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम में जब आप अपनी बातों को हम तक पहुंचाते हैं तो हमें संजीवनी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, इसलिए कि केवल एक तरफा संवाद हम नहीं कर रहे हैं। रेडियो रिमझिम हमेशा श्रोताओं से जुड़ा रहता है, समाज के प्रत्येक जाति धर्म लिंग के लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने का प्रयास करता है और इसमें समाज के बेहतरी के लिए कार्य करने का एक उद्देश्य लेकर अपना प्रसारण करता है। सुबह 7 बजे हालचाल, 8 बजे सुबह में राष्ट्रीय समाचार, 8:48 पर सुबह में प्रादेशिक समाचार और दोपहर 2:15 पर राष्ट्रीय समाचार, शाम को 7:30 पर प्रादेशिक समाचार, रात को 8:45 में राष्ट्रीय समाचार और रात को ही 9:05 पर गोपालगंज का हालचाल हम प्रसारित करते हैं और इसके अलावा रात को 11 हिंदी और अंग्रेजी में भी हमारा द्वारा राष्ट्रीय समाचार का प्रसारण किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब भी कोई कमी देखते हैं रेडियो रिमझिम के पास फोन के माध्यम से या संचार के किसी न किसी माध्यम से अपने बातों को हम तक पहुंचाते हैं और हम भी चाहते हैं कि जो रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं सरकार के योजनाओं के बारे में उन्हें भरपूर जानकारी मिले। इसके अलावा न्याय प्रशासन, जिला प्रशासन जो भी कार्य कर रहा है उसकी जानकारी हालचाल के माध्यम से हम देते रहें। आदरणीय श्रोता बंधु, यदि कहीं कोई कमी रह जाती है तो आपके द्वारा जो संदेश आते हैं उससे हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं। चूंकि एक व्यक्ति कितना सोच सकता है, लेकिन आप लोगों के द्वारा जो संदेश आते हैं उससे हम बेहतर बनने का प्रयास करते हैं और एक अच्छा प्रसारणकर्ता के रूप में कार्य करते रहते हैं। हमारे बहुत सारे आदरणीय श्रोता हैं जो गांव देहात में रहते हैं, शहर में भी रहते हैं, वे हमें बताते हैं कि पूरे सप्ताह भर हम लोग बिरहा का इंतजार करते हैं। यदि वह बिरहा अच्छा गायक द्वारा नहीं गाया गया है तो बड़ी ही निराशा हाथ लगती है, लेकिन अब तक रेडियो रिमझिम के माध्यम से प्रत्येक बृहस्पतिवार को शाम को 7 से जो आप बिरहा प्रसारित करते हैं काफी अच्छा लगता है। इस तरह की बातें सुनकर मन में संतोष मिलता है कि कई ऐसे बुद्धिजीवी और अच्छे हमारे श्रोता हैं जिन्हें बिरहा पसंद नहीं है, लेकिन सुनने वालों की संख्या काफी है जो बिरहा को पसंद करते हैं, निर्गुण को पसंद करते हैं। वह कहीं ना कहीं ईश्वर परमेश्वर से जुड़े हुए लोग हैं और सत्य से परिचित कराया जाता है। मेरा मानना है कि जो हमारी सभ्यता, संस्कृति या जो पूर्वजों द्वारा किए गए कार्य हैं, वह आज के डेट से कहीं बेहतर हैं। वह जो भी सोचते थे समाज और परिवार की भलाई के लिए सोचते थे, आज जो है हम एकल परिवार में रहते हैं, पति पत्नी और बच्चे के अलावा हमें बड़ा कम बाहर दिखाई देता है, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे आपके हमारे, वह पूरे समुदाय या समाज के लिए सोचते थे। आज भी सोचने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी संख्या जो है काफी कम है, लेकिन पहले हर परिवार, हर समाज के लोग पूरे समुदाय के विषय में सोचते थे। इसका ताजा उदाहरण हम देखते हैं कि जब भी गांव में जाते हैं तो कई कुएं ऐसे हैं जो सार्वजनिक है, कई तालाब ऐसे हैं जो सार्वजनिक है, कई जगह ऐसे हैं जहां हम लोग छठ पूजा करते हैं सार्वजनिक स्थान पर बने हुए हैं। और इसके अलावा जो बरगद पीपल के वृक्ष हैं वह जो है सबके कल्याण के लिए लगाए गए हैं। तो समाज के प्रत्येक वर्ग और समुदाय के लिए जो बेहतर सोचते हैं उन्हें हम महान आत्मा कहते हैं, महान व्यक्तित्व कहते हैं। यदि हम अपने गांव में, अपने ग्राम पंचायत में ध्यान से देखें तो कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अक्षर ज्ञान कम है, लेकिन उनके किए गए कार्य की सराहना पूर्व में भी हुआ था और आज भी लोग करते हैं। वैसे लोगों को रेडियो रिमझिम परिवार प्रोत्साहित करता है और समाज के बेहतरी के काम करने के लिए उनसे प्रेरणा लेता है। जिस तरह नदी अपने पानी को कभी पीता नहीं है, वृक्ष अपने फल को कभी खाता नहीं है, उसी तरह समाज के जो अच्छे लोग हैं वह समाज के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व निछावर करते हैं। एक नया आयाम, एक नया इतिहास और एक नई इबादत लिखते हैं। वैसे लोगों को हमारी पूरी टीम जो है नमन करती है। और गुमनाम अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों को समाज के सामने हम लाना चाहते हैं, उनके कृति को समाज में दिखाना चाहते हैं। अभी कुछ समय पूर्व इधर दियर क्षेत्र में हम गए थे तो उन व्यक्ति का नाम याद नहीं है, लेकिन बांध के किनारे जो है वह लगातार वृक्ष लगाते हैं। यह उन्हें कोई लोभ और लालच से नहीं लगाते हैं, वह जो है लोगों के जन कल्याण के लिए बांध के किनारे वृक्ष लगाते जाते हैं, ताकि आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो मानव जाति है, उसे ऑक्सीजन की कमी ना हो, जलावन की कमी ना हो, फल की कमी ना हो। तो ऐसे लोगों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम यह पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित होता है, समाज के बेहतरी के लिए कार्य करता है। रेडियो एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम पूरे समुदाय को, समाज को जोड़ते हैं और इसके माध्यम से हम अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाते हैं। समाज के लिए जो अच्छा करता है वह सदैव अमर हो जाता है, उसका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जिला स्तरीय या राष्ट्र स्तरीय या प्रांतीय स्तरीय व्यक्तित्व हैं, लेकिन छोटा छोटा अच्छा काम करने वाले जो है एक न एक दिन बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मालिक बन जाते हैं। अभी हाल में ही हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने कुछ लोगों को पद्मश्री, भारत रत्न, कई तरह के पुरस्कार दिए। जब उनके जीवनी के बारे में हम पढ़ते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि अच्छे व्यक्तित्व के मालिक को अच्छे कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। कुछ ऐसे समाज में शिक्षक हैं जो उसे नौकरी नहीं समझ के सेवा समझते हैं, ऐसे शिक्षक को जब शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रांतीय या राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिलता है तो पूरे समाज में एक प्रेरणा मिलता है कि हम अच्छा काम करने वाले लोग चाहे कहीं भी हों, एक न एक दिन पूरे समाज के सामने हमारा राष्ट्र जो है हमें पुरस्कृत करता है। गांव में दहिने बाएं या शहर में दहिने बाएं करके बहुत सारा धन कमा के और बहुत सारी संपत्ति बना के हम कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह संपत्ति हमारे मरने के बाद यदि बच्चे अच्छे हुए तो उसे आगे बढ़ाएंगे, नहीं अच्छे हुए तो उसका जो है ईंट ईंट बेच कर पी जाएंगे, खा जाएंगे। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे वह कहते थे कि यदि बच्चे अच्छे हैं तो उनके लिए धन क्या रखना, और यदि बच्चे बुरे हैं तो उनके लिए धन काहे को कमाना। केवल अपना फोकस और ध्यान जो है व्यक्तित्व और शिक्षा पर देना चाहिए, और जिस समाज में अच्छे व्यक्तित्व और बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं वह समाज जो है बड़ा ही बेहतर करता है। आदरणीय श्रोता बंधु, आपका संदेश मिला एक ऐसा मंच है जिस पर हम भी अपनी बातों को रखते हैं सप्ताह में एक दिन, और आपके बातों को भी सुनते हैं, और दोनों का सम्मिश्रण करके इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। और हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम को सुनते हैं लेकिन अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो इस मंच से हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि यदि आपके मन में कोई बात है प्रसारण संबंधी, कार्यक्रम संबंधी, तो जरूर हमें किसी न किसी माध्यम से बताएं। और हाँ, एक चीज और बताते चलें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर बच्चे या बच्ची गुम हो गए हैं, खो गए हैं, वह रेडियो रिमझिम में आते हैं, कहते हैं इसका प्रचार कीजिए। तो ऐसे लोगों से हम निवेदन करेंगे कि जिस परिवार में बच्चे या एडल्ट बड़े लोग भी खो गए या मानसिक रोगी हैं, तो रेडियो रिमझिम में प्रचार से पहले अपने नज़दीकी थाना में एक सनहा जरूर दर्ज कराएं और उस सनहा का कॉपी लेकर आने से हमें प्रसारण करने में बड़ी ही सहूलियत होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि भारत सरकार के दिशा निर्देश में रेडियो रिमझिम का प्रसारण होता है और इसकी पूरी निगरानी जो है भारत सरकार की संस्था आईबी जो है करते रहती है। तो जहां नियम और कायदे बने हैं उसका अनुपालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है और हम लोग भी अनुपालन करते हैं। तो इस तरह की बातें जहां हो तो अपने को पूरी तरह से कागज पत्र से दुरुस्त करके रेडियो रिमझिम में आए, आपका स्वागत है। मेरे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर सोनू जी, जो बहुत सारा संदेश लिए हैं और वह पहला संदेश पढ़ रहे हैं। मैं भी पूरी ईमानदारी से उन प्रश्नों का जवाब दूंगा। धन्यवाद
0: जी सर। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश पहुँचे हुए हैं। सबसे पहला संदेश पत्र के माध्यम से पहुंचा हुआ है। लिखा गया है, रेडियो रिमझिम के आदरणीय प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी सहित सभी आरजे को मेरा नमस्कार। मेरा कहना है कि बहुत दिन पहले अपने पत्र में सुझाव दिया था कि उदना चरित्र की कहानी श्री हृदयानंद जी व्यास के आवाज में सुनाया जाए। इस संदर्भ में आपने भी प्रतिक्रिया दिया था कि मैं अपनी टीम के साथ इसके संदर्भ में चर्चा करूंगा और संभवतः इस कहानी का प्रसारण करने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी तक इस कहानी का प्रसारण का शुरुआत नहीं किया गया। मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि इसके संदर्भ में विचार किया जाए और इस उदना चरित्र की कहानी श्री हृदयानंद जी व्यास के आवाज में प्रसारण किया जाए। बाकी सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। एक खास बात यह भी हुआ है कि दिन में योर वॉइस योर चॉइस कार्यक्रम में फोन के माध्यम से भी अपने पसंद के गाने सुनने का मौका दिया गया है। यह बहुत अच्छा बदलाव हुआ है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं रामाजी प्रसाद, राजन मार्केट थावे से, नमस्कार। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
1: आदरणीय रामाजी प्रसाद जी और थावे बाजार के सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपके माध्यम से हमें भी बहुत सारी बातें जानकारी होती है जमीनी स्तर की। चूंकि एक प्रसारणकर्ता होने के नाते हम भी कभी कभार बहुत सारे दबाव में आ जाते हैं, काम के बोझ के तले दब जाते हैं, लेकिन जो जिम्मेवारी मिली हुई है उसका सही अनुपालन हो यह प्रयास हमेशा करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो बच्चे हमारे यहाँ कार्यरत हैं वे बताते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रमों में आपका संदेश विचार आते रहता है और उसका प्रसारण वे करते हैं। आपने सही कहा, श्री हृदयानंद जी के आवाज़ में हम प्रसारण करें। जो हमारे यहाँ के युवा टीम है उनको हमने बताया था कि इस तरह का कोई कथा कहानी है तो उसको सर्च कीजिए, बताइए। लेकिन लगातार हम भी रेडियो रिमझिम के कार्यों से बाहर रहे, इस पर हमने आगे पूछताछ नहीं किया। तो हम देखते हैं कि वे लोग खोजे हैं कि नहीं। उदना चरित्र की कहानी श्री हृदयानंद जी के आवाज़ में जो गाया गया है वह कैसा है, उसका ट्रायल हम लोग अपने स्तर से पहले करेंगे। यदि वह प्रसारण योग्य कथा होगा जो सर्वमान्य हो तो उसका प्रसारण करने में हमें कहीं हिचक नहीं है, हम प्रयास करेंगे। दूसरा, आपने धन्यवाद दिया योर वॉइस योर चॉइस कार्यक्रम में फोन के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, लोग फरमाइश करते हैं और भले ही दो अढ़ाई घंटा का कार्यक्रम है जो दोपहर 12 से 4 बजे तक प्रसारित होता है और आपको पता ही है कि उसमें 30 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं, 15 मिनट समाचार चलता है और 15 मिनट गीत चलता है, फिर 30 मिनट के बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। आप हमारे अत्यंत आदरणीय श्रोताओं में से एक हैं जो प्रत्येक कार्यक्रमों से जुड़ते हैं। मेरा यह मानना है कि जिस काम में लोग जुड़ता है, अपने बातों को रखता है और रेडियो के प्रति जो प्रेम करता है, उसकी बात जो है एकदम सही और सत्य होता है। क्योंकि हम जिस काम से जुड़े हैं, जिसे सुनते हैं, जिनके बातों को हम मानते हैं, वहीं पर हम अपनी सही प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जिस तरह एक विद्यार्थी जो है जिस पुस्तक का अध्ययन करता है और उस पुस्तक से यदि कहीं से कोई प्रश्न आता है तो उसका सही और सटीक उत्तर लिख देता है, उसी तरह जो हमारे आदरणीय श्रोता लगातार नियमित रेडियो को सुनते हैं, वही रेडियो के अच्छाइयों को, कमियों को, विशेषताओं को बता सकते हैं। झटका से सुनने वाला व्यक्ति जो है नहीं बता पाता है। कई ऐसे श्रोता हैं कि केवल वह समाचार ही सुनेंगे, कई ऐसे श्रोता हैं जो सुबह शाम नियमित भजन को सुनेंगे, कई ऐसे श्रोता हैं कि जब बिरहा का टाइम होगा तो बिरहा के लिए रेडियो खोलेंगे। तो सबकी अपनी पसंद है और सबकी पसंद को रेडियो रिमझिम परिवार अपनी पसंद बनाता है और जन जन तक अपने बातों को पहुंचाता है। आपके प्रत्येक बातों को पूरे ध्यान से हम सुनते हैं, हमारी टीम उसे लिखती है और सर्चिंग में लग जाती है। जो ही हमें श्री हृदयानंद जी के द्वारा गाया गया या उनकी आवाज में उदना चरित्र की कहानी का पता चलेगा, हम एक लोगों के माध्यम से, एक विज्ञापन के माध्यम से इसका प्रसारण करेंगे और फिर समय निश्चित करके इस कहानी को सुनाएंगे। क्योंकि मुझे भी व्यक्तिगत रूप से कहानी कथा जो है उसमें बहुत रुचि रहती है। बचपन में जब हम लोग छोटे छोटे थे, आज से 50-55 साल पहले, तो समझिए कि परिवार जो है संयुक्त हुआ करता था, जिसमें दादा, दादी, चाचा, चाची, बहुत बड़ा परिवार था और सभी परिवार का यह मकसद होता था। आज के तरह बिजली का लाइन नहीं था, किरासन तेल जो है एक मात्रा में परिवार को मिलता था, तो सबको यह प्रयास करते थे कि साँझ होते होते हम लोग भोजन कर ले, थोड़ा बहुत पढ़ ले और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठे, उनके जीवन के अनुभव को सुने और रात को 8-8:30 बजते बजते पूरे गांव में या पूरे परिवार के लोग सो जाते थे और सूरज की लालिमा के साथ जो है पूरा परिवार जागता था। मेरा ही नहीं, मेरे पूरे गांव के सभी सदस्य को हमने देखा है। तो समय के साथ तो बहुत बदलाव आ गया, बिजली आ गया, मोबाइल आ गया, सड़क बन गया, तो जीवन शैली में भी परिवर्तन आ गया और जब जीवन शैली में परिवर्तन आता है तो उसका सीधा प्रभाव समाज और परिवार पर पड़ता है। जो चीजें हम सुनते थे आज टीवी और मोबाइल के माध्यम से देखते हैं। लेकिन नॉर्वे एक देश है, वहाँ के एक बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा है कि जो चीज हम देखते हैं वह कुछ समय तक हमें याद रहता है, लेकिन जो बात हम ध्यान से सुनते हैं वह लंबे समय तक मस्तिष्क में बना रहता है। तो सुनी गई बातें आदमी भूल नहीं पाता है और उसका प्रभाव जो है जीवन के व्यक्तित्व पर पड़ता है। बहुत अच्छे जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, बाल मनोविशेषज्ञ, वह कहते हैं कि परिवार का 50% प्रभाव जो है बच्चे के जीवन में पड़ता है, 25% वह जहां पढ़ता है, लिखता है, वहां का पड़ता है और 25% जिस समाज में रहता है उसका प्रभाव पड़ता है और 100% प्रभाव से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। यह जो है बाल मनोवैज्ञानिक कहते हैं। तो जीवन में मेरा भी मानना है कि जो बाल मनोवैज्ञानिक कहते हैं वह पूरी तरह से सत्य है। जीवन में समाज का बहुत बड़ा प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है और जिस तरह का समाज होता है उसी के अनुरूप जो है बच्चे अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। आदरणीय रामा जी प्रसाद जी राजन मार्केट थावे से हम आपको नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, आपका नियमित और लगातार संदेश आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
0: जी। सर अगला संदेश पहुंचा हुआ है श्रीकांत पकड़ी फुलवरिया से निशिकांत लाल जी का। रेडियो रिमझिम परिवार को मेरा नमस्कार। रेडियो पर प्रसारित बिरहा निर्गुण हमें काफी अच्छा लगता है। मेरा आग्रह है कि सोटी बिरजा भार का आगे का भाग सुनाया जाए। तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
1: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके परिवार को, आपके ग्राम और ग्राम पंचायत के सभी लोगों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा लगा लाल साहेब आपका संदेश। सोठी प्रिया भार का प्रसारण का जो बातें आपने कही तो फूल मोहम्मद जी द्वारा गाया गया सोठी बिरजाभार की कहानी है जो हमारे पास लगभग 20 एपिसोड है जिसका प्रसारण हम कर दिए हैं या कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे के भाग का कहानी हमें मिल नहीं रहा है। चूंकि सोठी बिरजाभार सामाजिक बदलाव का, सामाजिक पहलू का एक आईना है और यह कहानी जो है व्यक्ति को चरित्रवान बनने की प्रेरणा देता है। जीवन में धन आता है जाता है, लेकिन यदि व्यक्ति का चरित्र मजबूत है तो इसका असर बहुत कम ही उसके जीवन पर पड़ता है। और सोठी बिरजाभार की कहानियाँ कई बार रेडियो रिमझिम 90.4 के द्वारा प्रसारित किया गया है और आप जैसे कई श्रोता हमसे आग्रह किए थे कि 20 एपिसोड के बाद आगे बढ़िए सर, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। जो ही मिलेगा हम इसका आगे का प्रसारण करेंगे। दूसरी तरफ आपने निर्गुण के संबंध में कहा तो आप देखते होंगे कि श्री भरत शर्मा जी का, श्री विश्वनाथ यादव जी का या बहुत सारे गायक हैं जो निर्गुण बहुत ही अच्छे तरीके से गाए हैं, उनका प्रसारण जो है समय समय से हम करते रहते हैं। निर्गुण में भी बदलाव करते हैं और हम चाहते हैं कि जो हम प्रसारित करें वह अधिक से अधिक लोग सुने, उनके मन पसंद हो। उनमें से आप हैं, आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिला मुख्यालय से इतना दूर दराज रहते हुए भी आप आज के दौर में रेडियो को सुन रहे हैं, इसके लिए हम अपनी पूरी टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अन्य कार्यक्रमों के बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
0: जी। सर अगला संदेश पहुंचा हुआ है अमेठी राजू कुमार। सर नमस्कार, आपका संदेश मिला कार्यक्रम 13 जून 2026 को प्रसारित नहीं हुआ, काफी निराशा हुई। साप्ताहिक कार्यक्रम नियमित चलाया जाए, ऑनलाइन कार्यक्रम नियमित चल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। तो सर इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
1: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। रेडियो रिमझिम से प्रेम करने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो हम लोगों पर पूरी तरह से निगरानी रखते हैं और यदि कहीं चूक होता है तो उसकी सूचना बेहिचक हमें देते हैं। आपकी बात सही है। 14 जून 2026 को जो कार्यक्रम नहीं चला, इसका कारण जो है हम अपने व्यक्तिगत कारणों से अनुपस्थित रहे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आपको पता ही है कि आप जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसे भी साथ लेकर चलना होता है। कभी कभार किसी के यहाँ शादी विवाह, कोई यज्ञ प्रोग्राम, उन सब चीज़ों में भी हमें जाना आना पड़ता है, तो रेयर केस में, अपवाद में हम अनुपस्थित इस कार्यक्रम से होते हैं। हमें भी लगता है कि सप्ताह में एक दिन अपने अत्यंत आदरणीय और प्रिय श्रोताओं के साथ बात करने का एक अवसर मिलता है, एक मौका मिलता है, जिसे हम गंवाना नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रकृत का नियम है, ईश्वर का नियम है कि जो चीज़ को आप चाहते हैं सदैव आपके पास नहीं रहता है और कभी न कभी छूट जाता है। इसलिए आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, हम बहुत रेयर केस में अब्सेंट होते हैं। हमेशा कोशिश करते हैं कि इस कार्यक्रम का नियमित और लगातार प्रसारण हो। दूसरी बात आपने रखा कि ऑनलाइन कार्यक्रम नियमित चल रहा है, इसके लिए जो आपने धन्यवाद दिया, हम अपने पूरे श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं कि ऑनलाइन कार्यक्रम हो या रिकॉर्डेड कार्यक्रम हो, जब भी हम सिम को ऑन करते हैं, चालू करते हैं, बहुत सारे संख्या में हमारे प्रिय श्रोता जुड़ने लगते हैं। हाँ, आज के दौर में गीत संगीत सुनने के कई माध्यम हैं, लेकिन जो रेडियो रिमझिम से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वह जो है अपने बातों को, अपने पसंद को इन सब कार्यक्रमों में रखते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। उम्र चाहे कोई भी हो, व्यक्ति को हमेशा ऊर्जा और उत्साह से रहना चाहिए। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया है कि यदि जिंदगी में तकलीफ खोजना शुरू कीजिएगा तो इस संसार में कोई भी नहीं है जो तकलीफ और पीड़ा से न गुजरता हो, लेकिन मुकद्दर का सिकंदर वही है जो तमाम तकलीफों, पीड़ा और दर्द से गुजरने के बाद भी समाज के सामने मुस्कुराते रहे, वह जो है मुकद्दर का सिकंदर होता है। और मेरा मानना है कि व्यक्ति को हर उलझन से निकलते हुए अपने को बेहतर साबित करने का प्रयास करना चाहिए। उम्र एक संख्या है जिसके तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई भी उम्र में यदि आपके अंदर उत्साह है, खुशी है, तो आप हमेशा जो है युवा हैं। व्यक्ति बूढ़ा कब होता है? जब उसके बच्चे नालायक हो जाते हैं तो वह व्यक्ति बूढ़ा, बीमार और रोगी बन जाता है। और जिसके बच्चे उत्साहित रहते हैं, अपने बड़ों का आदर और सम्मान करना जानते हैं, उनके परिवार के बुजुर्ग लोग हमेशा युवा बने रहते हैं। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। केस मुकदमा लड़ाई झगड़ा से कोई पीड़ा से नहीं गुजरा। जब भी पीड़ा से गुजरा तो वह अपने के द्वारा दिए गए दर्द से कराह जाता है। लाठी से चोट कम लगता है, लेकिन बातों का चोट जो है बहुत बड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
0: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है फूल कुमारी देवी बघोज से। रेडियो रिमझिम को हमारा पूरा परिवार सुनता है, नए पुराने गीत सुनाए जाते हैं, समय समय पर अच्छे अच्छे कार्यक्रम का प्रसारण होता है, हाल चाल से पूरे जिले का सूचना मिलता है, इसके लिए पूरे टीम को धन्यवाद। तो सर, इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
1: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे क्षेत्रवासियों को, आपके परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि जो रेडियो रिमझिम को सुने वह खुश रहे, आनंदित रहे, उत्साहित रहे। जिंदगी में हम कोई भी काम करें, छोटा या बड़ा या बहुत बड़ा, लेकिन यदि आनंद और उत्साह की कमी रह जाती है तो वह काम जो है सफल नहीं होता है। हमें आज भी याद है कि आज से 25 साल पहले चंवर में शीशम का पेड़ जो है आधी से गिर गया था, और उस पेड़ को जो हमारे लकड़हारा भाई हैं वह जो है कई टुकड़ों में काटे थे। लेकिन समस्या 25 साल पहले यह था कि चंवर में गिरा हुआ शीशम का लकड़ी का जो गुल्ला बनता है या छोटा छोटा भाग बनता है वह टाली पर कैसे लादा जाए। चूंकि 25 साल पहले मैं भी युवा था तो हम भी प्रयास किए, तो हमने देखा कि उसमें 2-3 व्यक्ति ऐसे थे जो बांस का बल्ला यानी लाठी लेकर आए और वह मुंह से एक प्रकार का आवाज निकालते थे, आनंद से भरा, उत्साह से भरा, हैया हैया। आज भी वह आवाज हमें याद है। और वह 2-3 व्यक्ति मिलकर जितना भी शीशम का टुकड़ा था वह जो है टाली के ऊपर लाद दिए। उस समय हमने महसूस किया था कि गीत के माध्यम से, उत्साह के माध्यम से और खुशी के माध्यम से कितना ही बड़ा काम हो व्यक्ति कर सकता है। लेकिन रोता हुआ व्यक्ति, निराशावादी व्यक्ति, सभी साधन से संपन्न रहते हुए भी वह प्रगति नहीं कर पाता है, उसका एकमात्र कारण है कि उसके अंदर उत्साह नहीं है, उसके अंदर दूसरे को देख के ईर्ष्या है, उसके अंदर खुशी नहीं है, दूसरे को खुश देखकर वह दुखी रहता है। ऐसे लोग न परिवार के लिए न समाज के लिए बेहतर होते हैं। जब गांव में किसी का घर बनता है और यदि पड़ोस के लोग सहयोग देने लगे तो ईश्वर भगवान जो है उसका भी घर यदि एक तल्ला है तो 2 बनवा देंगे। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति अड़चन लगाने लगता है कि हमारे हेजी ले बाका है कि नेव तू हेजी ले खुनवा दे लो, हमारे हेने से रास्ता बाका है तू टेढ़ को दे लो, जब वह बनाने वाले व्यक्ति को परेशान करते हैं तो हम लोग के ऊपर भी बैठा एक मालिक है जो देख रहा है कि अच्छे काम करने वाले को आप परेशान कर रहे हैं, तो जिस दिन आप अच्छा भी कीजिएगा वह सफल नहीं होगा। तो जीवन का मूल मंत्र है कि दूसरे के खुशी से यदि आप आनंदित होते हैं, दूसरे के आगे बढ़ने से आपके अंदर उत्साह भरता है तो आप भी आगे बढ़ जाइएगा, और यदि दूसरे के कामों से आपके अंदर जलन होता है कि उसका बेटा जो है इतना पढ़ लिया, उसका घर बन गया, उसका दुकान खूब चल रहा है, तो जिस तरह गोहरा का आग भीतरे भीतर जलता है और राख हो जाता है, उसी तरह ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है अपने आप को खत्म कर देते हैं। यह जो है बातें न किसी किताब में लिखी हुई मिलेगी, यह जो है जिंदगी के अनुभव के आधार पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है आशा रावत के टोला देवापुर से। नीतीश सिंह, रेडियो रिमझिम को हमारे गांव टोला के लोग बहुत सुनते हैं। सही समय, सही संदेश, सही मनोरंजन, इसके लिए धन्यवाद। और मौसम लगातार खराब हो रहा है, इसके संदर्भ में भी जानकारी दी जाए, तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे। साथ ही देखे तो मेरे पास अभी कई संदेश है, लेकिन समय का इशारा है कि इस कार्यक्रम को समापन करना चाहिए, तो प्रतिक्रिया देते हुए इस कार्यक्रम को समापन करें और विदा ले।
1: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे टोला वासियों को, ग्राम वासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बड़ा अच्छा लगा, कम शब्दों में आपने अपनी पूरी बात रेडियो रिमझिम तक पहुंचाई। हमें याद है आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत एक टीम जो सर्वे कर रही है आपके गांव में गई थी, जिसकी सूचना आपने दिया था और हमने बताया था यह सर्वे टीम जो है लगातार 3 महीने तक रेडियो रिमझिम के 15 किलोमीटर के रेडियस में सर्वे कर रही है, लोगों से पूछ रही है कि सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत आप एपिसोड के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से सुनते हैं कि नहीं। और आपके टोला और गांव के लोगों ने बताया कि हम सुनते हैं और पूरा विस्तार से सर्वे टीम को बताया था, जिसकी सूचना आपने दी थी, इसके लिए हम प्रथम बार आपको धन्यवाद दे रहे हैं। दूसरी बात आपने रखा कि आप जो है सही समय पर सही कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं, तो यह सब आप लोगों के सुझाव के बल पर ही हम कर पाते हैं। न मेरे पास इतना बुद्धि है, न विवेक है, हम जिसके लिए काम करते हैं उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं, उनका सुझाव लेते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, डाटा बनाते हैं। हमारे साथ युवाओं की टीम है, मेरा अनुभव है, उनका ऊर्जा है और उसी आधार पर हम कार्यक्रम का संरचना करते हैं और आपके सामने लाते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात आपने रखा कि जो मौसम बदल रहा है इसका मुख्य कारण क्या है, तो मेरे समझ से मानव के गलतियों का फल मानव को ही मिलता है। जिस तरह पहाड़ों की घाटी में जब हम एक बार चिल्लाएंगे तो वह आवाज जो है लौट कर फिर चिल्लाने वाले के पास आती है। दूसरा, जो महान वैज्ञानिक थे आइजक न्यूटन, जो बहुत बड़े भौतिक शास्त्री थे, जो हम लोग 6वीं और 7वीं कक्षाओं में पढ़ा है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अर्थात यदि हम दीवार पर एक मुक्का मारेंगे तो हमारे हाथ में चोट लगेगा, यह प्रतिक्रिया है। ठीक उसी तरह पर्यावरण संबंधी जो समस्या है वह जो है मानवीय कृत का फल है। आज जब 40 डिग्री तक तापमान चला गया है, हम लोग धूप में बिलबिला रहे हैं, मन नहीं करता है कि 8 बजे 9 बजे के बाद घर से बाहर निकले, विशेष करके बच्चे और बुजुर्ग तो बिलबिला जाते हैं, इसलिए क्योंकि लगातार वृक्षों का जो काटन हुआ, नदी में जो है पानी जो है लगातार कम हो रहा है, यह सब हम लोग द्वारा कचरा डालना, गंदा पानी छोड़ना, नली और नाला का पानी ले जाके नहर में मोड़ देना, नदी में मोड़ देना, जिसका प्रतिक्रिया यह है कि जो छोटे छोटे जल स्रोत है अपने जिले की, वह जो है समाप्ति के तरफ है। आपको याद है सांसा मूसा मिल फैक्ट्री के बगल से नदी निकलता था, जिसे हम लोग लक्ष्मण बाड़ नदी कहते थे, वह जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हम लोगों ने बचपन में देखा है कि सांसा मूसा चीनी फैक्ट्री के पीछे गर्मा धान जो है बोया जाता था, यानी गर्मी के दिन में उसके पानी से बंगाल से धान का बीज लाकर और गर्मा धान बोया जाता था और बैसाख और जेठ में उस धान को काटा जाता था। जो सांसा मूसा के अगल बगल के लोग होंगे, जो नदी के किनारे के लोग होंगे, उन्हें याद होगा। आज जो है उस नदी में जले नहीं है, पानी नहीं है, यह जो है हम लोगों का कहीं ना कहीं से दोष है। तो जो मौसम में बदलाव हुआ है, यदि हम मानव जाति इन गलतियों का सुधारना शुरू करेंगे तो पर्यावरण अनुकूल हो जाएगा। आपको याद है जब कोरोना आया था, सब लोग हम लोग घरों में बंद थे, उस साल जो है अच्छा फसल भी हुआ, नदी में भी पानी आया और अच्छी बारिश भी हुई। तो कहीं ना कहीं से पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक होना है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, प्रत्येक व्यक्ति को वृक्ष लगाना है, नदी और जल स्रोतों का सफाई रखना है। हर गांव में जो कुआं होता था वह जो है हमारे भू जल स्तर को रिचार्ज करता था। कैसे हम लोग मोबाइल 28 दिन के बाद रिचार्ज करते हैं, तो कुआं जो है वह जो है जल स्तर को रिचार्ज करता था। हम लोग का लोभ और लालच इतना बढ़ गया कि हम जो है कुआं को भरवा दिए, जमीन यानी दुआर को चौड़ा कर दिए, जमीन महंगा होते गया, कुआं को हम लोग खाते गए। तो इसका परिणाम तो पूरे पर्यावरण पर, पूरे समिष्टि पर पड़ता है। तो हम लोग जब इसमें सुधार करेंगे, पर्यावरण भी ठीक हो जाएगा, मानव जाति भी जीवित रहेगा। यदि लालच कम नहीं हुआ तो उसका एक ही संदेश है कि केवल विनाश होना है। तापमान और बढ़ेगा, ग्लेशियर जो है पिघलेंगे, समुद्री जल स्तर बढ़ेगा और आने वाला भविष्य जो है हमारा खतरनाक हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक मानव जाति को यह संकल्प लेना होगा कि हम जल स्रोतों को साफ करेंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे और जो हरा भरा वृक्ष है उसे हम तकलीफ नहीं देंगे, काटेंगे नहीं। इसी के साथ अब हम आप सबों से जाने की इजाजत चाहते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
0: तो श्रोताओं, ये रहा आज का संदेश मिला कार्यक्रम। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं तो आप भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28, तथा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291, और ईमेल आईडी है radiorimjhim@gmail.com। आप जिस माध्यम से अपने शिकायत, सुझाव या प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं उस माध्यम का उपयोग करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें भी दीजिए जाने की इजाजत। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिनताई और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
4: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता,
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554 94 53
2: और 90 97 61 60 02।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, आरके मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
8: सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
8: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
11: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
10: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
11: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
12: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
13: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
12: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
13: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
14: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
15: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
16: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
14: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: चरक के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
1: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
0: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
1: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
3: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
3: योग केवल

0: शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देशभर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
3: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, सबके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमरीका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमरीका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
10: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
11: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
10: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
11: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
10: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
10: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
11: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
12: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
13: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
10: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
11: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
11: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
11: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
14: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
15: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
14: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
15: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
16: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
17: क्यों, क्या हुआ है?
16: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
17: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
16: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
17: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
18: ठक ठक।
16: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
18: अच्छा मिला ही नहीं।
16: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
17: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
16: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
17: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
19: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, नीट परीक्षा का हुआ सफल आयोजन, 312 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले पर शुरू हो गई प्रशासनिक कार्रवाई। आरा में हुए एनकाउंटर के विरोध में गोपालगंज में भी निकाला गया कैंडल मार्च। नाबालिग के साथ गैंग रेप से इलाके में हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। और पशु तस्कर पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ दर्ज। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों के बीच परीक्षा जिले के सभी 7 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न करा ली गई। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश प्रक्रिया, जांच व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक इंतजाम किए गए थे। जिला प्रशासन के द्वारा परीक्षा समाप्ति के बाद सेंटर टू सेंटर उपस्थिति रिपोर्ट भी तैयार की गई। इसके अनुसार जिले के सभी 7 परीक्षा केंद्रों पर कुल 3,906 अभ्यर्थियों का पंजीकरण हुआ था, जिसमें से 3,594 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 312 अभ्यर्थी अनुपस्थित बताए जा रहे हैं। आरा में हुए भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर पूरे बिहार में नाराजगी जोर शोर से चल रही है। लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर बताते हुए प्रशासन और सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुहिम चल रहा है। लोगों की नाराजगी सरकार और प्रशासन के विरुद्ध स्पष्ट देखी जा रही है। भरत भूषण तिवारी का जिस तरीके से एनकाउंटर से पहले का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, वह पुलिस प्रशासन पर कई तरीके के सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। भरत भूषण तिवारी का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। बताया जा रहा है कि भरत भूषण तिवारी वहां के स्थानीय गरीब लोगों के विरुद्ध सरकार और प्रशासन से उनकी समस्याओं को लेकर आए दिन जूझते रहते थे। इसको लेकर वे स्थानीय प्रशासन के आंखों की किरकिरी बन गए थे। इसी बीच भरत भूषण तिवारी ने एक अवैध रूप से पिस्टल खरीद लिया और पिस्टल पुलिस पर लहराते हुए उनका वीडियो आ गया। वीडियो आने के बाद अब पुलिस ने दूसरे दिन ही उनका इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर से पहले भरत भूषण तिवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वायरल हुआ, वह पुलिस को कटघरे में खड़ा करता है। भरत भूषण तिवारी ने अपनी पिस्टल फेंक कर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बावजूद भी उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके विरोध में आज गोपालगंज में भी शहर के पोस्ट ऑफिस चौक से थाना चौक तक विरोध प्रदर्शन किया गया। रविवार की शाम को भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और कैंडल मार्च निकालकर दोषी पुलिस कर्मियों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। हालांकि सरकार ने उसमें दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया है, परंतु लोगों का गुस्सा इससे कम नहीं हो रहा है। लोग पुलिस कर्मियों को जेल डालने और उन्हें फांसी देने की मांग कर रहे हैं। गोपालगंज में भी भारी विरोध हुआ और लोग कैंडल मार्च निकालकर ऐसे फर्जी एनकाउंटर के विरुद्ध अपना विरोध जता रहे थे। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के नेतृत्व में गोपालगंज पुलिस लगातार संगठित एवं आर्थिक अपराधों के विरुद्ध अभियान चला रही है। इसी कड़ी में कटिया थाना क्षेत्र में एक मामले में विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आया है, जिसमें अभियुक्त परशुराम कुमार उर्फ परशुराम यादव, पिता भागीरथी यादव, साकिन महंथवा, थाना कटिया, जिला गोपालगंज के विरुद्ध पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अनुसंधान किया है। इनके कई काले कमाई से खरीदे गए अवैध संपत्ति को पुलिस ने चिन्हित किया है और अब इन पर आर्थिक अपराध इकाई द्वारा केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसंधान में पता चला है कि अभियुक्त द्वारा लोगों के विदेश भेजने के नाम पर पासपोर्ट, वीजा एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने का प्रलोभन देकर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की जाती थी। इसके माध्यम से भारी आर्थिक लाभ अर्जित किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि अभियुक्त लंबे समय से आर्थिक अपराधों में संलग्न रहा है। इसके विरुद्ध कई थानों में धोखाधड़ी, जालसाजी, कुटरचना एवं फर्जी दस्तावेजों के मामले भी दर्ज हैं। कुचायकोट थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। इस घटना में 4 युवकों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया है। 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस के तरफ से इसमें आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस अभी एक आरोपी को हिरासत में लेकर इस पूरे मामले की गंभीरता से अनुसंधान कर रही है। इधर बेटी की शादी तय कर अपने घर लौट रहे एक पिता की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना के बाद परिवार और पूरे इलाके में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि बेटी के शादी की खुशियां मातम में बदल गई। मृतक कुचायकोट थाना क्षेत्र के बंजरिया गांव के 45 वर्षीय पशुपतिनाथ तिवारी थे। घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि पशुपतिनाथ तिवारी भोरे थाना क्षेत्र के जिगना गांव में बेटी की शादी तय करने गए थे। वहां से शादी तय कर वापस लौट रहे थे। इसी बीच कटिया थाना क्षेत्र के इंदरवा पुल पर अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार ठोकर मार दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर पशु तस्करों पर भी पुलिस अब एक अलग कार्रवाई शुरू कर चुकी है। बताया जा रहा है कि अंतर्राज्यीय पशु तस्कर के कथित सरगना अरमान खान उर्फ हसमुद्दीन खान के खिलाफ पुलिस ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच और कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध इकाई को प्रस्ताव भेजा है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2016 से 2025 के दौरान अवैध कमाई से लगभग 3,40,00,000 रुपए की संपत्ति इसके द्वारा अर्जित किया गया है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया संपत्ति अपराध जनित आय से जुड़ी हुई प्रतीत हो रही है। पुलिस अधीक्षक ने सख्त संदेश दिया है कि अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस एक अलग से अभियान चला रही है। इसी के तहत अब ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज सभी थानों पर चौकीदारी परेड का भी आयोजन किया गया, जिसमें चौकीदारों को उनके अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय और सतर्क रहकर संदिग्ध गतिविधियों, असामाजिक तत्वों और जेल से छूटे हुए पेशेवर अपराधियों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया। कटिहार थाना की पुलिस ने 149 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दो मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों में जनार्दन तिवारी पिता कलेश्वर तिवारी, जो खजूरिया भोरे का निवासी है, और दूसरा कपूर चंद पिता प्रभुनाथ कुशवाहा, यह नमनपुर थाना कसिया का रहने वाला बताया जा रहा है। आज जिला गंगा सुरक्षा समिति के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नगर परिषद गोपालगंज के द्वारा अम्बेडकर भवन गोपालगंज में योगा दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर योग गुरुओं के द्वारा उपस्थित सैकड़ों लोगों को योग के विभिन्न टिप्स दिए गए, योगा को सिखाया गया। इस अवसर पर जिला खेल पदाधिकारी अनिल कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार और अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी और नगर परिषद के भी पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। साथ ही बहुत सारे गणमान्य लोगों ने भी योगा के टिप्स को समझा और जीवन में स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक दिन योगा करने का संकल्प लिया। आम जनता से भी अपील की गई कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अपने जीवन में योगा को अपनाएं, करें योग और रहें निरोग। संदेश देते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिले के अलग अलग क्षेत्रों में मनाया गया। जिले के सभी इलाकों में योग प्रेमियों ने सार्वजनिक स्थलों पर योगा कर लोगों को भी योगा से जोड़ने का निवेदन किया और साथ ही लोगों को प्रेरित भी किया। इधर कुचायकोट पुलिस ने लापता एक युवती को उसके कथित प्रेमी के साथ बरामद किया। युवती के परिजनों द्वारा थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया था और इसी मामले में पुलिस ने दोनों को बरामद किया है। पूछताछ के दौरान युवती ने बताया कि वह अपनी मर्जी से युवक के साथ गई थी। पुलिस अब दोनों से आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। जिले में बढ़ रही भीषण गर्मी और तापमान को देखते हुए जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के प्री स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र सहित सभी शैक्षणिक गतिविधियां 27 जून तक स्थगित किया है। वहीं कक्षा 6 से 12 तक की शैक्षणिक गतिविधियां प्रतिदिन सुबह 11 बजे तक ही संचालित की जाएंगी। यह आदेश 22 जून से 27 जून तक प्रभावी रहेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की गई। इसका सीधा प्रसारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिषद पटना में किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संतुलित उर्वरक उपयोग एवं सतत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के माध्यम से रासायनिक प्रदूषण को धरती से बचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर उपस्थित रहे। मुहर्रम को लेकर जगह जगह शांति समिति की बैठक थानों में की जा रही है। पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी के निर्देश पर शांति समिति में लोगों से पारंपरिक तरीके से त्योहार मनाने की अपील की जा रही है। बैठक में गणमान्य लोगों और शांति समिति के सदस्यों को बुलाकर संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही उपद्रवियों को कड़ा संदेश भी दिया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि किसी भी प्रकार के अफवाहों पर लोग ध्यान न दें, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें ताकि कोई भी गड़बड़ी करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर सके। गोपालपुर थाना की पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी से 5 मवेशियों को बरामद किया है और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही पिकअप गाड़ी को भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की यह कार्रवाई नरहमा स्कूल के पास हुई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और पिकअप से 5 मवेशियों को बरामद किया। साथ ही मंजूर शाह पिता स्वर्गीय हलीम देवान, जो अहिरौली दुबौली थाना गोपालपुर का रहने वाला है, और आजाद अहमद पिता शहीद शाह जवार भैंसही थाना पटेरवा जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश का निवासी है, तथा मुमताज आलम पिता मुन्ना देवान, यह नगर थाना जिला गोपालगंज के मठिया का रहने वाला बताया जा रहा है। इन सभी को गिरफ्तार कर अब इन पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोपालगंज के व्यवहार न्यायालय परिसर में भी पतंजलि योग समिति के प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक के देखरेख में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी न्यायिक पदाधिकारी गण उपस्थित हुए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को योग प्रशिक्षक मनीष कुमार सिंह के द्वारा विभिन्न प्रकार के योगासन की जानकारी दी गई और सभी उपस्थित लोगों से प्रत्येक दिन सुबह योगा करने की अपील भी की गई। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नीट परीक्षा का हुआ सफल आयोजन, 312 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले पर शुरू हो गई प्रशासनिक कार्रवाई। आरा में हुए एनकाउंटर के विरोध में गोपालगंज में भी निकाला गया कैंडल मार्च। नाबालिग के साथ गैंग रेप से इलाके में हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। और पशु तस्कर पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ दर्ज। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
20: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
21: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034-48652 पे।
22: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
23: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
22: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
24: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
25: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
26: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
27: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
28: सारी उम्र दिल में एक हंसी याद रही, सदियां बीत गईं पर वो बात याद रही। सारी उम्र दिल में एक हंसी याद रही, सदियां बीत गईं पर वो बात याद रही। न जाने क्या बात थी उनमें और हम में, सारी महफिल भूल गए, बस वो आवाज याद रही। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो में एक बात तो है, आज मैं जिस आवाज की बात कर रही हूँ वो आवाज सालों साल हो गए हैं और सालों साल बीत जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें हमेशा याद रह जाएगी, और वो आवाज है मोहम्मद रफी साहब की आवाज। 24 दिसंबर को इनका जन्मदिन भी होता है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। क्लासिकल सिंगिंग हो या देशभक्ति वाले गाने हो, कव्वाली हो या गजल हो, दुख भरे गाने हो या प्यार भरे गाने हो, सब में माहिर पद्मश्री मोहम्मद रफी जी। हर किसी के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन लता मंगेशकर जी के साथ में इनकी कुछ तनातनी चला करती थी। क्यों और कैसे बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले कर्ज फिल्म से ये गाना सुनिए।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ और मोहम्मद रफी जी को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर हमारे शो पर। वैसे तो ये सभी के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, चाहे वो उनके कंपेटिटर्स ही क्यों ना हो, साथ वाले सिंगर्स ही क्यों ना हो, लेकिन लता मंगेशकर जी के साथ इनकी थोड़ी तनातनी बीच में चला करती थी। एक बार इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था रॉयल्टी को लेकर। एक तरफ जहां लता मंगेशकर जी चाहती थी कि अगर गाना हिट हो जाता है तो प्रॉफिट से थोड़ा सा पैसा सिंगर्स को भी मिलना चाहिए, वहीं रफी जी समझते थे कि नहीं, एक बार गाना गा दिया तो गा दिया, हमें पैसे मिल गए, उसके बाद के सारे पैसे जो हैं वो म्यूजिक कंपनी को जाने चाहिए। झगड़ा इतना बड़ा हो गया था इन दोनों के बीच में कि साथ में इतने बढ़िया गाने गाने के बावजूद भी 6 साल तक मोहम्मद रफी जी और लता मंगेशकर जी ने एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। फिर आए थे SD बर्मन जी बीच में, जिन्होंने की एक म्यूजिकल नाइट रखी थी सिर्फ इसलिए जिससे कि ये दोनों साथ में गाना गा सकें। जबरदस्ती दोनों को साथ में स्टेज पर भेजा था और साथ में एक डुएट गवाया था और बस म्यूजिक के साथ में सारी परेशानियां खत्म हो ही जाती हैं अक्सर। तो मोहम्मद रफी जी और लता मंगेशकर जी की आवाज में आपको एक गाना सुनाएंगे कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले ब्रह्मचारी फिल्म से ये गाना सुनिए।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: प्रसाद क्लिनिक।
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
7: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
8: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
7: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायको,
8: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
7: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
8: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
7: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
8: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
7: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
8: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर वेलकम बैक। लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी जी के बारे में हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे। क्या आपको पता है, एक बार हमारे मोहम्मद रफी जी ने लता मंगेशकर जी को चैलेंज भी किया था। लता जी के पास कुछ 70 के दशक में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ करता था। उनका नाम दर्ज था उस बुक में क्योंकि लता जी ने 25,000 से ज्यादा गाने गाए हुए थे, लेकिन रफी जी का मानना था कि उन्होंने उससे भी ज्यादा गाने गाए हैं। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख डाली गिनीज बुक को कि मेरे गाने जो हैं उन्हें गिना जाए क्योंकि मैंने 26,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। मजे की बात तो ये हुई कि जब गाने गिने गए तो रफी साहब के गाने 8,000 भी नहीं हुए थे और उन्हें लगता था कि उन्होंने 26,000 गाने गाए हैं, लेकिन उन्होंने काफी विनम्रता के साथ इस चीज को एक्सेप्ट किया। 1997 की बात है, उन्होंने लता जी को कहा भी कि आपका रिकॉर्ड आपको मुबारक, और कुछ सालों बाद लता जी से भी ये अवार्ड फिसल करके आशा जी के हाथों चला गया था। पर जो भी कहो, मोहम्मद रफी जी और लता जी जब साथ में गाते थे तो नशा तो कुछ अलग ही किस्म का होता था। गाना सुनाएंगे आपको अभिमान फिल्म से कुछ ही देर के बाद इन्हीं दोनों की आवाज में, लेकिन उसके पहले यादों की बारात फिल्म से गाना रफी जी और आशा भोसले जी की आवाज में, सुनिए जरा।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर, और आज हम यहाँ पर मोहम्मद रफी जी के कुछ खास चुने हुए गाने आपके लिए लेकर के आए हैं। हम सभी लोगों को ठंड के मौसम में मीठा खाना बड़ा पसंद आता है, और ऐसी ही कुछ आदत रफी साहब की भी हुआ करती थी। आपको पता है मीठे के बड़े शौकीन थे वो, स्पेशली गाजर का हलवा खाना बहुत पसंद था मोहम्मद रफी जी को। इतना कि आरडी बर्मन जी बताते हैं कि जब वो अपने रिकॉर्डिंग के लिए बुलाते थे मोहम्मद रफी जी को, तो वो हमेशा भिंडी बाजार से बर्मन साहब के लिए गाजर का हलवा लेकर के आते थे और बोलते थे कि अरे पंचमदा, मीठा खाओगे तो आवाज और मीठी निकलेगी। और बस वही हुआ शायद। तो अगर आप भी अपनी आवाज मीठी करना चाहते हैं तो गाजर का हलवा खा ही लीजिए। फिलहाल कुछ मीठे गाने रफी साहब की आवाज में, वीकेंड क्लासिक।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तब रामू काका, है इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
6: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर, और आज हम यहाँ पर मोहम्मद रफी जी के कुछ खास चुने हुए गाने आपके लिए लेकर के आए।

0: गया।
1: सुन रहे हैं आप वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं हूँ रुचि आपके साथ। और वादा तो किया था रफी साहब ने कि लंबे समय तक हमें अपने संगीत से नवाजते रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन ऐसा आया था जब रफी साहब की तबीयत तो बहुत बुरी खराब हो गई थी, और उस दिन वो एक भजन की रिकॉर्डिंग में बिजी थे और वो कह रहे थे कि मैंने काली माँ के लिए गाना गाया है, उन्हें पसंद आ गया और काली माँ ने मुझे अपने पास बुला लिया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मोहम्मद रफ़ी जी हमारे देश के लिए इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे, करते हैं इनफैक्ट, कि जब वो नहीं रहे थे तो 2 दिन का नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था दुख मनाने के लिए। दुख तो आज की तारीख तक भी है हमें, लेकिन खुशी इस बात की है कि रफ़ी साहब आप हमेशा हमारे बीच में हैं आपके गानों के जरिए। तो अगला गाना आप ही के इस मुस्कुराने के वादे के नाम, हम किसी से कम नहीं फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी जी की याद में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

कैसा लगा आपको ये एपिसोड? हमें अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइए। डू लाइक एंड शेयर दिस एपिसोड और सारेगामा ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। आप इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से, कहानियां और आपके पसंदीदा गानों के साथ।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: नहीं बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं हर बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं
1: चचा

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमरीका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिकगलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए व्यापार में सुगमता सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एस।
1: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपनी रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस के साथ, जहाँ आपकी फरमाइशें और आपके पसंद की गीतें सजाते हैं इस महफिल को। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029294911। जी हाँ, 8029294911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। और दोस्तों, अब आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि आप कहीं भी हो, अपने जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM से कैसे जुड़ रहे हैं। तो देर किस बात की है, जुड़े रहिए हमारे साथ, भेजते रहिए अपनी फरमाइशें और बनिए इस संगीत भरी महफिल का हिस्सा। तो चलिए बढ़ाते हैं इस सुरीले सफर को आगे और लेते हैं आज की पहली फरमाइश। जानते हैं कौन है हमारे पहले श्रोता, कहाँ से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आप सुन रहे हैं हेलो माय चॉइस सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज।
1: नमस्कार
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैं सुधीर बोल रहा हूँ, कोई जमा जिला देवघर झारखंड से। मैम
2: जी, जी कैसे हैं सुधीर जी?
1: बिल्कुल ठीक है मैम, आप कैसे हैं?
2: हम भी बढ़िया हैं।
1: उधर का मौसम का क्या मिजाज है मैम?
2: मौसम का तो हाल मत पूछिए, अभी ही लग रहा है जैसे कि दोपहर का 1 बज चुका हो।
1: जी जी, इधर भी वही हाल है मैम। 2 दिन पहले बारिश हुई थी हल्की फुल्की।
2: हाँ, इधर भी वैसे ही हुई थी, बारिश तो नहीं है बोलेंगे लेकिन बूंदाबांदी हुई थी।
1: जी जी, आप सोनी मैम बोल रहे हैं ना?
2: जी जी। तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
1: आज भी पुरानी फिल्म का गाना सुना दीजिए मैम, कश्मीर की कली फिल्म का गाना सुना दीजिए।
2: कौन सा?
1: मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, गीत के बोल हैं इशारों ही इशारों में दिल लेने वाले।
2: जी जी, और डेडिकेट भी करिएगा।
1: जी मैम, सबसे पहले मैम आपको आपके रेडियो रिमझिम की पूरे टीम को और जितने भी रेडियो रिमझिम के लिसनर हैं सबको सुनाना चाहता हूँ।
2: ओके चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना।
1: जी मैम
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो रंजी में।
0: हाँ, साथ मास्टर ग्राम धना से।
1: जी, क्या हाल चल बा?
0: अरे हम एक ठीक है, बताऊ अपन बताई।
1: हमरो बढ़िया बा।
0: हाँ, दो बड़ी कड़क निकल बा।
1: हाँ जी, क्या कहल जा, बातें अलग बाटे।
0: हाँ, एक बार फोन लगल फिर कट गया, बहुत बार लगे फोन जन नी
1: उठे से पहले ही कट गए हटे।
0: हाँ हाँ, कहानी के भाई कितना देरी अगर उठाए में।
1: और सब बताई?
0: सब ठीक है बा, लगन पंगा सब बिता लेंगे हमने के, अब काम में लगल बन जाए, दो चार पाँच गो लगन बा।
1: गाना कौन सुनवा दिया आज?
0: एगो हमारे आजम पोता बा, बड़ी तंग करता है, बहुत नंबर याद कर लो।
1: अच्छा,
0: दिव्या जी से बातों कर ले। गाना सुना दी नगीना मूवी के। आज कल यहाँ कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके।

0: याद आने के बाद सबसे पहले रवा को सुना के बाद और रेडियो रेंजिंग में रामा जी के और मनान भाई के और सगीर आलम बरान और जितना हमने के बन जाए रोशन टेलर में घना सुरन जाए सबकी सुनम जाए।
1: चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सोना कॉल के।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello.
5: तो दोस्तों छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद के गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: जी मैडम, हम गोपालगंज भोजपुर से बोल रहे हैं।
1: जी जी, नाम बता दीजिए अपना।
0: मेरा नाम दुर्गेश कुमार सिंह पड़ेगा, भोजपुर।
1: अच्छा अच्छा, तो क्या करते हैं दुर्गेश जी आप?
0: जी मैडम, मैं जॉब करता हूँ यहीं से।
1: अच्छा,
0: अपना खुद का बिजनेस।
1: तो गाना कौन सा सुना दे आपको?
0: जी हमको गाना सुनवा दीजिए, भोजपुरी कोई अपने तरफ।
1: आवाज में सुनना पसंद करेंगे?
0: जी हम पवन सिंह का कोई सैड सॉन्ग हो।
1: पवन सिंह का सैड सॉन्ग कोई भी? और सुनवाना भी है?
0: जी हमारे दोस्त है जो अंशु सिंह है, हैप्पी सिंह है और बहुत सारे दोस्त।
1: चलिए तो प्ले करें गाना आपके।
0: जी मैडम
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माइक्रो, इसमें कॉल किया।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: तो दोस्तों छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप

भी अपने पसंद की गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहाँ से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो 90.4 FM पर।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: विकास कुमार, अंतापुर
1: जी। क्या हाल चाल है विकास जी?
0: है बढ़िया है जी, बहुत आज गर्मी है, काम करने का मन नहीं कर रहा है।
1: गर्मी तो काफी है,
0: आज बहुत धूप है, बहुत ज्यादा
1: हवा नहीं चल रहा है ना, इसलिए।
0: और बताइए मैडम, आप कैसी है मैडम?
1: बिल्कुल बढ़िया है।
0: अच्छा, अब खाना वाना खा लिया?
1: हाँ जी, खाना पीना हो गया है, खा के ही घर से आते हैं हम।
0: अच्छा,
1: तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
0: आज गाना सुनवा दीजिए, वो गाना नहीं है, क्या बोलते हैं, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, वही सॉन्ग सुनवा दीजिएगा।
1: और सुनवाना भी है?
0: सुनवाना है सबसे पहले आपको।
1: अच्छा,
0: अब मेरे दोस्तों को और जितने रेडियो रेंज में सुनने वाले हैं सबको शुरुआत, सबको।
1: ओके, चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना।
0: ये बजे बजाइएगा ना,
1: ये शाम को चलेगा 5 से 7 के बीच में।
0: 5 से 7 के बीच में ना
1: जी, और रिपीट चलता है
0: 5 बजे से स्टार्ट कर दीजिएगा।
1: हाँ, 5 बजे ये नहीं बोल सकते कि 5 बजे ये स्टार्ट होगा, ठीक है, 5 से 7 के बीच में कभी भी आ सकता है। और सुबह रिपीट चलता है 9 से 11।
0: अच्छा, 9 से 11।
1: हाँ, और रात को चलता है 12 बजे से।
0: अच्छा,
1: 3 टाइम चलता है, आप उसमें से कभी भी सुन सकते हैं।
0: आज मेरी छोटी वाली लड़की बोल रही थी कि आपसे बात करने के लिए, तो हम तो आ गए काम पर, आज मैं छुट्टी में था।
1: अच्छा,
0: तो मेरे को ठेकेदार बुला लिया कि आ जाओ, सेंटरिंग वेटरिंग ठोकना है।
1: अच्छा अच्छा,
0: इतना गर्मी पड़ता है कि आने का दिल नहीं करता है।
1: क्या करिएगा, गर्मी है ही ऐसा,
0: मजबूरी जो करे।
1: चलिए फिर बात होगी।
0: ठीक है ठीक है
1: ठीक है,
0: बहुत अच्छी कोशिश की है आपका, नंबर लगाते बहुत,
1: काफी सारे कॉल आते हैं ना, सबसे बात हो ही रही है 11 बजे से।
0: फिर मैं बजरंग बली के नाम लिए कि आज मैडम से बात हुआ कि नहीं होगा।
1: चलिए,
0: कोशिश की है तो मैंने लग गया। ठीक है, बजा दीजिएगा। ठीक
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी जो इसमें कॉल।

0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
0: कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: बस आपसे तो लगता है कि कितने दिन हुआ बात ये हुए। आज कैसे कैसे
1: चलिए, जैसे जैसे करके आज हम भी बात कर लिए।
0: नहीं तो मैं तो आपके शो से भागने वाला था कि अब तो सोनी जी से बातें नहीं होती है।
1: नहीं, भागिएगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि कब आने वाले हैं तुम्हें।
0: उसी इंतजार में तो कॉल कर दिए।
1: कॉल किया और बात हो भी गई। कहते हैं ना, सच्चे दिल से अगर कुछ चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने वाले जुड़ जाती है।
0: बात वही है,
1: बात वही है। बस
0: सही में मैं आज मैं करने वाला नहीं था। मैं सोचा कि चलिए एक बार करते हैं।
1: और बताइए, साले साहब का हाल चाल कैसा है?
0: बस कट रहा है जैसे तैसे।
1: तो छुट्टी होगी आप लोग?
0: हाँ छुट्टी है, आप लोगों के सहारे कट रहा है।
1: तो गाना कौन सुनवा दे आज?
0: आज हमें सुनवा दे आप वो जो शिल्पी राज का है, लवर के धोखा दो एक बार मौका दो। अनारी के जैसा एकदम आप तो ढूंढ के निकाल ही देंगे।
1: नहीं, जो पता है वो बता देते हैं, जो नहीं पता होता वो पूछते नहीं है कि किसके आवाज में है चाहे क्या है।
0: नहीं पता है वो भी सोनी जिसे निकलने वाला नहीं है।
1: थोड़ा टाइम लगता है ढूंढने से, तो भगवान भी मिल जाएंगे। फिर भी गाना है,
0: जब जो गाना समझ में नहीं आता है वो भी बच जाता है। तो ये तो
1: पता है,
0: ये तो रोज की है, ये तो रोज की है
1: जी।
0: और सब
1: बढ़िया है।
0: आज भारती जी कहाँ है?
1: भारती जी भी यही है, बैठी हुई है पास में ही।
0: ठीक है, भारती जी भी सही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक होता है कि आपसे थोड़ी लगाव हो गया है, भारती जी भी सही है।
1: तो अब क्या पुराना आदत छूटते छूटते ना छूटता है?
0: तो आदत छुड़ा रहे क्या धीरे धीरे?
1: नहीं छुड़ा नहीं रहे, मतलब बात की बात है, छुड़ा कहाँ रहे, अभी तो है ये है।
0: ना सही है। तो वो जिस दिन आप बीच में एक बार और बात किए थे कि आधे आप बात किए थे, आप आधे भारती जी करी थी, वो शो आपका नहीं चला?
1: नहीं चला है, 3 कॉल उसमें से बच गया है। चला तो था, उसी दिन चला था।
0: आपका गाना है?
1: नहीं नहीं, आपका गाना है और 2 गाना और है जो कि आज तो शायद नहीं चलेगा, कल में चलेगा।
0: तो ठीक है, हमारा ही गाना पेंडिंग में होना चाहिए, ऐसा कुछ बात नहीं।
1: अपने आदमी का है तो आदमी पीछे रखता है ना बाकी।
0: अब आज उस दिन का सुनाएंगे तो फिर आज का फिर
1: पेंडिंग में रहेगा।
0: वो सब हमें पता है,
1: पता है ना। फिर रिकॉर्डिंग हुई है तो चलेगी, बस आप सुनते रहिए।
0: तो आज पूरे आपका रिकॉर्डिंग है कि भारती जी भी है?
1: नहीं, वो भी रहेंगी।
0: तो आधे आधे वो इसे सुनाएंगे ना मिला के, एक साथ तो दोनों नहीं चलेगा ना।
1: मेरा टाइम होगा शो का तो हम चले जाएंगे शो के टाइम में।
0: अच्छा अच्छा
1: अच्छा, ठीक है,
0: चलिए चलिए, ठीक है, बहुत बात हुआ।
1: तो गाना आपकी प्ले कर रहे हैं।
0: ठीक, थैंक यू मैम,
1: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद तुमने कॉल किया।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello, hello, hello.
4: तो दोस्तों छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद के गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार बुधवार शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टूनशिप 90.4 FM में।
0: गाना सुनेगा मैम
1: जी? गाना तो सुनाएंगे। बता दीजिए नाम गाने का।
0: सैड सॉन्ग सुनना है।
1: सैड सॉन्ग कौन सा?
0: कोई सा जो अच्छा हो।
1: कोई सा भी तो नाम बता दीजिए, कोई सा भी गाना का।
0: याद नहीं है।

0: अच्छा थोड़ी होता है।
1: नीलकमल सिंह का सुना लीजिएगा।
0: नीलकमल सिंह का जी। और आप रवि बात कर रहे हैं? आप रवि बात कर रहे हैं?
1: हाँ
0: जी। और गाना डेडिकेट भी करिएगा?
1: हाँ यही पे है जिया जी।
0: अच्छा जिया जी का, चलिए।
1: और सुनने वालों
0: तो प्ले करे गाना?
1: हाँ प्ले करिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कॉल किया।

0: अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम सलाम। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: मैं अहमद अली, सरिया वार्ड नंबर 1 पे। क्या हाल चाल है मैम?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए, आप कैसे हैं?
0: हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं? तबीयत पानी अच्छा है ना?
1: बिल्कुल बढ़िया है।
0: बहुत गर्मी पड़ रही है मैम।
1: गर्मी तो पड़ रही है, क्या किया जाए बताइए गर्मी से बचने के लिए।
0: गर्मी से बचने के लिए जितना हो सके अंदर रहे, घर के अंदर, और नींबू पानी पिया करें।
1: नींबू पानी तो नहीं पी सकते अभी, जहाँ है वहाँ
0: लेके जाइए ना मैम।
1: लेके जाएंगे फिर थोड़ा सा असकत हो जाता है ना।
0: बोतल में घर से ही बना कर लाया कीजिए, और फ्रिज व्रिज हो तो रख दीजिए, और दिन भर पिया कीजिए।
1: फीस तो नहीं है उससे,
0: अच्छी है ना मैम? अंदर तो एसी है, फ्रिज की जरूरत नहीं है।
1: एसी है लेकिन अंदर सब कुछ पानी वगैरह नहीं जाता है ना, कहीं गिर उड़ गया तो फिर मशीन है, दिक्कत हो जाएगा।
0: कुछ नहीं गिरेगा, संभाल कर रखिएगा सर।
1: अब वो तो हम रख सकते हैं, लेकिन अब एक हम लेके जाएंगे तो फिर और भी।
0: जितने लोग सुन रहे हैं सभी लोग ऐसा किया कीजिए, पानी पिया कीजिए।
1: पानी तो पीना है, जितना हो सके पानी पिए, बिना मतलब का घर से बाहर ना निकले बिना जरूरी क्या।
0: बहुत गर्मी है।
1: गर्मी तो है ही, साथ में
0: मैं तो नींबू ला कर रख दिया हूँ मैम। डेली मैं खुद पीता हूँ, और बच्चे को भी पिलाते हैं अपने, शरबत पिलाते हैं नींबू पानी सबको।
1: चलिए तो गाना कौन सा सुनवा दे?
0: गाना वो तो रेडियो पे बज रहा है, यही सुनवा दीजिए, सुना दे रहे हैं आपको, काफी के चैनल पर बज रहा है। सुनाई दिया गया
1: हीरो फिल्म का गाना है क्या?
0: जी,
1: पूरा तो समझ में नहीं आया, शायद तू मेरा जानो है, तू मेरा दिल है, वही गाना है ना?
0: जी मैम,
1: जी
0: मुझे तो है आपका।
1: और सुनवाना भी है गाना?
0: सुनवाना तो जरूर है। सबसे पहले तो आपको, अख्तरी को, कमरान भाई को, और दिनी भाई को, राघव जी को, और जो भी रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी।
1: चलिए
0: बहुत शुक्रिया।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: तो दोस्तों, छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: हाँ जी हेलो है
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: आपको नमस्कार सुनिए
1: जी, लाल बहादुर बात कर रहे हैं।
0: जी जी कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक है, आज बहुत प्रयास किए तब लगा है।
1: तो ये फाइनली लग गया?
0: हाँ फाइनली तो लग ही गया। और सब ठीक है? और सब ठीक ठाक ना?
1: जी जी सब बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
0: ना फिल्म का
1: जाए
0: तो देर ना हो जाए, आ जा रही हूँ, मैं तेरा रास्ता देख लिया।
1: और सुनवाना भी है?
0: हाँ ऋषि कपूर, सुरेश सुरेश वाटकर का उसमें आवाज भी है। यही गाना सुना दीजिएगा, हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो में लगे हैं ग्रामीण से उनको, और हमारे इंजीनियर सरस्वती बाबा इनके प्रसाद।
1: तो प्ले करे गाना आपकी?
0: ठीक है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: तो दोस्तों, छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: जी नमस्ते बहादुर
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में
0: जी।
1: कैसे हैं बहादुर जी?
0: ठीक है, आता मत।
1: हम भी बढ़िया है। तो क्या हो रहा था अभी?
0: अभी तो कुछ ही भी नहीं हो रहा है, गर्मी चल रहा है।
1: तो नाश्ता हुआ?
0: जी जी खाना है, नाश्ता हो गया।
1: चलिए बढ़िया है। सर से बताइए, घर परिवार में सभी लोग कैसे हैं आपके?
0: सब कुछ ठीक है।
1: चलिए बढ़िया का बात है। तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
0: नहीं, साधन लाइन सजाएंगे
1: जी। और सुनाना भी है?
0: जी जी आनंद समुदाय अधिक।
1: तो प्ले करे गाना आपकी?
0: जी जी
1: जी। गाना डेडिकेट भी करिएगा
0: जी। नमस्ते
1: नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद है, लो माई चॉइस में कॉल किया।

मुस्कुराती है नजर, दिल तड़प के रोता है, और चोट जब लगती है

0: हो?
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम सलाम। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: ऋषि।
1: कहाँ से बात कर रही हैं?
0: पहचानपुर जी।
1: एक बार और बताइए कहाँ से बात कर रही हैं?
0: पहचानपुर जी।
1: तो क्या करती हैं खुशी जी आप?
0: पढ़ाई करती हूँ।
1: अच्छा, किस क्लास की पढ़ाई करती हैं आप?
0: 9th क्लास के।
1: 9th क्लास की पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
0: अच्छी चल रही है, अभी छुट्टी करी है। और छुट्टी चल रहा है।
1: अच्छा अच्छा, तो छुट्टी में कहीं घूमने गई कि नहीं?
0: नहीं नहीं।
1: तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
0: बाग में कोयलिया भोरे भोरे, वही कवाली सुनना है।
1: और सुनवाना भी है?
0: हाँ, मेरी मम्मी को और चाची को, मेरी बहन को और मेरी अंकल को।
1: चलिए तो प्ले करें गाना।
0: ठीक है
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सो मैं कॉल किए।
2: कोयलिया भोरे भोरे,
3: क्या बात है।

बोलिए सुभान अल्लाह। अरे सूरज बोले, सूरज बोले एक गम की नहीं, सूरज बोले

कही के बुत यही कही के बुत चीरे मुह के बल अरे यही कही के बुत यही कही के बुत चीरे मुह के बल देखो आए गए प्यारे।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: तो दोस्तों, छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: सलामकुम।
1: वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिए।
0: हाँ, किस्मत बोलते जी, कैमरा से
1: जी। क्या हाल चाल बताता जी?
0: हाँ बाबू,
1: सब बढ़िया। हाँ, कहता नहीं, कैसन बानी?
0: ठीक बनी बाबू,
1: ठीक बनी।
0: ठीक बना ना, घर सब ठीक बन?
1: हाँ जी, सब कोई बढ़िया बटे, घर भी हम बढ़िया बनी।
0: ठीक बाबू, नहीं चाहे।
1: ठीक बनो?
0: हाँ सब ठीक बना, जुम्मा ना
1: अच्छा अच्छा चल ठीक बा।
0: कवाली सुनाई बढ़िया अपना मन से।
1: अच्छा चल ठीक बा, फिर
0: ठीक बा,
1: ठीक बा। तो प्ले करता नहीं रहा कवाली?
0: ठीक बा,
1: ठीक बा। बहुत बहुत धन्यवाद सुमे।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: तो दोस्तों, छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद के गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए।

हमारा नंबर 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहाँ से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: पठानपट्टी।
0: पठानपट्टी से कौन बात कर रही हैं आप?
1: रोशनी।
0: क्या हाल चाल है रोशनी जी?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ।
1: नाश्ता हो गया?
0: हाँ जी नाश्ता हो गया, आपका हो गया है? बताइए तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको? वालेकुम सलाम।
2: क्या हाल बने?
0: बिल्कुल बढ़िया है, वो बताइए कैसा बने?
2: ठीक बने सर, आज तो गाना सुना दे बनी, बहुत अच्छा लगा सुन के।
0: चलिए अच्छा बात है, क्या अच्छा लगा?
2: बात में
0: सोनी बात करता नहीं।
2: सोनी मैम और सब मैम
0: सब बढ़िया बा?
2: सब बढ़िया बा, मैं तो ठीक बानू।
0: हाँ जी बढ़िया बा, और बताइए और बढ़िया बानू?
2: हमने को बढ़िया बन सर, आज गाना भोजपुरी सुना दी तोरा पगली की दुनिया के मेला में।
0: और गाना सुनवाऊ के बा कोई के?
2: जी मैम।
0: शादी नाम लेवे के चाहे?
2: हाँ मैं दयादिन वालो सब नाम रानी और देवर वालो अजीज सफीक नीलो तुम्हें सुन लिया
0: गाना प्ले करता नहीं
2: मैम?
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल करी।

0: नमस्ते
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: मैं बोल रहा हूँ जिला गुना से, गोपाल ओझा।
1: जी कैसे हैं गोपाल जी?
0: बढ़िया है मैडम जी, आप कौन बोल रही हैं?
1: सोनी बात कर रहे हैं।
0: जी जी मैडम जी,
1: जी
0: दो हफ्ते में लगाया मैंने आपसे, दो हफ्ते में बात हो रही है मेरी तो।
1: चलिए बात हुई।
0: मौसम कैसा है बिहार का? मौसम कैसा है आपके उधर का?
1: इधर तो काफी धूप है, गर्मी है।
0: जहाँ भी धूप है थोड़ा, कल बारिश हुई थी थोड़ा सा कहीं हल्की सी कहीं।
1: इधर तो क्या बोले, बादल भी नहीं आ रहा, बारिश तो दूर का बात
0: है। धूप भी पड़ रही है इधर तो, बारिश भी हुई थी कल तो। क्या गाना सुनना है?
1: जी बिल्कुल, बताइए कौन सा गाना सुनवा दे आज आपको?
0: गाना सुनना है उदित नारायण अलका याग्निक फिल्म का, सुनवा दीजिए राजा हिंदुस्तानी का।
1: राजा हिंदुस्तानी का कोई भी?
0: राजा हिंदुस्तानी का ना, वो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं।
1: याद है तो जो लाइन गा दीजिए।
0: गा दें?
1: जी बिल्कुल।
0: कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। जी बस इतना ही आता है मैडम।
1: कोई नहीं, तो गाना डेडिकेट भी करिएगा।
0: डेडिकेट है ना, सुनील साहू है, मकसूदगढ़ से ज्योति साहू जी है, मांगीलाल धागड़ जी है, रामधन धागड़ जी है।
1: तो प्ले करेगा ना?
0: प्ले कर दीजिए मैडम
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्ते कॉल।
2: जी कर देखता रहूं। क्या

0: जोकर।
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन भी हिंदी बजती है तो कहते हैं hello, hello, hello, hello.
4: तो दोस्तों, हर खूबसूरत सफर की एक मंजिल होती है और हर मंजिल पे एक छोटा सा ठहराव, लेकिन यह अलविदा नहीं बल्कि अगली मुलाकात तक का एक प्यारा सा विराम है। आज के हेलो माय चॉइस में हमने आपकी फरमाइशों के बहाने सुने कई सुरीले गीत, साझा की कुछ प्यारी यादें और बिताए कुछ खूबसूरत पल। अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन वादा है कि फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी और फिर सजेगी आपकी पसंद की गीतों की महफिल। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी के हर पल को संगीत की तरह महसूस करते रहिए, क्योंकि दोस्तों जिंदगी की हर धड़कन में एक धुन छुपी होती है, बस उसे सुनने और गुनगुनाने की देर होती है। मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त और होस्ट आरजे सोनी। अब दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे, फिर सुनेंगे आपकी पसंद और फिर सजाएंगे संगीतों से भरी एक नई महफिल। तब तक सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM, अपने जिले की आवाज़। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: भाई

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।